0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: संध्या सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे विधिमा नमस्कार आपको
1: नमस्कार नितुषा सभी सुनने वालों को नमस्कार पानी के गंभीर संकट के कारण कोंलोव्यू एमिटाज कोंफुको और सैंपल के निवासी सड़कों पर उतर आए छह दिनों से पानी न मिलने और प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण माहौल को संभालने के लिए पुलिस और एसएमएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा स्थिति को शांत करने और टैंकरों की व्यवस्था के लिए चुनाव क्षेत्र नंबर 15 की जूनियर मंत्री फौजे अलीमन और सांसद कुशल लुबिन रात भर मौके पर डटे रहे मॉरिशस में सभी क्षेत्रों में प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल में चर्चा के बाद श्रम मंत्रालय ने इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए कंसल्टेंट्स के माध्यम से एक अध्ययन शुरू किया है जिसका उद्देश्य विशेषकर आईसीटी हॉस्पिटैलिटी और वितरण क्षेत्रों की विशिष्टताओं का आकलन करना है और अप्रैल 2027 तक एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना है ताकि अगले कदम पर निर्णय लिया जा सके ब्लैक रिवर में बानियानी स्क्वायर परियोजना के तहत एक पुराना बरगद काटने और कार्यकर्ता पर्सी यिपटोंग की गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ गया है सीनियर काउंसिल रामावलायदेन ने परमिट की प्रशासनिक जांच की मांग की है जबकि जिला परिषद अध्यक्ष केमराज ओतू का कहना है कि विकास कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया था और मामले की जाँच जारी है आज सगायतों जुवाल का 96वां जन्मदिन है पीएमएसडी के प्रवक्ता ओलिविए बॉब ने एक मानवतावादी और देशभक्त के रूप में उनके योगदान को याद किया इस अवसर पर आज शाम 6 बजे पोटवी नगर पालिका में पार्टी द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है गुरुवार 8 अक्टूबर को श्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में अपने 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया जिसकी शुरुआत पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में हुई इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने फेसबुक पर एक संदेश के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी उन्होंने मॉरिशस और भारत के बीच मजबूत होते संबंधों पर प्रकाश डालते हुए श्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा और उनके नेतृत्व की सराहना की उन्होंने उनके सफल कार्यकाल अच्छे स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुख समृद्धि की कामना की 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस के अवसर पर मॉरिशस में डाक विभाग की ऐतिहासिक भूमिका और समाज व अर्थव्यवस्था को जोड़ने में इसके योगदान को याद किया जा रहा है और विदेश में इंडोनेशिया में हफ्तों से भीषण जंगल की आग लगी हुई है जिसका धुआं मलेशिया सिंगापुर और फिलीपींस तक फैल गया है और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 अन्य इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा रात के दौरान आसमान साफ रहेगा न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी आज सुबह 5:44 पर सूर्योदय और शाम 6:10 पर सूरज ढल जाएगा तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपसे मुलाकात होगी 6:30 तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार
2: RM3 Radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। मेरे अजीज सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। यौम जुम्मा मुबारक हो। आपकी समागतों की नज़र कर रहे हैं उर्दू नशरियात सबाल खैर। आपका मेज़बान निसार अख्तर दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। सामईन, माह मुकद्दस माह रबीउसानी अपने अख्ताम की जानिब रवा दवा है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इसके फ्यूज़ व बरकत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए इस बज़्म का बाकायदा आगाज हस्ब मामूल कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से करते हैं। बागौर व अदब समात फरमाइए।

सामईन कराम, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे खौफ खुदा, कसरत इबादत, जज्बाए इस्लाह उम्मत, फिक्र आखिरत, हुस्न अखलाक, इत्तबाए शरीयत, सब्र व शुक्र, मोहब्बत इलाही के पैकर होते। अगर हम अपने बुजुर्गान दीन की सीरत का मुताला करें तो ये मालूम होता है कि वो नेक हस्तियाँ इबादत व रियाजत के शैदाई होते थे। उनके शब व रोज इबादत व बंदगी में बसर होते थे। सामईन, अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे औलिया कराम के उम्दा औसाफ में से एक वस्फ हुसूल इल्म दीन है। जाहिर सी बात है कि उस जमाने में दीन सीखने के लिए उन हजरात के पास कोई सहूलत, कोई आसानी मुयस्सर न थी। तहसील इल्म के लिए कदम कदम पर मुश्किलात पेश आती थीं। फिर भी हमारे असलाफ़ कराम बचपन ही से इल्म दीन की तरफ मायल हो जाते। इस तरह आखिरी वक्त तक उनका तालीम व तालुम और दूसरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहता था।

बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। जी हाँ, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। सामईन कराम, ये फरमान हमारे प्यारे आका दो आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसका मतलब ये है कि हमारे बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलना सआदत की बात है।

क्योंकि ये वो नेक हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को इस्लामी अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश की और दुनिया व आखिरत की कामयाबियां उनका मुकद्दर बनी। सामईन, हमें अल्लाह अज़्ज़वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर इस तरह सर तस्लीम खम करना चाहिए जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने किया था। इस तरह हम देखेंगे कि हमें बरकतें ही बरकतें नसीब होंगी।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन है। ये वो दिन है जिसे परवरदिगार आलम अज़्ज़ वजल ने सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया। ये दिन मोमिन के लिए ईद से कम नहीं। सामईन, जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। तो आइए दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे कदीर, हमारी लग्जिशें माफ़ फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और हमारे दिलों में जो भी नेक दुआएं तमन्नाएं हैं उनको अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी मनकबत के साथ आज की सबा अल खैर नशरियात अख्तताम पज़ीर होती हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने नेक बंदों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी नेक तालीमात पर अमल की तौफीक दे और इस माह मुबारक की बरकतों से हमारे दिलों को नूर ईमान से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, अब आपका मेज़बान निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

भक्ति में शक्ति। दस बजकर पैंतालीस मिनट हो चुके हैं। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। भक्ति में बहुत शक्ति है और कहा जाता है जो भी मनुष्य भक्ति में लीन रहता है उसके अंदर के सभी कुविकार भी मिट जाते हैं। आइए इसे विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गणेश वंदना के साथ।

श्रोताओं, भक्ति में जो भी मनुष्य प्रभु का नाम जपता है वे मोह से कोसों दूर चले जाते हैं और भक्ति में लीन परमात्मा के समीप चले जाते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, ईश्वर ही करते हैं बेरा पार। कहते हैं जब सभी दरवाजे सभी द्वार बंद हो जाते हैं तो एक ही द्वार जो है खुले रहते हैं और वो है परमात्मा का। कहते हैं ये संसार में हम जिससे भी जो मनुष्य से हम मिलते हैं उनका बिछड़ना आवश्यक है, परंतु भक्ति में लीन मनुष्य कभी भी मोह का शिकार नहीं बनता। अर्थात वो कभी मोह माया के जाल में नहीं फंसता। वो स्वयं परमात्मा को ही अपने आप को समर्पित कर देता है, तभी उसके मन के सभी कुभावनाएं और दुविधा भी मिट जाते हैं। आइए माता रानी को समर्पित

श्रोताओं, आइए इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे और पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधि मान नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणि, सभी को नमस्कार। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने फरवरी 2025 में दिलावन के घर से बरामद 114 मिलियन रुपए से भरी सूट केस की जांच के सिलसिले में शुक्रवार 9 अक्टूबर को श्रीमती कविता जगनाथ को समन किया है। श्रीमती जगनाथ से इससे पहले 3 सितंबर 2025 को आयोग द्वारा पूछताछ की गई थी। उस अवसर पर उन्होंने संकेत दिया था कि वे अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेंगी। तब से एफसीसी ने इस जांच के हिस्से के रूप में आवश्यक वेरिफिकेशन कर लिया है और जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। पहली अक्टूबर 2026 को उन्हें 5 अक्टूबर के लिए समन भेजने के वास्ते एक ईमेल भेजा गया था। 2 अक्टूबर को उनके वकील खौफ गुलबुल ने एफसीसी को सूचित किया कि वे उस तारीख को उपलब्ध नहीं होंगी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि पूछताछ या तो आज शुक्रवार 9 अक्टूबर को हो या फिर 14 अक्टूबर को। इस प्रकार आज शुक्रवार की ये पेशी पूछताछ फिर से शुरू करने के लिए एक तारीख तय करने हेतु दोनों पक्षों के बीच हुए विचार विमर्श के बाद हुई है। पानी के संकट को लेकर तनाव बना हुआ है। कल शाम कॉन्लुवियो एमिताज और कॉन्फुखो के निवासी पानी की आपूर्ति में समस्याओं का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सड़कों के अवरुद्ध होने, वस्तुओं में आग लगाए जाने और तनावपूर्ण माहौल के कारण पुलिस और स्पेशल मोबाइल फोर्स को हस्तक्षेप करना पड़ा। सैंपल में भी गुस्सा बना हुआ है। कुछ निवासियों का कहना है कि वे लगभग 6 दिनों से पानी से वंचित हैं और उनके अनुसार वे अभी भी पानी के टैंकरों के आने का इंतजार कर रही हैं। कल फ्रेंच समाचार बुलेटिन के आमंत्रित सामाजिक सुरक्षा के जूनियर मंत्री को एमएसएम के नेता के उस बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था जो उन्होंने स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट पर दिया था। कोगान पागापे ने स्पष्ट किया कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के एसडीडीएस प्लस मानदंडों का पालन करने वाला अफ्रीका का पहला देश है। उन्होंने घोषित किया कि आज के आंकड़े अर्थव्यवस्था का एक वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। सर गायतों जुवाल यदि जीवित होती तो इस शुक्रवार 9 अक्टूबर को अपना 96वां जन्मदिन मनाते। पर्ची मोरिसियन सोशल डेमोक्रेट पीएमएसडी के पूर्व नेता का 1996 में निधन हो गया था, लेकिन वे आज भी कई मॉरिशस वासियों के दिलों में बसे हुए हैं। पीएमएसडी के प्रवक्ता ओलिविए बॉब के अनुसार सर गायतों जुवाल एक मानवतावादी और देशभक्त दोनों थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के पूर्व नेता ने मॉरिशस गणराज्य के इतिहास में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। मॉरिशस में डाक विभाग ने हमेशा राष्ट्र के जीवन में एक विशेष स्थान रखा है। पहली चिट्ठियों और पोस्टकार्ड से लेकर आज की आधुनिक सेवाओं तक इसने हमारे समाज के बड़े बदलावों में साथ निभाया है। पीढ़ियों तक डाकिया परिवारों, दोस्तों, व्यवसायों और उनके प्रियजनों के बीच की कड़ी रहा है जो कभी कभी मीलों दूर अलग रहती थी।

0: वर्षों में आबादी की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी सेवाएं और भी विविध हुई हैं। और विदेश में इंडोनेशिया के कई हिस्सों में हफ्तों से जंगल की आग लगी हुई है, जिससे धुआं पूरे देश और पड़ोसी देशों मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस तक फैल रहा है। इस धुंध ने सिंगापुर में वायु प्रदूषण को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है, जबकि आज वहां F1 ग्रैंड प्री रेस की शुरुआत हो रही है। मलेशिया के कई राज्यों में अधिकारियों ने स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दे दिया है। तो इन खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 63 होट दे पॉम्पलमूस सेंट क्रॉ पोर्टलुई में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रानी बोगाली, पैदाइशी नाम कैलाश और जो इंदिरा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके घर नंबर 63 होट दे पॉम्पलमूस सेंट क्रॉ पोर्टलुई से उठाकर सिपाही भोले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio Man.

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. बिल्कुल गुम है किसी के प्यार में और आपके प्यार में तो हमारा दिल भी खोया रहता है, तभी तो आपसे मिलने का इतना इंतजार रहता है। आपका साथ निभाने एक बार फिर आए हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूं परी आपके साथ। उम्मीद करते हैं आपका ये फ्राइडे एकदम खास, एकदम स्पेशल। जी हां दोस्तों, आज है 9th of October और आज की इस दोपहर में कुछ और प्यारे गाने, कुछ और खूबसूरत गीत और साथ में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी शामिल होने वाले हैं। 5250 6200 5250 6200 यही वो नंबर है जिस पर मैं यानी कि परी करूंगी आपका इंतजार। साथ ही साथ आप अपना प्यार हम तक फोन कॉल्स के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। नंबर तो आप जानते हैं, एक बार फिर आपको याद जरूर दिलाएंगे। नंबर है 4028070402807070। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ निभाएंगे, हमारे साथ इन गीतों को गुनगुनाएंगे। तो भूलिएगा नहीं, अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आपकी इस दोपहर को हम खास और स्पेशल बना रहे हैं कुछ वंडरफुल गीतों के साथ, और उसी लिस्ट में शामिल होता हुआ ये गाना लता मंगेशकर की आवाज झुक गया आसमान फिल्म से लिया हुआ ये गीत हमारे सभी श्रोता, हमारे सभी लिसनर्स के नाम। परी का साथ है और ये है सुहाना सफर ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: RM3 Radio.
1: और चलिए यहां पर सुनीता जी हमारा साथ दे रही हैं आप बेडरोज से प्रेम रोग फिल्म का ये खूबसूरत गीत डेडिकेट कर रहे हैं इसे आपके नाम साथ ही हमारे जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं चुना है आपने RM3 रेडियो मनोरंजन को तो बस आपके दिल को बहलाने के लिए कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स हम लेकर आए हैं कुछ हमारी पसंद कुछ आपकी पसंद जो इस वक्त शामिल हो रही है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन चलिए दोस्तों अभी के लिए तो सुनीता जी इस गाने को आप सुनना चाहती हैं ये गाना आपके नाम अनइक्वली गोज आउट हमारे सभी डियर फ्रेंड्स सभी लिसनर्स के लिए एंजॉय दिस वन

0: RM3 Radio.
1: एक के बाद एक खूबसूरत गीत इस आफ्टरनून को सजा रहे हैं, इस दोपहर को सजा रहे हैं और इसे और भी खूबसूरत बना रहे हैं आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस। तो चलिए, आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है। यहां पर माधुरी, परी, वीना, शोभा, रेखा, रेशमा हमारा साथ दे रहे हैं। आप धर्मवीर फिल्म का ये गाना, इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं स्पेशली आपके नाम। इक्वली गुजार फॉर ऑल द फैंस ऑफ रफी साहब एंड हमारे जितने भी लिसनर्स जो पुराने गीतों को पसंद करते हैं, उन खूबसूरत गलियों में आपको हम लेकर जा रहे हैं इसी टाइम यानी कि 12 से लेकर 2 बजे तक, जहां पर हम लेकर आते हैं प्रोग्राम सुहाना सफर। मैं हूं परी आपके साथ। दोपहर के 2 बजे तक आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर तो वही है 5250-6200 या फिर आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं 4028070 पर।

जी हां दोस्तों सुहाना सफर प्रोग्राम इस वक्त आप हमारा साथ निभा रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर आपके फोन कॉल्स आपके मैसेजेस यहां तक पहुंच रहे हैं WhatsApp के जरिए भी आप हमें मैसेजेस पहुंचा सकते हैं लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो गाना हम तक पहुंचा रहे हैं उसकी डिटेल्स भी आप हमें दें दो लाइन भेजने से हम गाना नहीं ढूंढ पाएंगे सो प्लीज द फिल्म का टाइटल भी आप हमें भेज दीजिए सो दैट वी कैन प्ले द गाना आपके लिए एंड नॉट टू वरी यहां पर जो अगला गाना है वो भी WhatsApp के जरिए ही है अनीता जी फ्लाग से हमारा साथ दे रही हैं आप हैप्पी बर्थडे विशेस हेलो प्रिंसेस आधिया के नाम सभी बैचंद परिवार है बेले से जो उन्हें विश करना चाहते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे सो थैंक यू व्हाट्सएप के जरिए ये मैसेज आपने हम तक पहुंचाया अनीता जी धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग ऑल द डिटेल्स ताकि हम ये गाना आप तक पहुंचा सके सो याद हो कि बारात टाइटल ट्रैक और इसी गाने के साथ विशिंग लिटिल प्रिंसेस आधिया अ वेरी हैप्पी बर्थडे

0: RM3 Radio.
1: और यहां पर पाकीज़ा फिल्म का गाना शामिल हो रहा है देवयानी जी आप डेडिकेट कर रही हैं गाना फॉर सभी देवधारी और छेदी परिवार खूबसूरत सा गीत रफी साहब लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप का प्यार यहां पर बना हुआ है और ये जो स्वीट मैसेजेस हैं ये जो स्वीट डेडिकेशंस हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं सजाकर इन खूबसूरत गीतों के साथ जिसमें थोड़ी सी हमारी पसंद थोड़ी सी आपकी पसंद शामिल है तो चलिए अभी के लिए देवयानी जी साथ दे रही हैं आप एंजॉय दिस वन

जी हाँ दोस्तों, हम भी जानते हैं आप भी तैयार हैं इस खूबसूरत सफ़र पर हमारे साथ चलने के लिए। एक ऐसा सफ़र जहाँ पर आपकी यादों को हम पंख देते हैं, उन गानों को आप तक पहुँचाते हैं जो शायद हमेशा से आपके फेवरेट रहे हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर गोविंद रघुनंदन जी हमारा साथ दे रहे हैं आप वाकवा से। ये जो खूबसूरत सा गाना है शायद आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब, और हम जानते हैं इस वक्त आप इस गाने को गुनगुना भी रहे हैं हमारे साथ। तो गोविंद जी, ये गाना आपके नाम, आपकी ओर से आपकी ब्यूटीफुल वाइफ वेदा के लिए, साथ ही गोज आउट फॉर आपकी प्यारी सी बेटी दीक्षा, और साथ में है बेटे युधीश, योगेश, सभी रघुनंदन परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, सभी उला परिवार जो इस वक्त साथ दे रहे हैं, सभी के नाम ये खूबसूरत सा गीत। और गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ जगजीत सिंह, टेकन फ्रॉम द फिल्म प्रेम गीत, ये गाना स्पेशली गोविंद रघुनंदन जी आपके नाम।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए यहाँ पर कनिष्का साथ दे रही हैं आप. दिस वन गोज आउट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली. इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं आप एंड शोज दिस ब्यूटीफुल गाना. जमीन आसमान फिल्म से लिया हुआ ये गाना आप सुनना चाहती हैं. लता जी की आवाज़ में ये गाना डेडिकेट कर रही हैं आपके लिए कनिष्का. गोज आउट आपके पूरे परिवार के नाम एंड इक्वली गोज आउट रेडियो मनोरंजन लिसनर्स के नाम. सुन रहे हैं आप सुहाना सफ़र शामिल होता हुआ ये खूबसूरत गीत.

से लिया हुआ ये गीत दोस्तों और चलिए अगले गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर लौट कर आएंगे यहां पर आपके मैसेजेस डेडिकेशंस तो आ गए हैं तो बस इन खूबसूरत गीतों को आप तक पहुंचाना है परी का साथ है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन आप भी साथ निभा रहे हैं तो समाचारों के बाद लौट कर आएंगे लेकर आएंगे ये प्रोग्राम आपके लिए अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहेगा आपका और मेरा साथ

0: देश विदेश की खबरें सुनते हैं आपसे आज ना नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतूषा सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार पानी के संकट को लेकर तनाव बना हुआ है कल शाम कॉन्लेव्यू एमिताज और कॉन्फुको के निवासी पानी की आपूर्ति में समस्याओं का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए सड़कों के अवरुद्ध होने और वस्तुओं में आग लगाए जाने तथा तनावपूर्ण माहौल के कारण पुलिस और स्पेशल मोबाइल फोर्स को हस्तक्षेप करना पड़ा सैंपल में भी गुस्सा बना रहा कई निवासियों का कहना है कि वे लगभग 6 दिनों से पानी से वंचित हैं और उनके अनुसार वे अभी भी पानी के टैंकरों के आने का इंतजार कर रहे हैं चुनाव क्षेत्र नंबर 15 से चुने गए जूनियर मंत्री फौजी अलीमान और उनके सह उम्मीदवार सांसद कुशल लुबिन स्थिति को शांत करने और पानी के टैंकरों की व्यवस्था करवाने के लिए पूरी रात लगभग सुबह 3 बजे तक स्थल पर डटे रहे फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने फरवरी 2025 में दिलावन के घर से बरामद 114 मिलियन रुपए से भरे सूटकेस की जांच के सिलसिले में शुक्रवार 9 अक्टूबर को श्रीमती कोबिता जगनाथ को समन किया था श्रीमती कोबिता जगनाथ से इससे पहले 3 सितंबर 2025 को आयोग द्वारा पूछताछ की गई थी उस अवसर पर उन्होंने संकेत किया था कि वे अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेंगी तब से एफसीसी ने इस जांच के हिस्से के रूप में आवश्यक वेरिफिकेशन कर लिया है और जरूरी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं कल फ्रेंच समाचार बुलेटिन के आमंत्रित सामाजिक सुरक्षा के जूनियर मंत्री को एमएसएम के नेता के उस बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था जो उन्होंने स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट पर दिया था कुगन पारापेन ने स्पष्ट किया कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के एसडीडीएस प्लस मानदंडों का पालन करने वाला अफ्रीका का पहला देश है उन्होंने घोषित किया कि आज के आंकड़े अर्थव्यवस्था को एक वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं विदेश में रियाद के हवाई अड्डे पर हुए हमलों में कम से कम 3 सऊदी नागरिक मारे गए हैं इनमें हवाई अड्डे का एक कर्मचारी शामिल हैं इस हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी और कई घंटों बाद दोबारा कुछ उड़ानें शुरू की गई हैं ये थे अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार शोक समाचार सुनिए नंबर 63 रूट पॉम्पलमुस सेंट क्वापोट लुई में नंबर 63 रूट पॉम्पलमुस सेंट क्वापोट लुई में 58 साल की 58 इयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रानी बोगाली पैदाशी नाम कैलाश और जो इंदिरा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी आज

0: सपहर 1:30 बजे उनके मकान नंबर 63 खुद पॉम्पले मुस्सेंट खापोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बहु लेके श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 1:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो ये जो खूबसूरत सा गीत था आंखियों के झरोके से, इसे हमने डेडिकेट किया फॉर कविता, मोहन, रेखा, सबीना, सभी दोस्तों के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद. इन खूबसूरत गीतों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन के जरिए. लेकर आए हैं प्रोग्राम सुहाना सफर. मैं हूं परी आपके साथ दोपहर के 2 बजे तक. और अभी के लिए रफ़ी साहब की आवाज़, झुक गया आसमान फिल्म से लिया हुआ ये गीत हमारे सभी लिसनर्स के नाम. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070-402-8070 पर. हो रहा है आपका इंतज़ार.

0: RM3 Radio.
1: और यहाँ पर मुकेश साहब की आवाज़ में ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं सीलू आपके नाम एक वायो से साथ दे रहे हैं आप सभी दोस्तों के लिए और सभी पंटिया परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम और इसे सुहाना बना रहे हैं आपके गीत आपकी पसंद तो चलिए ये जो गीत है इसे हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं कह रहे हैं कि छोड़ चले महफिल लेकिन हमारी इस महफिल को छोड़ के ना जाइए हमारा साथ निभाइए और ये जो सफ़र है इसे साथ मिलकर हम बिताएंगे अब इसे लेकर दोपहर के 2 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ

0: continuous music. RM3.
1: और चलिए यहाँ पर बाबू अनाटवा जी हमारा साथ दे रहे हैं आप आपकी पसंद का ये गीत डेडिकेट कर रहे हैं सभी अनाटवा परिवार के नाम उम्मीद करते हैं आज का ये फ्राइडे आपका अच्छे से बीत रहा है इन गीतों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं यानी कि टू ऑल द लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर प्रोग्राम मैं हूँ परी आपके साथ दोपहर के 2 बजे तक एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ट्रैक एंड ये गाना आपके लिए

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और चलिए चाची उषा आपकी पसंद का गाना थोड़ा देर से चला रही हैं, इतने सारे मैसेजेस डेडिकेशंस यहां पर थे, कुछ व्हाट्सएप के जरिए, कुछ आपके मैसेजेस के जरिए और कुछ फोन कॉल्स के जरिए यहां पर आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है। थैंक यू इन गीतों को हम तक पहुंचाने के लिए और कोशिश यही है कि ये जो गीत है आपकी लाइफ में थोड़ा सा और रंग भर दे। फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर योर सुहाना सफ़र। सफ़र तो काफ़ी सुहाना है क्योंकि आपका साथ बना हुआ है। तो अभी के लिए चाची उषा ये गाना हम आपके लिए चला रहे हैं और आपकी ओर से डेडिकेट कर रहे हैं आपके साथ दामाद, आपकी बेटी, आपके 6 नाती पोते, सभी उषा सीता परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए रफ़ी साहब, लता मंगेशकर की आवाज़ें, फिल्म शोला और शबनम, ये गाना आपके लिए।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो चलिए कविता जी, वो गाना था स्पेशली आपके नाम, कजरा मोहब्बत वाला, किस्मत फिल्म में से लिया हुआ ये गीत आप सुनना चाहती थी। कहती हैं कि विश्वजीत आपके फेवरेट एक्टर है और ये फिल्म आपकी पसंदीदा फिल्मों में से एक। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस गाने को आपने पसंद किया। और इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं प्रकाश जी, और डेडिकेट करना चाहते हैं गाना अपने पूरे परिवार के नाम। स्पेशली गोज आउट फॉर वाइफ आशा और साथ ही साथ जितने भी हमारे लिसनर्स हैं। दैट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म अभिलाषा, रफी साहब की आवाज आपके लिए, आपकी पत्नी के नाम और सभी लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन।

और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1:52 हो चुके हैं 9th of October फ्राइडे की दोपहर, जहाँ पर अब वक्त हो चला है कि मैं आपसे लूँ अलविदा। समय है कि परी तो यहाँ से जाए, लेकिन प्रोग्राम्स और खूबसूरत गानों का कारवां आपके लिए जारी रहेगा ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार का दिन है और आने वाला है अब शनिवार और रविवार, यानी कि वीकेंड का ये जो मूड है उसे भी सेट रखेंगे हम आपके लिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। गानों का कारवां जारी रहेगा, सुहाना सफर ये प्रोग्राम, इसे आप सुन पाएंगे 12 से लेकर 2 बजे तक हर रोज, जहां पर खूबसूरत गीतों के साथ खूबसूरत यादें भी ताज़ा होती है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप हमारे प्यारे प्यारे हमसफर बने रहेंगे, गीतों को गुनगुनाते रहेंगे, आपके इस टाइम को स्पेशल बनाते रहेंगे हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ RM3 रेडियो मनोरंजन, जहां पर कोशिश यही होती है कि खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल को लुभाए रखें हम। और साथ ही साथ दोस्तों, वादा ये करके जाते हैं कि यहां पर आपसे मुलाकात तो होती रहेगी, लेकिन कुछ गीत ऐसे जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे जिसमें अलग अलग किस्म के गीत शामिल होते हैं, नए हो या फिर पुराने, सब गीतों का आनंद आप ले सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे यानी कि परी को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी सोमवार आपसे इसी टाइम 12 से लेकर 2 बजे तक इन योर सुहाना सफर। तब तक के लिए जुड़े रहे RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ।

0: देश विदेशी खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। पानी के संकट को लेकर तनाव बना हुआ है। कल शाम कॉलिव्यू एमिताज और कॉन्फुखो के निवासी पानी की आपूर्ति में समस्याओं का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सड़कों के अवरुद्ध होने, वस्तुओं में आग लगाए जाने और तनावपूर्ण माहौल के कारण पुलिस और स्पेशल मोबाइल फोर्स को हस्तक्षेप करना पड़ा। सैपल में भी गुस्सा बना रहा। कुछ निवासियों का कहना है कि वे लगभग 6 दिनों से पानी से वंचित हैं और उनके अनुसार वे अभी भी पानी के टैंकरों के आने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव क्षेत्र नंबर 15 से चुने गए जूनियर मंत्री फौजिया अलीमन और उनके सह उम्मीदवार सांसद कुशल लोबिन स्थल पर कल देर रात तक बने रहे। देश के दक्षिण पश्चिम में रिवियनवा के एक निर्माण स्थल पर पेड़ काटे जा रहे हैं। बानियन स्क्वेयर बिजनेस हब परियोजना के प्रमोटर को कार्य रोकने का आदेश दिया गया है। रिवियनवा जिला परिषद ने उनके खिलाफ स्टॉप ऑर्डर जारी किया है क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन परमिट जून महीने में ही एक्सपायर हो चुका था। वहां लगभग 100 साल के बरगद के पेड़ को आंशिक रूप से बचाया जा सका है। परियोजना के प्रमोटर ने पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान से कहा कि पेड़ों की कटाई रोक दी गई है। कल सुबह पेड़ों को काटने से रोकने के प्रयास के दौरान गिरफ्तार पर्यावरण प्रेमी पेसी यिपतोंग को रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने पेड़ों की सुरक्षा के लिए ठोस नियमों की आवश्यकता है। विदेश में मलेशिया में घने धुएं के कारण सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई गतिविधियां ठप पर गई हैं। इंडोनेशिया के जंगलों में पिछले हफ्तों से लगी भीषण आग के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये धुआं सिंगापुर और फिलीपींस तक भी जा पहुंचा है जहां वायु प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड पार कर चुका है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। रारो दामिचे में 79 साल के 79 years old के श्री कौपानेन स्वामी तंजापेन, श्री कौपानेन स्वामी तंजापेन जो विष्णु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी से आज शाम 5 बजे उनकी पत्नी विनोदा मंगापति के मकान रारोड आमीचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। आप जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन पर और कार्यक्रम है गीत नृत्य और परंपरा। यज आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में हमारा सहयोग दे रहे हैं, उनको आभार प्रकट करते हैं। और श्रोताओं, आजकल परिवेश जो है और संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति में सबसे प्रमुख है हमारे बड़े लोग, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे परिवार जन, जो कि आजकल हम जिनके लिए पितृपक्ष की पूजा भी कर रहे हैं। तो आज हमारी चर्चा जो रहेगी पितृपक्ष पर, और परसों से हम दुर्गा पूजा में पदार्पण करने वाले हैं, तो इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। आज के अतिथि हमारे बहुत ही गणमान्य आचार्य पवन कुमार जी हैं, जो कि 19 वर्ष से मॉरिशियस में कार्यरत हैं और वे मोंटाई ब्लांश सनातन धर्म सभा के उमानाथ मंदिर में कार्यरत हैं। श्रोताओं, आप सबके साथ मैं आचार्य पवन जी का स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आचार्य जी से सबसे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए मैं पूछना चाहूँगी। आचार्य जी, मॉरिशियस में पितृपक्ष खूब लोग इसकी पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, कई पिंडा का जो कर्म है वो करते हैं, इसके आधार पर आपका क्या विचार है?
1: जी, सभी को सादर जय सियाराम। साथ में कार्यक्रम संचालन कर रही श्रीमती अंजू घरभरन जी और उनके टीम को भी बहुत बहुत अभिनंदन इस शुभ कार्यक्रम के लिए। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि पितृपक्ष क्यों महत्वपूर्ण है हम सभी सनातनियों के लिए, तो श्रोतागण, आप सभी जानते हैं कि अभी हम पितृपक्ष में पितृ पूजन में लगे हुए हैं। यह पितृ पूजन का आज 13वां दिन है, 13वां 14वां दिन है और कल जो है समापन की ओर है।
0: बिल्कुल,
1: तो थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पितृपक्ष है क्या और पितृपक्ष
0: से डरते हैं कि आजकल पितृपक्ष है, आज ये नहीं कर सकते हम, पूजा नहीं कर सकते हम, दिया नहीं जला सकते। पर हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि जो भी आप पूजा करते हैं वो वैसे ही की जानी चाहिए। इस पर आप थोड़ा से जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जी, विस्तार से समझेंगे कि आप देखें कि भारत और भारत से जुड़े हुए लोग जहाँ जहाँ जिस देश में हैं वह अपनी परंपरा तीज त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं।
0: मनाने भी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, मनाने चाहिए,
0: ईश्वर ने हमें मौका दिया है तो क्यों नहीं।
1: जी, तो थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। आप देखिए, श्रावण मास के बाद पूरा एक मास भाद्रपद महीना में हम लोग जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, तीज से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक, जैसे पूर्णिमा के दिन आए, ठीक उसी दिन पूर्णिमा के दिन पितृपक्ष का जो प्रारंभ हो जाता है उसे महालया के नाम से जानते हैं।
0: जी,
1: पितृपक्ष का जो महालया होता है वो भाद्रपद पूर्णिमा को होता है। हमारे पंचांग में पितृपक्ष को 16 दिन माना गया है, पूर्णिमा एक दिन हो गया। और जैसे पूर्णिमा समाप्त हुआ, जो हिंदी मास का प्रथम दिन होता है वह आश्विन कृष्ण पक्ष।
0: जी,
1: तो आश्विन कृष्ण पक्ष से लेकर के आश्विन अमावस्या तक वह 15 दिन और एक दिन पूर्णिमा, तो कुल मिलाकर के 16 दिन यह पितृपक्ष का माना जाता है। तो इन 16 दिनों में हम सभी को अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति श्रद्धा, आदर भाव प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए यह पितृपक्ष में उनके लिए तर्पण, पिंडदान या उनके निमित्त दान करने का विधान बताया गया है। अब क्यों जरूरी है, आप सभी जानते हैं जो जो जहां से सुन रहे हैं कि हमारे जीवन में माता पिता का बड़ा स्थान होता है। आखिर वह पितर हौन कौन है? जी,
0: सबसे
1: हमारे संस्कृति में
0: माता पिता,
1: इसलिए मातृदेव भव पितृदेव भव कहा गया है।
0: जी,
1: कि आप इस संसार को जानते हैं और आप जब इस संसार में आए तो उनमें माता पिता का योगदान है। माता पिता न होते तो न हम इस संसार को जानते और न अपने आप को स्वयं को जान पाते। इसलिए वेदों में भी कहा गया मातृदेव हो पितृदेव होवा। दूसरे आप देखेंगे उपनिषद में कहा गया तुम्ही वो माता च पिता तुम्हें, यानी माता पिता को ईश्वर से भी पहले वंदना किया गया।
0: बिल्कुल,
1: तो उनमें यह बताया गया कि बाकी दिनों में तो हम लोग घर में जो पूजा पाठ करते हैं करते ही रहते हैं, तो इसलिए इस महीने में विशेष पक्ष रखा गया, उसका नाम पितृपक्ष कहा गया। यानी कि आप इस पितृपक्ष में पितृ से संबंधित सारे कार्य करें। पितृ से संबंधित के अलावा ऐसा नहीं कि बाकी सारे कार्य न करें, सिर्फ मांगलिक कार्यों के लिए मना है। जैसे शादी विवाह नहीं करना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना है, लेकिन आप सारे कार्य कर सकते हैं। जो नित्य पूजा होता है, जो नित्य व्रत उपवास है, उनको अवश्य करना चाहिए, कि उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आखिर पितृ के प्रति श्रद्धा या उनका सम्मान कैसे हो सकता
0: आपने
1: है?
0: आपने श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया, इसको श्राद्ध भी कहा जाता
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो श्रद्धा से ही
1: श्राद्ध बना है। जी जी।
0: कि हमारी श्रद्धा रहनी चाहिए कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें।
1: जी जी।
0: वो धरती पर हैं तो हमें उनकी सेवा करनी है, पर वो ना भी हों तो हमें उनको याद करके सम्मान देते हुए उनके लिए पितृपक्ष में तर्पण तो अवश्य करना
1: चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि श्रद्धा से श्राद्ध, तो संस्कृत में है श्राद्धम इति श्रद्धा, यानी कि जो श्रद्धा है वही श्राद्ध के रूप में बना। यानी जो आपके बड़ों के प्रति, पूर्वजों के प्रति जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, वही श्राद्ध बना,
0: उसे बनाए रखें।
1: बिल्कुल। और यह क्यों हम करते हैं और क्या इससे हमारा लाभ है, आध्यात्मिक लाभ क्या है? हमारे संस्कृति में तीन ऋणों को बताया गया है, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण है।
0: जी।
1: इन तीनों से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जो जो विधान बताए गए हैं उसको अवश्य करना चाहिए। अब देवऋण से कैसे मुक्ति हम पाएंगे, ऋषि ऋण से कैसे और पितृ ऋण से? तो हमारे इस शरीर पर, हमारे इस जीवन पर इन तीनों का असंख्य उपकार है। एक दो उपकार नहीं, भोजपुरी भाषा में कहें तो एहसान, बहुत सारे एहसान हमारे ऋषियों ने और हमारे पितरों ने हमारे ऊपर किया, तब जा करके यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और हम ऐसे सुंदर शरीर को प्राप्त करके यदि हम उनके निमित्त कुछ श्रद्धा सुमन अर्पण न करें तो यह जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहा गया कि यह पितृपक्ष में आप देवताओं के निमित्त अर्पण करें। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक अंजलि जल ही दे सकते हैं, और आप में भाव हो, श्रद्धा हो, तो और आप इसको आचार्य गुरु पुरोहित के द्वारा आप विस्तार से करें, विधि पूर्वक विधान से करें,
0: कर्मकांड पूरा,
1: बिल्कुल कर्मकांड जो बताया गया उसके अनुसार करें। इतना भी न कर सके तो आप कम से कम उनके लिए तर्पण करें, प्रतिदिन करें, और प्रतिदिन न कर सके तो जैसा आप शुरू में ही प्रश्न की कि कल के बाद परसों दुर्गा पूजा, तो कल जो है यानी शनिवार के दिन, इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, यानी पितरों का विदाई। और जो भूल चुक हुआ हो इन 15 दिनों में, जो आप न कर सके हो या जिनका छूट गया हो, वो आप कल करके आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
0: और इसमें पढ़ा है मैंने कहीं कि गाय को रोटी
1: जी,
0: खिलाना
1: जी, जी,
0: कुत्तों को रोटी खिलाना
1: जी,
0: और कौवे को दिया जाता है, चींटी को दिया जाता
1: जी,
0: है, मछलियों को दान दिया
1: जी,
0: जाता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: इस दान के पीछे क्या उद्देश्य है?
1: जी, बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक प्रश्न है आपके। आप जितने भी श्रोतागण रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, वैसे तो हम सभी के मन में यह होता है कि जो हम भोजन निकालते हैं, मॉरिशस की ये परंपरा है कि भोजन निकाल दिए, लेकिन भोजन किनके के लिए निकाले?
0: बिल्कुल, वो तो कहीं फेंकना नहीं है,
1: फेंकना नहीं है। तो पंच बलि का विधान है इसमें, जो पंच बलि है, जैसे आपने गाय के लिए कहा, तो शुरू से परंपरा रही कि गौ हमारी माता है,
0: माता है,
1: तो उनको माँ स्वरूप मान करके हमारे सनातन संस्कृति में हर घर की जो पहली रोटी है वह गाय के लिए समर्पित है। गांव-गांव में यहाँ भी आप लोग गौ ग्रास के नाम से निकालते हैं, तो गाय, फिर श्वान बलि है यानी कुत्ते को, फिर पिपीलका यानी चिट्टियों को, फिर कौओं को,
0: पक्षियों को जी।
1: तो उसमें पितृ दूध के रूप में पितृ संदेश लेकर के यहाँ वहाँ ऐसा माना जाता है कि जो कौआ है वह पितृ

0: इस संदेश को लेकर के इस जगह से उस जगह तक पहुंचाने वाला पक्षी माना जाता है, तो कौआ प्रमुख रूप से है। अगर ना हो तो उनके नाम लेकर के आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पंचबलि देते हुए फिर आप उनके निमित्त जो कुछ बना हो भाव लेकर के आप कि आपके निमित्त हमने बलि प्रदान किया और आज हमारे पितरों के निमित्त भी जो हमने श्राद्ध किया, तो ये हमारी परंपरा रही है कि अपने साथ हमारे इस परिवेश में जो भी जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे श्वान हो या पिपीलिका हो या चिट्टी हो, तो इन सब को हम बलि देते हुए श्रद्धा से श्राद्ध को पूर्ण करना चाहिए, ऐसा माना गया।
1: अब मैं आती हूँ इस प्रश्न पर कि पितरों को याद करने के बाद हम दुर्गा पूजा में पदार्पण करते हैं।
0: जी जी।
1: जैसा कि 10 तारीख को अंतिम श्राद्ध है।
0: जी जी।
1: कल पितृपक्ष का समापन है।
0: जी।
1: और 11 तारीख को हम दुर्गा पूजा में या नवरात्रि में पदार्पण करने वाले हैं।
0: जी जी।
1: उस नवरात्रि से पहले ये और उसके बाद ही नवरात्रि क्यों?
0: जी जी। तो थोड़ा सा इसके पहले हम एक दो प्रश्न आपके उसमें रह गए थे पितृपक्ष से लेकर के,
1: जी
0: उसी के बाद हम नवरात्रि पर शुरू हो जाते हैं।
1: जी।
0: तो जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं कि 15 दिनों तक आश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष के दिन होते हैं वह पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं, और इन 15 दिनों में जो आपने प्रश्न पूछा कि कल जो है 10 अक्टूबर को अंतिम श्राद्ध है,
1: अमावस्या,
0: अमावस्या की श्राद्ध है, सर्वपितृ अमावस्या, तो इन 15 दिनों जो आश्विन मास का रहा वह आश्विन कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, और इन 15 दिनों में जब आपने पितरों को प्रसन्न कर लिया, ठीक आपके प्रश्न पर भी आ गया कि जब आप पितर को प्रसन्न कर लिए तब आप देवताओं को प्रसन्न करिए,
1: प्रसन्न करने की ओर बढ़ते
0: हैं। अमोरसस के आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि पितरपक अब समाप्त तो हो गई, अब देवपक आए, भोजपुरी में लोग माताएं कहती हैं।
1: जी।
0: तो देवपक्ष के नाम से जाना जाता है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि पितरों को पहले प्रसन्न करना चाहिए। यदि आप आवश्यक है जब आप पितर को प्रसन्न कर लिए तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अब क्यों प्रसन्न करना है पितरों को? मैंने प्रारंभ में कहा कि जो अपने जो माता पिता इतने कष्ट सह करके हमारे इस शरीर को पालन पोषण करके उन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और उन माता पिता को हम भूल जाते हैं, तो वह उनके प्रति कृतज्ञता सम्मान करने का ये सबसे बड़ा समय पितृपक्ष होता है। और जैसे आप इन 15 दिनों में आप अपने अपने पितर को प्रसन्न कर लिए तो अब देवताओं की बारी आती हैं, तो उसमें सबसे पहले शक्ति की आराधना का वर्णन किया गया, यानी जैसे आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या समाप्त होता है तो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र का प्रारंभ हो जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष के पहले दिन ही हम लोग घट स्थापन करते हैं, दुर्गा जी को कलश पर उनके विभिन्न स्वरूपों का पूजन करते हैं, और प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिनों तक दुर्गा जी का हम लोग 9 स्वरूपों का अलग अलग नवरात्र में पूजन करते हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि जैसे हमने देवपक्ष प्रारंभ किया तो आखिर पितृपक्ष के बाद क्यों ऐसा देवपक्ष? तो जैसे पितृ लोग प्रसन्न हुए और हर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य होना आवश्यक है, तो इसके लिए दुर्गा जी से बड़ा और कोई भी पूजा नहीं हो सकता है, दुर्गा पूजन। इसलिए हमारे यहाँ 9 दिनों तक शक्ति आराधना की चर्चा की गई है।
1: और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर मॉनसून समाप्त हो जाता है, वर्षा समाप्त हो जाती है, उसके बाद दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। मॉनसून समाप्ति की ओर आ जाता है, घर की साफ सफाई सबसे उत्तम पूजा है कि घर में साफ सफाई हो, सब स्वस्थ रहें, इसके लिए पूजा आवश्यक है।
0: जी, जी।
1: और उसके बाद हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, सब मनाते हैं, पर हमारे लिए हमारे बड़े लोग जैसा कि आपने बताया पितृपक्ष में हम उनका सम्मान करते हैं, उसके बाद हम पदार्पण करते हैं दुर्गा पूजा में, और दुर्गा पूजा में आप बता रहे हैं कि सबसे अच्छा स्वास्थ्य, सबसे अच्छा नियम पूर्ण जीवन जीने के लिए दुर्गा पूजा संपन्न की जाती है।

0: जी
1: तो जैसा आप बता रही हैं तो दुर्गा पूजा, तो आप देखें कि दुर्गा पूजा के पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक, हम उस पर थोड़ा चर्चा आप सबसे कर रहे हैं
0: जी।
1: पहले दिन ही जैसे हम शक्ति आराधना के लिए जब हम उत्तम स्वास्थ्य की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि जीवन में हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारा घर परिवार जो है वह भी खुशियों से भरा हो और सब लोग मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव से रहें। तो यह नवरात्र के दिनों में हम लोग माता के अलग अलग स्वरूपों से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम शैलपुत्री की आराधना करते हैं
0: सबसे प्रथम
1: दिन, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता, तीसरे दिन चंद्रघंटा, तो इन सब का अलग अलग हमें कथा के द्वारा प्राप्त होता है और वह एक संदेश देती है। नवरात्रि, नवरात्रि में ऐसा ना कि सिर्फ रात्रि
0: जी,
1: आपको जब व्रत उपवास नियम शुरू करने हैं तो नवरात्र के पहले दिन से ही आपको शुरू करने हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति का आराधना का जो विशेष समय होता है वह नवरात्र होता है। जैसे हम शक्ति क्या है पहले समझ लेते हैं, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो इन सब में शक्ति को होना आवश्यक है। कहा भी गया है कि बिना शक्ति के शिव भी सौ हैं
0: जी।
1: तो यह शरीर भी हमारा, जब हमारे में प्राण शक्ति है तो हम जीवित हैं, और जैसे हमारे शरीर में यह प्राण शक्ति नहीं होता है तो शरीर भी सौ बन जाता है। तो हर किसी को शक्ति की आवश्यकता है। तो यह नवरात्र जो होता है 9 दिनों तक शक्ति संचय करने का महापर्व है। इसलिए जब हम पितरों को प्रसन्न कर लिए, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया, तो दुर्गा जी की कृपा और उनकी समस्त शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी सनातनी बंधुओं को यह प्रयास करना चाहिए कि 9 दिनों तक नियम पूर्वक, भक्ति पूर्वक और प्रेम पूर्वक नवरात्र का व्रत करें। हर घर में जैसे आपने कहा साफ सफाई, तो जैसे अमावस्या समाप्त हुआ आप अपने घर की साफ सफाई, अपने पूजा रूम की सफाई, बहुत सारे घर में जो पूजा यानी कि कक्ष है,
0: देवस्थान
1: है जिसे देवास भी बोलते हैं
0: जी।
1: तो उस देवास को आप अच्छे से साफ सफाई करके जिस भगवती की आप पूजा करने जा रहे हैं उनके लिए जो साज सज्जा है, श्रृंगार हैं, उनको अच्छे से आप सजा करके इन 9 दिनों तक आप सब परिवार मिल करके आप भक्ति भाव से पूजन करें, और उन 9 दिनों में आपके अंदर जो भी दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, उनको समाप्त करते हुए अच्छाइयों को प्रवेश कराइए, शक्ति अर्जित करें, ताकि 9वें दिन जब हम 9वें के दिन हवन पूजन करते हैं तो देखिए भारतवर्ष में 10वें दिन विजयादशमी मनाया जाता है, यहाँ भी मनाते हैं, मॉरिशस में भी विजयादशमी का पर्व। तो आखिर ये विजयादशमी है क्या? तो आप जब 9 दिनों तक शक्ति की आराधना कर लिए, हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ सब का नाश हो गया, इन सब पर विजय प्राप्त कर लिया, तो दार्शनिक शब्दों में यूं कहें कि हमारे इस शरीर ने उस सबको दूर करके विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन अब यदि कथा पौराणिक मान्यता को देखेंगे तो विजयादशमी, एक तो माता दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया, तो उनके वध करने के बाद देवताओं ने, भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ आनंद मनाया, और दूसरी कथा कि राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया, तो इस उपलक्ष्य में भी हम विजयादशमी मनाते हैं। तो ऐसे यह 10 दिनों का जो है, 9 दिन के बाद 10वें दिन विजयादशमी, सभी सनातनियों के लिए पूरे वर्ष भर शक्ति अर्जित करने का महापर्व है।
0: पूरे वर्ष हम प्रार्थना करते हैं पर इन 9 दिनों में विशेष प्रार्थना होती है
1: जी,
0: जिसमें हम अपने मन का जो रावण है
1: जी, जी,
0: उसको समाप्त करें
1: जी, जी,
0: ये सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारे प्रार्थना का, कि हम 9 दिन विशेष पूजा का आयोजन करते हैं अपने घरों में, कलश स्थापना होती है, सब होती है, पर हमें प्रेम से वो पूजन करना है और साथ ही अपने अंदर जो बैठा रावण है
1: जी, जी, जी,
0: अपने विचारों को सुधारते हुए, अपनी समस्याओं से को दूर करते हुए हमें उसके लिए पूजा करनी विशेष आवश्यक
1: जी,
0: होती है
1: जी, जी।
0: आपका इस पर क्या कहना है?
1: बहुत ही अच्छा आपका विचार है, और श्रोताओं के लिए भी कि रावण तो जो काल्पनिक और जो पौराणिक कथाओं के द्वारा हम लोग सुनते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं, या बार बार कहीं कहीं कथाओं के माध्यम

0: से रामलीला के माध्यम से कि रावण को मार दिया जाता है, जलाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो रावण रूपी जो भाव विराजमान है उसको कैसे जला सकते हैं?
1: बिल्कुल।
0: तो इसके लिए ही व्रत उपवास बताया गया है। आप देखें कि जब आप संकल्प लेते हैं कि हम 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, तो प्रथम दिन से ही यह मन में संकल्प ले कि हमारे अंदर जो ईर्ष्या द्वेष होता है, कैसा ईर्ष्या द्वेष है कि सनातन संस्कृति की ये परंपरा है कि हमारा भी विकास हो और दूसरे लोगों का भी विकास हो, यानी हम भी आगे बढ़ें और दूसरा भी आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बढ़ रहे हैं और दूसरा बढ़ रहा है तो उसको देख करके हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष
1: जलन हो।
0: तो व्रत उपवास में यह भाव त्याग करके कि जितना में हम हैं उतने में हम प्रसन्न रहें, भगवान ने जितना दिया हम उतने में प्रसन्न रहें और उसी में हम तरक्की करेंगे। तो यह आप जब शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं प्रथम दिन, तो माता शैलपुत्री का जो भाव है आप देखेंगे, शैल मतलब पहाड़ होता
1: पहाड़।
0: है और पुत्री शैलपुत्री के नाम से। तो आप देखिए कि जब बारिश का समय होता है, गर्मी का समय होता है, जो पहाड़ है जो पर्वत है अपनी जगह स्थिर होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो यह संदेश माँ शैलपुत्री देती है कि आप अपने जीवन में भी सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, या यूं कहें कि हर कार्यों में, विकट समस्याओं में भी आप अडिग रहें, यह माता शैलपुत्री का शिक्षा है
1: जी।
0: दूसरी स्वरूप माता का ब्रह्मचारिणी है
1: जी।
0: तो ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी मतलब हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन जब इसका भाव समझेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से वाणी से, वह तब की अधिष्ठात्री देवी है, कर्म से, इन सभी में आपको, तो वह कैसे हो सकता है? जब आप दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र की पाठ करती है तो उसमें एक लाइन दिया गया, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे माँ, हमारे अंदर जो ईर्ष्या द्वेष बुराई है उनको सबको नाश करके ऐसा स्वरूप प्रदान करो कि चारों ओर जय जयकार हो। नवरात्रि का तो यही भाव है कि हम 9 दिनों तक पूजा करें तो चारों तरफ हमारा जय जयकार हो। ऐसा नहीं हम प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ हमारा जयकार हो, दूसरे का नहीं हो। यह सनातन का प्रमुख संदेश है हिंदू संस्कृति में कि सबका जय जयकार हो। तो यह ब्रह्मचारिणी माता के द्वारा यह हम प्रार्थना करते हैं और 9 दिनों जो हम लोग तप करते हैं वो उन्हीं का तो स्वरूप है, उन्हीं की कृपा से तो हम कर पाते हैं।
1: बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। हम यज्ञ से कहते हैं कि हमें एक गीत के साथ इस कार्यक्रम को सजाएं, जिसमें हमने एक भजन ही रखा हुआ है दुर्गा पूजा का, फिर चर्चा आचार्य जी के साथ जारी रहेगी
0: जी।

0: संगीत, नृत्य और परंपरा।
1: श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो अभी अभी जुड़ पाए हैं रेडियो से, उनको बताना चाहूंगी कि आज हम दुर्गा पूजा पर चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध या कि पितृपक्ष जो जिसे हम कहते हैं, उस पर चर्चा हो चुकी है और अब हम दुर्गा पूजा पर चर्चा कर रहे हैं। और अतिथि के रूप में हमारे साथ बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर और आप श्रोताओं की जिज्ञासा पर आचार्य पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, हम उनसे दो दिन की दुर्गा पूजा पर तो चर्चा हो गई, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी, इसके बाद तृतीय दिवस पर आते हैं हम, कि जब हम अभी जो भजन हम

0: ने सुना कि काल के पंजे से हमें बचाओ
1: जी।
0: और हम किस भंवर में फंसे हुए हैं उसमें से उभरने के लिए उपवास रखते हैं। तो जब उपवास कहते हैं हम, व्रत कहते हैं, तो वो माता के साथ समय बिताने का समय है कि हम उससे शक्ति की अपेक्षा कर रहे हैं, तो हमें भी तो समर्पण करना है, समर्पित रहेंगे तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे।
1: जी जी,
0: आपके विचार
1: जी। तो पुनः सभी श्रोताओं को जय माता दी। आप माता रानी पर विशेष चर्चा सुन रहे हैं, हमारे साथ अंजू जी हैं, उनका भी सुंदर सुंदर विचार प्रश्न के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए कि घर बैठे बहुत सारे मन में शंका होता है कि कैसे पूजन करें, कैसे नौ दिनों में क्या करें। तो इससे पूर्व हमने माता रानी के दो स्वरूपों की चर्चा की, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तीसरे दिन माता का चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन करते हैं। चंद्रघंटा का ही अर्थ है कि आप देखें कि चंद्र मतलब चंद्रमा और घंटा, जिनका घंटे के आकार स्वरूप में जो माँ विराजमान हो वह चंद्रघंटा है। दूसरे शब्दों में कहें तो घंटे की टंकार से जब शत्रु भयभीत हो जाते हैं ऐसी माँ चंद्रघंटा है। थोड़ा हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, हमारे यहाँ पूजन पाठ में आरती के समय घंटी बजाने का परंपरा है
0: जी,
1: घंटी हम लोग बजाते हैं,
0: संस्कृति में जुड़ता है
1: जी, जी
0: जी।
1: शंख भी बजाते हैं,
0: शंख बजाते हैं,
1: और इसके साथ साथ अनेक वाद्य यंत्र हैं, और इस कार्यक्रम का नाम भी है
0: गीत नृत्य और परंपरा
1: जी।
0: तो प्रारंभ होता है भोलेनाथ के डमरू से
1: जी, जी डमरू से
0: डमरू से ही सब स्वर हैं
1: जी, जी। तो ऐसे में जितने वाद्य यंत्र हैं और वहाँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है उसमें घंटा, आप मंदिर में जाते हैं जब प्रभु के सामने आप दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो सबसे पहले उस घंटा को बजाते हैं जो मंदिर के द्वार पर लगा होता है। और घर में हम लोग आरती के लिए घंटी का प्रयोग करते हैं,
0: तो नकारात्मकता को भी हटाने का
1: जी जी यही है, मेन यही है कि जो भी निगेटिव एनर्जी हो वो आपके घर से दूर होता है। हमारे सनातन संस्कृति में कोई भी पूजा पाठ व्रत उपवास बिना जितने सारे कार्य हैं सभी नकारात्मकता को दूर करने के लिए है। उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, घंटी क्यों बजाते हैं, संघ क्यों बजाते हैं। तो आप देखें कि माता का स्वरूप भी वैसा है, एक तरफ तो चंद्रमा से जहाँ हम चंद्र को देख करके मन हमारा शांत होता है, शीतलता प्राप्त होता है, वैसे ही घंटे की टंकार से जैसे माता ने शत्रुओं को भयभीत किया, हम अपने घर में घंटी बजा करके प्रतिदिन आरती के समय अपने घर के जो भी निगेटिव एनर्जी हो वह दूर करें। अब चौथे स्वरूप में माता कुष्मांडा देवी की चर्चा आती है। कुष्मांड का अर्थ होता है भतुआ, यानी यह पृथ्वी जो है, जिसे हम पढ़ें कि पृथ्वी गोल है
0: जी,
1: तो पूरा ब्रह्मांड ही उस कुष्मांड में समाया हुआ है, यानी माता के उदर में समाया हुआ है। कुष्मांड स्वरूप में माता भक्तों का कल्याण करती हैं। पंचमम स्कंद माते थी, माता का जो पांचवा स्वरूप है स्कंद माता है। इन्हें कार्तिकेय जी की माता के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद होता है, स्कंद कुमार। तो ऐसी स्कंद माता विद्या बुद्धि को देने वाली हैं। षष्ठम कात्यायनी तीचा, बहुत पहले कात्यायन ऋषि हुए, उन्होंने दुर्गा जी की आराधना की और माँ दुर्गा जी उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई, तो उनके नाम से प्रसिद्ध हुई, इसलिए कात्यायनी नाम से जाना जाता है। जो रिसर्च करते हैं, जो नए नए खोज करते हैं, उनके लिए यह कात्यायनी देवी प्रसिद्ध हैं पूजन के लिए। और भागवत कथा में ऐसा आया कि गोपिकाओं ने कृष्ण जी को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी जी की आराधना की थी। सातवें स्वरूप में कालरात्रि, अभी आप भजन सुन रहे थे काल के पंजे से, तो जो कालों के भी काल हैं उनको तो महाकाल जानते हैं
0: जी,
1: लेकिन यहाँ देवी के स्वरूप में कालरात्रि जानते हैं कि वैसी कालरात्रि जो वह काल के भी रात्रि हैं, लेकिन वह काल के लिए है, शत्रुओं के लिए, राक्षसों के लिए, ना कि भक्तों के लिए।
0: भक्तों के लिए
1: हम लोग तो भक्त हो करके माँ की पूजा करते हैं, तो माँ हमें हमेशा
0: आशीर्वाद
1: उसी स्वरूप में आशीर्वाद देंगी जो एक माँ अपने पुत्र को देती हैं
0: जी।
1: और अष्टमम महागौरी, आठवें स्वरूप में माता गौरी जी का गौर वर्ण होने के कारण इन्हें हम लोग गौरी के नाम से, जो पार्वती जी हैं वही माँ गौरी हैं। और नवमम सिद्धिदात्री चा,

0: यानी कि नवें स्वरूप में माता सिद्धिदात्री के रूप में आपकी जो भी कामना हो, जो भी आप चाहते हो, वह आपकी कामनाओं को माँ सिद्धिदात्री पूर्ण करती हैं। ऐसे माँ सिद्धिदात्री नव स्वरूप में, नव का जब हम पूजन करते हैं तो हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब थोड़ा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नवरात्रि में नौ दिन ही क्यों, तो नौ का अर्थ होता है, एक तो हम संख्यावाची शब्द लेंगे तो नौ नाइन नंबर होता है
1: जी,
0: लेकिन नौ का अर्थ नूतन भी होता है, नया भी होता है
1: जी।
0: हर किसी का जीवन जो होता है एक जैसा नहीं होता है, आप नित्य प्रति यह चाहते कुछ नयापन हो, तो एमबीसी के तहत इस कार्यक्रम में अंजू जी के द्वारा भी आपके समक्ष नयापन प्रस्तुत हो रहा है कि दुर्गा पूजा में क्या करे, पितृपक्ष को कैसे समझे
1: जी।
0: आपने शुरू में प्रश्न किया कि पितृपक्ष में लोग मना करते हैं, डरते हैं, तो डरने वाली क्या बात है, जितने अच्छाई हो अच्छे कर्म पितृपक्ष में करना चाहिए और जितने बुरा या बुरे कर्म हो पितृपक्ष में छोड़ना चाहिए, यह संदेश है पितृपक्ष का
1: जी।
0: और ठीक जब आप अच्छा बुराइयों को छोड़ दिए, अच्छाइयों को ग्रहण किए, जैसे अच्छाई क्या, आप इसके उदाहरण में दिखाता हूँ कि पितरों का जो सबसे बड़ा तीर्थ है वह भारत में गया है
1: जी।
0: इस पूरे पितृपक्ष में लोग पितृयज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं पितरों के उद्धार के लिए, और सारे विश्व के लोग वहाँ जाते हैं पितरों के लिए, वहाँ पिंडदान करते हैं। गया में भागवत की कथा घर घर में भी लोग कराते हैं। एक और मैं भूल गया, जब आप पितृपक्ष का प्रश्न कर रहे थे, मॉरिशस में भी माताएं जीवित पुत्रिका अष्टमी के दिन किया, आज भी उस परंपरा को हम प्रणाम करते हैं जो परंपरा भारत से चल करके मॉरिशस
1: में पहुंची,
0: और आज भी माताएं अपने पुत्रों को जीवित रखने के लिए कि हम अपने पुत्र के लंबी आयु, पति के लंबी आयु के लिए यह जीवित पुत्रिका व्रत कर रहे हैं, वह पितृपक्ष में होता है
1: जी।
0: तेलुगु भाई लोग गोविंदन करते हैं
1: जी,
0: वह पितृपक्ष में होता है
1: बिल्कुल।
0: तो फिर हम सभी के मन में नहीं रहना चाहिए ऐसा डर कि नहीं हमें पितृपक्ष में कुछ नहीं करना चाहिए, सारे कार्य कर सकते हैं, जितने अच्छे कार्य हैं आप करें, सिर्फ मांगलिक कार्य को छोड़ना चाहिए, उसका कोई विधान ही नहीं है। तब जाकर के जब हम देवी की आराधना कर रहे हैं तो जैसे नवरात्र, तो नव मतलब आपके जीवन में नया, नूतन और नवाचार हो। हर वर्ष हम लोग नवरात्रि करते हैं, हर वर्ष माता की आगमन की तैयारी करते हैं। एक और आपने बीच में कहा था कि मौसम का बदलाव होता है, इसे हम आप हमारे यहाँ देखेंगे तो हर वर्ष शुरू से ही मैं इस नवरात्रि का नाम देता हूँ शारदीय नवरात्रि।
1: शारदीय
0: जो शरद ऋतु में मनाया जाता है वह शारदीय नवरात्रि, और जब चैत्र मास होता है हमारे हिंदू कैलेंडर में प्रथम मास होता है तो उसे वासंतिक नवरात्रि के नाम से जानते हैं
1: जी।
0: तो ऐसे शारदीय नवरात्रि में जो शरद ऋतु में मनाया जाने वाला देवी का यह जो नवरात्रि पर्व है हम सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है, यूं कहें कि हर सिद्धियों को देने वाली यह पूजा है, ऐसा मानना चाहिए नवरात्रि। और यह नवरात्र में नवरात्रि नौ दिन, नवरात्रि और दसवें दिन विजयादशमी, तो जब नवरात्रि में हम नौ दिनों तक देवी की उपासना करके अपने अंदर के जो भी बुराइयां उनको नष्ट करके उन पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तब हमें यह सुखद एहसास होता है, हमारे अंदर वह शक्ति का संचार होता है कि सारे बुराइयों से, सारे जो हमारे मन में भय था उसको दूर करते हुए अगले वर्ष तक हम निरोग रह करके आध्यात्मिक वातावरण में हम सारे कार्य करते हैं, ऐसा भाव होता है।
1: पर जब हम पूजा करते हैं, हम अगले वर्ष की आपने कहा बात कर रहे हैं, हम अगले वर्ष तक फिर उस रावण को कैसे अपने शरीर में फिर से सोचते हैं कि आ चुका है, और फिर हम उसका वध करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, क्या ऐसा हमारे संस्कारों, हमारे बच्चों में नहीं हो सकता कि वर्ष भर हम उन्हें जो शिक्षा दें वे उनके संस्कारों से, उनकी संस्कृति में जुड़ जाए कि हमें अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक बड़ों का सम्मान, अगर हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो, जब मैं बात कर रही हूँ तो आज यहाँ पर वृद्धाश्रम कितने हैं
0: जी जी,
1: नहीं होते अगर हम बड़ों का सम्मान करते, अगर हमारे घर में वृद्धों की जगह बनी रहती तो वृद्धाश्रम

0: नहीं होते जी, जी. तो हमें बार बार ये करना पड़ता है. हर वर्ष हम उस देवी माँ से आराधना करते हैं कि हमें सही मार्ग पर लाएं, हम भटक जाते हैं.
1: जी जी.
0: इस पर आपका विचार.
1: बहुत

0: हम जब जन्म लेते हैं तो बचपन खेलकूद में बिता देते हैं, युवावस्था होता है तो स्कूल जाकर के बिता देते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो वैवाहिक बंधन में बंध करके वह भी समय को बिता देते हैं,
1: हम जूझते रहते हैं
0: जी हमेशा हमेशा। तो इसलिए व्रत उपवास बताया गया है।
1: आज आपाधापी इतनी है जीवन में, भौतिकता इतनी है
0: जी जी,
1: भौतिक उसमें जीते हैं हम, हम अपने परिवेश में संस्कारों का महत्व खोते जा रहे हैं, हम अपनी श्रद्धा में भी कमी पाते हैं
0: जी जी।
1: इस पर आप
0: तो इसीलिए आप देखें कि मनुष्य चाहता है कि कम समयों में बहुत कुछ हमें प्राप्त हो, लेकिन प्रकृति का नियम है कि समय से पहले आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझें, आपको भोजन तैयार करना है घर में तो उसके लिए सब्जी को काटना है, तैयार करना है, बनाना है, तब जाकर के आप भोजन करेंगे,
1: कोई शॉर्टकट नहीं है।
0: तो जीवन को लेकर के शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए। आप देखिए जैसे पूरे जीवन के लिए, मैं छोटा ही बताऊंगा इसमें कि जैसे इस शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे शरीर को चलाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भजन आवश्यक है।
1: वो आत्मा का भोजन है
0: जी, आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रभु को शरण में जाना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको भजन में। और फिर इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो आप बता रहे हैं कैसे सत्संगति करना चाहिए। आज हमने उपवास किया, थोड़े देर के लिए अच्छा विचार आया, जैसे हम गलत लोग के संग कर लेते हैं वही विचार फिर उसका असर कर जाता है। तो इसलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि पति पत्नी जी सुसंगति करना चाहिए, पति पत्नी हो, परिवार के साथ, बच्चों के साथ मिल करके जब आप सत्संगति करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, तब हमारे मन का रावण जाएगा। न कि एक दिन हम रेडियो पे कह दें या कहीं जाके आप कथा सुन लिया, एक दिन आप व्रत कर लें और व्रत के बाद ही आप गलत आचरण करने लगें, तब तो आपके जीवन से और ना आपके मन से ना आपके संस्कार से वह रावण जाएगा। रावण तो स्वयं इतना बड़ा विद्वान था, वह तो हमारे लिए आदर्श उदाहरण है सभी के लिए कि उन्होंने भगवान से मुक्ति के लिए वैर लिया, रामायण की कथा है
1: जी।
0: और इतने बड़े प्रकांड विद्वान होते हुए यह दिखाया गया कि उनको बुराइयों को भगवान ने नष्ट किया, न कि उनके जो विद्वता था उसका नहीं। तो आप देखें हर पूजा पाठ से, अभी जो प्रारंभ होने वाले हैं नवरात्र, तो इन 9 दिनों में आप देखें देवी जी से सब कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। माँ आप मुझे बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, शक्ति दीजिए, हमारे अंदर स्मृति को दीजिए, लक्ष्मी दीजिए, हर स्वरूप को मांगते हुए हर आपकी इच्छाएँ जो हैं वह देवी माँ से आप प्रार्थना कर सकती हैं।
1: अब मैं जानना चाहूँगी कि आप एक मंदिर में कार्यरत हैं जो कि उमानाथ मंदिर है मोताई ब्लॉश का, वहाँ पर आप महिलाओं के अतिरिक्त क्या युवा पीढ़ी को भी पाते हैं कि वे दर्शन करने आते हैं, पूजा पाठ में भाग लेते हैं, या कि केवल महिलाएं ही इस संस्कृति इस संस्कार का निर्वाह कर रही हैं?
0: वैसे तो देखा जाए तो हर जगह महिलाएं ही आ गई हैं पूरे मॉरिशस में,
1: पर कन्याओं की बात कर रही हूँ क्योंकि नवरात्रि में कन्याओं का बहुत बड़ा
0: महत्व है,
1: तो कन्याओं की उपस्थिति आप पाते हैं वहाँ पर, और क्या वे कन्याएं इन संस्कारों को आगे बढ़ा पाएंगी?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारे यहाँ के लिए चर्चा करना चाहेंगे कि हमारा यह हमेशा प्रयास रहता है कि चाहे नवयुवक हों या नवयुवती हों, लड़कियाँ हों, बुजुर्ग हों या नौजवान हों, या बुजुर्ग से भी जो वृद्ध वाले अधिक उम्र वाले वयोवृद्ध वाले हों, उनके लिए भी, सबके लिए मैं सोचता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी संस्कृति के जड़ों से जुड़े रहें, यह प्रयास रहा है। तो इन नवरात्र में हमारे यहाँ मंदिर में अधिक लड़कियाँ आती हैं पारंपरिक वेशभूषा में, जैसे कि आप देखें कि जहाँ सलवार कुर्ती लोग पहनते हैं तो इस नवरात्रि में सब साड़ी पहन करके आती हैं। अब इस कार्यक्रम में भी जो आपका नृत्य गीत और परंपरा है
1: जी,
0: तो हम ऐसा कार्यक्रम आयोजन कराते हैं जिसमें वह नृत्य भी प्रस्तुत करती हैं, जैसे छोटी छोटी लड़कियाँ
1: गरबा
0: डांडिया, दशमी के दिन हम डांडिया का आयोजन कराते हैं जी। उस डांडिया में हमारे यहाँ कन्याएं भी होती हैं, 10 वर्ष से छोटी उम्र के भी और 50 से 60 वर्ष की भी महिलाएँ होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनमें तो जब हमने आयोजन कराया तो जो वयोवृद्ध माताएं थी उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम भी इतने आनंद से वह भर गए कि हम भी इस डांडिया में भाग लेंगे। तो नवरात्र ऐसा होता है

0: कि
1: आप लोक संस्कृति का एक भाग है।
0: जी बिल्कुल जी। चाहे मंत्रों द्वारा स्थिति हो या नृत्य के द्वारा या गीत के द्वारा या डांडिया के द्वारा, तो उनमें डांडिया और गरबा के द्वारा फिर कुछ बालिकाएं जो हैं छोटी छोटी भरतनाट्यम भी जानती हैं। तो देवी जी का प्रसिद्ध है स्तुति, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। तो इन पर उनके द्वारा जो है नृत्य का भी कार्यक्रम वहाँ पर हम आयोजन करते हैं। इसके साथ साथ कुछ गाकर के भी, चूंकि आपके भी कार्यक्रम का गीत है
1: जी,
0: तो गीत के द्वारा भी उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं।
1: तो भजन
0: कि,
1: गीत तो जी ये हमारी संस्कृति का भाग है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ
0: जी,
1: है।
0: भगवान की भक्ति के लिए चाहे वह नृत्य हो गीत हो या वाद्य यंत्रों के द्वारा उनका स्तुति हो या मंत्र के द्वारा प्रार्थना हो, इन सभी का समायोजन हम अपने यहाँ कार्यक्रम में नवरात्र के दिनों में और अन्य दिनों में भी हम करते रहते हैं वहाँ पे। और यह प्रयास करते हैं कि हर कार्यक्रम में कि उनके माता पिता से हम बोलते हैं कि अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके लाए और बताएं कि दुर्गा जी का जो पूजन है उसका महत्व क्या है, नवरात्रि का महत्व क्या है, कन्या पूजन का क्या महत्व है। और इन नौ दिनों के बाद जब विजयादशमी मनाते हैं तो हमारे यहाँ विजयादशमी और दशहरा का नाम भी जाना जाता है।
1: बिल्कुल। मॉरिशियस में जब हम बात करते हैं तो काली माई
0: जी जी
1: की एक विशेष परंपरा है यहाँ पर कि हर गांव में पहले एक काली माई की स्थापना होती थी जो अब मंदिरों के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। पिंडी वहां पर भी है
0: जी जी।
1: पर अब अधिकतर काली माई जो हैं वहां पर मंदिर में परिवर्तित हो चुके हैं, अन्य मूर्तियां भी पाई जाती हैं
0: जी जी।
1: पर काली माई की पूजा क्यों आपके लिए आवश्यक है?
0: जब भारत से हमारे जो अप्रवासी पूर्वज आए यहाँ तो गांव-गांव में लोग हनुमान और काली जी का मूर्ति
1: विशेष रूप से
0: रख करके पिंडी के रूप में, क्योंकि पहले तो मंदिर होता नहीं था।
1: यही मैंने कहा ना, अब तो मंदिर हैं
0: जी
1: और बहुत सारी काली माई जो है परिवर्तित हो चुकी हैं मंदिरों में।
0: तो उनके मन में यह होता था कि जैसे काली माँ हाथ में खड्ग लिए हुई हैं, राक्षस का सिर लिए हुई है, तो इनकी पूजा करेंगे तो कुछ भी कार्य होगा यह जल्दी करेंगे, यह भाव लेकर के। आज भी आप देखें कि हर गांव के एक कोने में, चाहे गांव का
1: शुरुआत हो
0: या अंत हो, वहां काली माँ का स्थान है। और एक नहीं, अब तो कई स्थान हो गए हैं।
1: आज भी गन्ने की कटनी होती है तो पहली जाके काली माई को दिया जाता है।
0: तो इनको हम नवरात्रि से जोड़ते हैं
1: जी।
0: जब आप जो प्रश्न किया तो हर जगह, और थोड़ा हम पूर्वजों के गाँव की ओर भी चलते हैं, जैसे कि जो पूर्वज आए भारत में तो वहाँ पिंडी के रूप में आज भी पूजन करते हैं, ना कि मूर्ति के रूप में। हमारे गांव में भी जहाँ से इनके पूर्वज आए, हम लोग भी काशी बनारस बिहार से हैं
1: जी,
0: तो वहाँ भी पिंडी के रूप में, साध पिंडी के रूप में काली जी का पूजन, और नवरात्र के दिनों में सातवें दिन उनका, सप्तमी के दिन, हालांकि प्रतिदिन होता है लेकिन विशेष पूजन सप्तमी अष्टमी और नवमी के दिन उनका होता है। तो जब हम दुर्गा जी की आराधना करते हैं तो नौ स्वरूपों के साथ जो प्रथम शक्ति है वो महाकाली है, दूसरी शक्ति लक्ष्मी, और तीसरी शक्ति जो है वह सरस्वती
1: है।
0: तो महाकाली शक्ति जो हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है
1: जी,
0: तो वह भाव ऐसा होता है कि इनकी पूजन करने से हमारे अंदर का जो भय होगा वह दूर होगा और शक्ति का संचार होगा। तो इसलिए लोग जो हैं हमेशा यहाँ पर काली जी का पूजन समय समय पर करते रहते हैं। और भाव भी यही होना चाहिए कि हमारे अंदर से किसी प्रकार से जो डर है वह दूर हो और हमारे अंदर निर्भय हो, हमारे अंदर कोई भय ना हो जी।
1: बहुत सारे विचार आपने हमारे साथ साझा किए, बहुत अच्छा लगा कि श्रोतागण जो कुछ नहीं भी जानते थे उनको ये जानकारी मिली कि हम पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और हमें नवरात्रि के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत सारी जानकारी दी। अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आ रहे हैं। आचार्य जी, मैं जानना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति, हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनसे आज की युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज मोबाइल पर भी एक मंत्र लगा देते हैं उनका पूजन हो गया
0: जी जी।
1: तो आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि हमारे लिए कितना आवश्यक है दुर्गा पूजा, पितृपक्ष और दीपावली आएगी?

0: उसके बाद
1: जी जी।
0: दशहरा मनाएंगे हम। ऐसे ऐसे पर्व हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं युवा पीढ़ी को जी।
1: तो आज जो बहुत अच्छा पुनः आपका प्रश्न है, आप देखें कि हम सभी लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं
0: जी।
1: तो समाज भी या जो समाज सेवी व्यक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, हम लोग का भी यह प्रयास रहता है कि जो नौजवान है आज टेक्नोलॉजी के पीछे ना भागे। आप जब तक गुरुमुख से, अपने बड़ों से, माता पिता से, या जीवन में आप जिनसे कुछ सीखना चाहते हैं उनके मुख से सुनना चाहिए, उनके सामने बैठ करके। तो जब तक आप धार्मिक संस्थान में नहीं जाएंगे, चाहे मंदिर हो, चाहे बैठका हो, या कहीं सत्संग का आयोजन हो, जब तक आप वहाँ बैठ कर के नहीं सीखेंगे, ये मोबाइल से नहीं हो सकता है, टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता है, क्योंकि वह तो कुछ क्षणों के लिए होता है। जब आप प्राचीन परंपरा को याद करेंगे कि हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, देवालय की व्यवस्था होती थी, और वहाँ जा कर के चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, हर प्रकार के वहाँ लोग जा कर के सीखते रहे हैं। तो आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, परंतु अपने गुरु, माता पिता, अपने गांव के जो मंदिर हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि यह हमारा जो सनातन संस्कृति है, जो हमारा हिंदू धर्म है, इनमें अनेक तीज त्यौहार जो हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हें अवश्य सीखें और सीख करके अपना
0: पूर्ण भागीदारी
1: जी आप स्वयं जाएं भी और जा करके अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है यह धार्मिक अनुष्ठानों से ही संभव है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने उमानाथ मंदिर में इतनी व्यस्तता में रहते हुए आज हमारे साथ जुड़ पाए। इस कार्यक्रम में आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी और युवा पीढ़ी के लिए जो संदेश दिया कि जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, हम अपनी संस्कृति का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, हम अपनी परंपराओं से छूटते जाएंगे। इसलिए हमें परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति का निर्वाह करते हुए, हमारे लिए ये नवरात्रि का आयोजन सबके लिए शुभ हो, ऐसा हम चाहते हैं। और आपकी जानकारियों के लिए विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यज को भी धन्यवाद देंगे। आज के इस रेडियो मनोरंजन पर इतना ही। एक अन्य कार्यक्रम के साथ फिर जुड़ेंगे। शुभ संध्या।
1: धन्यवाद।

0: Time check, exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज सुबह 9 बजे तक 184,000 से ज्यादा करदाताओं ने टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म सुपुर्द कर दिया था। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी याद दिलाती है कि मोहलत के ढल जाने पर जो लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे उन्हें पेनाल्टी लगेगी। करदाताओं की मदद के लिए इस सप्ताहांत को खासतौर पर पोर्ट लुई का दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा और 15 अक्टूबर को रात 8 बजे तक खुला रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स नहीं भरा है उनके पास ऐसा करने के लिए देर से देर 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक की मोहलत है। फरवरी 2025 में दिलावर के मकान पर 114 मिलियन रुपए से भरे लगेज के सिलसिले में जांच जारी है। इसके तहत आज श्रीमती कविता जगन्नाथ आज सुबह फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के मुख्यालय पहुंची। उनके साथ सितंबर 2025 में पूछताछ की जा चुकी है जिस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि वे इसके बारे में अन्य जानकारियां देंगी। उनके वकील उनके साथ आज मौजूद रहे। उनके साथ पूछताछ 14 अक्टूबर को जारी रखी जाएगी। आज विश्व डाक दिवस है। इस अवसर पर मॉरिशस पोस्ट द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 20 नवंबर तक आप पोर्ट लुई के पोस्टल म्यूजियम में इसका दौरा कर पाएंगे जहां आप दशकों से देश की डाक सेवाओं में हुए बदलावों और विकास से रूबरू होंगे। विदेश में मलेशिया में घने धुएं के कारण सभी स्कूल बंद किए गए हैं, गतिविधियां खास प्रभावित हैं। इंडोनेशिया की जंगलों में पिछले हफ्तों से लगी भीषण आग के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ये धुआं सिंगापुर और फिलीपींस तक भी जा पहुंचा है जहां वायु प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड पार कर गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रारो दामिचे में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्डर के श्री कौपानेन स्वामी तंजापेन, जो विष्णु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी शाम 5 बजे उनकी पत्नी विनोदा मंगापति के मकान रारो दामिचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 5 PM। आले जाक घोंबोआ में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री सनमत गंगा बिसुन पेराशिनाम बुधन और जो मामा रामेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान आले जाक घोंबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट हाफ पास्ट नून। पिचित काबान कौन दे मास्क पावे में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती ऋषि कुमारी दसोई पेराशिनाम गोपुल और जो ऋषि के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विराज दसोई के मकान पिचित काबान कौन दे मास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौन दे मास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Your news on MBC Play and MBC.MU. Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। 9 तारीख अक्टूबर महीना शुक्रवार का दिन है और बिल्कुल एक घंटे के आज के सफर में आप हमारा साथ दे सकते हैं।

0: रेडियो मॉरिशस पर इसका सीधा प्रसारण आप सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच ये कार्यक्रम पुनः रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा रेडियो मनोरंजन की लहरों पर, और साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर दिन के 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच आप इस कार्यक्रम को पुनः देख पाएंगे। तो आइए शुक्रवार के दिन हम कानून के विषय में बात करते हैं, और आज हमारे साथ जुड़े हैं बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी जो स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते रघुनंदन जी।
1: नमस्ते जी।
0: आज के कौन टॉपिक पर आज बात बताइए आप? हाँ,
1: आज हम नहीं बात करब से एक वो स्पेशल टॉपिक। हाँ। जो ढेर भाई कभी कदे नहीं कर ले से अब, और हम नहीं आनब से तोर संगे नया नया चीज जो में कुमार जो जो कैसे जी वो सही शादी से भूल जाए अब सब, अब नया चीज जो मन के भाई लोग नहीं सुन ले बा। अरे आज हम नहीं बात करब से प्रेतनो। प्रेतनो एगो मो फ्रांसे है, मैं हमने के सब भाई बहन लोग जाने ला ओकर दूसरा नाम हमने वैसा नॉम दे पाई। नॉम दे पाई का एगो आदमी जो लापाई के है। हाली एकर कहानी कहाँ से शुरू हो रही? पहले तो जाने ला एक बार हमने के भाई बहन लोग के उ लोग के जमीन बा, तब जमीन में रहेला तो का करेलन सन, प्लांटे करेलन सन कुछ न कुछ, तो डरेलन सन पंगार चिराई आके ऊ जाके जो जिन प्लांट ले वन सन खा ले, तो का करेलन सन कब्जालन सन घर ये तो सोचेलन सन अरे तो हुआ तो कोई नहीं बा गार्दी करे के अब तो कैसे मजा करब सर, तो एगो नॉम दे पाई अपन लापाई से एगो बोलोम नियर बना के ओकर सापो डाल दी, ओकर हाथ में दूगो चीज डाल दी ताकि कब ऊ नहीं रही चिड़ैया आई तो ऊ बोलोम दे पाइवा कब देखी तो डर जाई जान एगो आदमी। हाँ, एगो आदमी खड़ा हुआ था। हाँ। वे ये करता हुआ तो ओकर नाश नहीं करी ओकर मजा कारो के जोन जोन चीज प्लांट ले बा। नॉम है एगो नॉम दे पाई है। मैं हमने का कर ले हई सर ले ले हई सर हमने के हई मजा कानून बगल से नॉम दे पाई ये के है एगो आदमी है जोन के माँ दाते करेला एगो दूसर आदमी है। बोले एग्जाम्पल दे ला हमारे तौर में से बुझो हम एगो चीज करे खोजत हई एगो जमीन खरे खोजत हई से बुझो मिलियों के वो बा मिसलम हम नहीं चाहत हई कि हमर नाम चली कि उ जमीनवा हम किनत हई, बस का करब तोहरा नो में करब एगो माँ दाते नियर में माँ दाते नहीं माँ दाते नहीं एगो एग्जाम्पल देवत हई एगो थर्ड पर्सन जैसे हम बोल सर हम तोहरा स्वागत कलें कि देख उ जमीनवा जोन बेचाता कुमा जे जा तू किन ल हम अपने नाम में कोतरवा बनाब अपने ही नाम में कुमा जे दब सब कोई जान जाए तो कुमा जे नहीं बा हम के चाम मन बा कुमा जे कोई नहीं जानी उस जमीन वहाँ के किन ले बा मैं तू जाके तोहर नाम में किन लिया तो उस कुमा जे एकरे नाम है एगो प्रेतनो मतलब हम स्वाजी कर लें एगो दूसरा आदमी के वो आदमी यहाँ हमर नमुआ में नहीं कि नहीं ओकरे नमुआ में जाके उस जमीन वहाँ
0: पैसवा उदे पैसवा
1: उ देखिने खातिर जोली बोली अभी देखब सगर कौन से कांस मैं खूब बोला पैसवा हम दे ओ आदमी कैसे बुझो तो तोरा कि जाके किने के मैं कब कोतरवा करब तो तू तो अपन नाम में है है है करब कोतरवा बस जा तू तो न जाके सीए वो सब करब हम तो कुमा जे एक बगल कुएं में है कोई नहीं जानी हमारे दांत चीते कुमा जे है कुमा सीख रही तो देख ल मोरिशस में हमने बोलिए सा नॉम दे पाई ए प्रेतनो बहुत सा आदमी करे पहले अभी कि है जोन बा माले बा कॉन्फियंस नहीं बा दूसन हो नॉम दे पाइवा में भाई प्रेतनोवा के अदमिया में ओकर नाम में तो कोतरवा कर ले दई बा अरे जाके का करी ऊ नमुआ बितारे दे कब से एगो कहानी कैसे लाकू सिपाह में आल बा का हो रहा ऐसे बस ऊ का करेला अदमिया जोन पैसवा देवेला हो जोन अदमिया खड़ा रही ओकर प्रेतनोवा के ओकर संगे चाहे लगो कोतरा बनाई के एगो कोतरा बनाई कि देख हम तोहरा देवत हई एगो कुमा जे पैसा इ तरल से बोल हम देवत हई पैसा हमर नाम में नहीं तोहर नाम में किनिय ऊ है चीजवा या कुमा जे सोसाइटी में हुई सुस्क्रिया करे के आक्षियों या खींच खुच खरीदे के या कोनो चीज करे के अपन नाम में तू करिय काहे ये पोत एगो कोतरा करे के ऊ माँ दाते हुआ जोन करी आर हो अदमिया से न तो काल तो बोली वो कर मिहिया एगो पापिये कर ले एगो कोतरा बनाई ले बा कि ओके नो में करता है एगो आदमी। हाँ तो ये देख ला एगो बड़ी मजे एगो चीज है ए पोत है विजाफिज लाजिश चीज बा एगो अंगाजम हुएला कोसीदेक हुएला एगो प्रेतनो जहाँ एगो आदमी रिस्पॉन्सिबल हुएला अंगाजे हुएला एगो ट्रांजेक्शन करे के ओकरे ही नाम में
0: जमीन जायदाद किने खातिर करेलन सा या दूसर

0: काम में भी प्रेतनों के
1: हाँ, बहुत चीज करे राजा विचारे देख हैं मैं एगो एग्जाम्पल हम ले बताई सर जमीन में पसकी पहले तो तीन कार भाई लोग बोले ये जो किन जाने हम नहीं जानते हमारे परिवार जाने या कुछ जाने तो कोई लोग न जाने तो बोले सर नहीं रे कहाँ पैसा बा सिपाही पैसा कहाँ से अनले बा कि देखो बड़ा बड़ा महल गिनाता बड़ा बड़ा जमीन खरीदता उ में तो ये कोरेक नहीं हुई तो पेशो नाली थे नाम कुमाजिया रखे खोजता कि कोई नहीं जाने उ के कर रहे तो यही काम में अभी अभी तारेल देख से कौन सी होता हमने के देश में कैसे कैसे नो नो सर्वी करते सर बड़का बड़का फूड करे के बड़का बड़का ट्रांजेक्शन करे के तो उफो मजा कैसे अब और के रही रिस्पॉन्सिबल में तो एगो केस लाखों सिपाही में आ रहा फिर एगो केस जहाँ एगो पति शादी कर ले रहे पत्नी से पति पत्नी से रहल में का करे दोनों में काम मजे नहीं बने ली मन से बस का कर लग पटिया जाके एगो दूसर मामसिल के खुशी से एगो मादाम के खुशी हो गल तो एगो कोंकुबिन जैसे हमने बोले ऐसा एगो मित्रेश नियर जैसे है एक बान आदमी बोले ला बस का कर लग ओके बोले जाने ले हम देख हमर बुढ़िया के नहीं जनइए बस हम तो के देवत हैं पैसा जाके बड़का एगो घर जाता जमीन वहाँ बड़ी बोमासे में देखते पहले के कुमार जे नहीं बा एगो जमीन रहल वैनसैक पेस लाते रहल थन सैक मिल के बेचाल मतलब कोई नहीं किने तो बस शायद वो खड़िया में हो या कुछ तो नहीं जान सको किसवालापुर में आल तब तो मदमुआ बोले कुरेक बा तो बोले पैसा कहाँ रही पैसा देवत हुए ना बोले हाँ तो पैसा हम देते अपने से कहाँ से सकबे कि नहीं मैं हमारे बुढ़िया के नहीं जन है तो का कर लक मैडम हुआ वो पैसा थन सैंक मिलवा लेके अब गर्ल कुमाजिया जहाँ बेचाल जाता नुते रही सब कोतरा करके ओकर नाम में आई कर लक ओकर नाम में बनई लक अब हुआ कर नाम में बै देलक एगो पैतनों कैसे सर्वी कर लक हौ मैडम हुआ के तो हियाँ का होल अरे बस एगो पापिए कर ले रहा ना ओकर से एक कौवा में नहीं कर ले रहा कौन पापिए तो हम कहा कर लग मिशेवा बोले हई तू नहीं कर मजे जमीनवा भमर ये पाँच छः बरिश हो गल कोई नहीं जाने अजय अब तू बेचत हुए उस जमीनवा हमर से बस कोतरा तो तोर ना मैं बाना तू तो पोपिए रहे बोले नहीं हम नहीं हम तो नहीं देख मटिया मटिया हमरे खातिर रखब तो बोले तू तो खाली एगो पैतनो रही एगो काम करे के तोर तो पैसा नहीं रहा हम दिली तो एगो केस दलक लाकुर मिशेवा दलक एगो केस लाकुर तो लाकुर में ओके बोले को जता कि देख हम दिले रही पैसा उ मिथिलेश्वा के हब मजे तो जाके किन ले रहल ओकर हियाँ तो कुछ पैसा नहीं रहल अब हियाँ मदमुआ बोले नहीं आके लाकुर में बोला था हम किन ले हई मिशेवा नहीं तो ओ केस लड़ाई होल तो यही में आल प्रेतनो हमने के कोद है सिविल बा डालोज बा फ्रांसे के लालुआ बा मोरिशियन के लालुआ कोद सिविल सब में लिखल बा प्रेतनो के ओकर पुवा का है कौन चीज सकेला करे और का है मिसेल में पहला चीज एगो गलत कर लग मिशेवा बोले तो करता कुमा जो कर कौन मित्रे सो कर में कॉन्फियंस बा एको पापिए नहीं कर लग
0: बस कि हये जाने खोजत हई कि मान ला कोई के तू फितनो करत हव एगो काम करे खातिर तू ओकरा विदा करत हव त चाहिला एगो कानूनी देने से कुमाजा एगो कागज पत्र कुछो बनाई के चाहिला जेकर में तोहर पास एगो एगो प्रेव रही कि तू ओकरा एगो काम करे के दिले हव पैसा
1: खूब बोला हम त इही से बोलल जला एगो चाहेला कबैसन एगो ट्रांजैक्शन करब त एगो कोथरा बनाई के कोथरा बनाई के कुमाजा हव फितनो से आ जो नदमिया पैसा देवत हव के जो मदाते तहिया तो नहीं बा प्रेवा और कानून बिना प्रेव के तो नहीं सकी कोनो ना को दाने करे ना आकिते करे ना कुछ फिर आली तो ई हमने देखिला सा ई एगो फेतनो हो अब हमने देखिला सा मॉरिशस में कौन ओकर का लीगल है ई फेतनो के विषय में आले एगो आदमी कब एगो फैतनो सिर्वी करेला या एगो बनेला उही एगो

0: इतनो रहेला तो हमने के कानून बोलेला लीगल हो लीगल हो आर ए कौशल में चाहेला एगो आको हुई थे बताई के इसे कैसे बोल तू भी चाहेला गो कोंत्रा लीगल हो कोंत्रा बा आर कोंत्रा बनाई के चाहेला दू गो आदमी के एगो कंसेंटमेंट करे के
1: एगो विटनेस चाहे
0: हाँ नहीं विटनेस के नहीं नेसेसर बा मैं चाहा बन भाई मैं तो विटनेस हो तो जस्टिस और वैलिड बा जस्टिस सॉलिड बा बस ही कोंत है कब एगो केस आई लाकुर में इसे ते मोह बुलावे लंस ना ते मोह आके कॉन्फियम करी कि हाँ हमारा आगे से बुझो पैसा दे रहा ये ओकर का ज्यादा सॉलिड कर देवेला मैं ही या नहीं नेसेसर बा से बुझो कंट्रोल कर ले बा तो कौन-कौन हुआ मैं कंसेंटमेंट दे ले बा ना हम तो क्या अपॉइंट करते हैं ये तेल चीज करिए तो वो एक्सेप्ट ले बा दोनों ही यहाँ सीने कर ले बा तो देख बा एगो कंसेंटमेंट दोनों पहुँचिया में कब रहेला तो एगो कौन-कौन बा जब एगो आदमी कुमार जब बोली हाँ हम एगो चीज है हे देख एक्सेप्ट हैं ये चीज हुआ करे के और कुमार जब ओफे करता जब पहुँचिया लोग दोनों डाको हो गल तो हियाँ देख बा उ फैतनुआ में एगो कोंतरा जो सकल जा इचिलीजे करे जहाँ एगो मादा नहीं चाहता ओकर नाम पाखित होई में देवता एगो दूसर आदमी के ओ आदमिया के ओकर नाम में पाखित होई के ओकर काम में ये वैलिड बा तब लेक फ्रॉड नहीं बा एगो चीज फ्रॉड के चीज करी तो देख बा वो कॉन्ट्रा हुए तो कुमार जब बिगड़ नील ए नो आवेनी हो वो कॉन्ट्रा के उकर वालेर नहीं बा तो यहाँ देख ला एगो कॉन्ट्रा वालेर हो दो आदमी में तब लेक एगो कंसेंटमेंट बा और तब लेक फ्रॉड नहीं बा तो यहाँ देख ला एगो पोइतनो खड़े के कुमार जी सब काले गो पोइतनो तू भी खड़ा हो जाइए तो चाहे ला एगो आदमिया के नाम
1: मतलब जानब सा कैसे कैसे हाई काम करे खातिर एगो नाम के तू सेवी करे सकबा एगो व्यक्ति के नाम के तू सेवी करे सकबा
0: हाँ जी तो ई देखे ला तब लेक हमनी के हई कुछ सिविल बा हमनी के अच्छी 1108 बोले ला कुछ सिविल के तब लेक एगो मजे आदमी सकी हई रहे एगो पोइतनो इचिलीजे करे तब ले कुमार जी फ्रॉड नहीं बा ओकर लेटेंशन नहीं बा एक बार तो लेटेंशन कुमार जब फ्रॉड रहेला ना कि देखे हम ऐसे करब तो एगो एगो फ्रॉड करके ओ कुमार जो चीज ले लेब तो हिया नहीं चाहे ला दोनों में फ्रॉड नहीं कंसेंटमेंट हो के लिमन आर हमने के अचिक 1108 हमने के कुछ सिविल वो बोले ला चार गो कंडीशन इम्पोर्टेंट है जब एगो कुमार जब प्रतिनो रही प्रतिनो वी नम दे पाई आदमी और वो जोन के मादवा बा जोन ओके देवता परमिशन खड़ा हुई के कुछ खरीदे के या कुछ करे के पहला बोले ला दोनों में चाहे ला कंसेंटमेंट ये कंसेंटमेंट ओब्लिगेटरी है बस ये चीज में करबे करे कोनो चीज करबे जे कंसेंटमेंट नहीं हुई तो उता कॉन्ट्रा के वैलिड नहीं बा दूसरा चाहे ला एगो कैपेसिटी दे कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों में चाहे ला कि कुमार जे इहो सके कॉन्ट्रैक्ट करे ओ मतलब कि कावेला अरे हम है काली गो मिनेर से हम कुमार जे को कॉन्ट्रा करत है तो मिनेर वा तेगो कॉन्ट्रा जे अन बा 18 ans होई त नहीं सके
1: कुमार जे
0: हां मिनेर त सदियों नहीं सके करे गो बोली के तो सब चीज में जब आवेला गो मिनेर कॉन्ट्रैक्ट करे तो जब फोडे ओके 18 ans रही त सके अब एक आदमी ओके पगला बा अल्जाइमर बा ओकर कपार नहीं अच्छा बा वो भी नहीं सके कुमार जे माफ करिए बोलन जन पगला बा तो उ त पगला रही त कुमार
1: जे मेंटली ओकरा चाहिला कुमार जे कैपेबल होई के
0: कोनो कुछ चाहे लोग के कैपेबल होई के तो वो कब कैपेसिटी बा कर संगे कपाब बा तो उ में देख बा कॉन्ट्रा होला तो यहां देखे था ऐसा कंसेंटमेंट और कैपेसिटी बा आर एगो चाहेला एगो ऑब्जे जोन के करत हंसन उ लंगजमा ले ले हंसन ऑब्जेवा का ई कावा में जन से बुझो मिशवा बोला जो हाउ जमीनवा किन तुरना में तो जमीन एगो लोबजे का कि उनसे ओकर कौन सी कालते ओकर कौन कालते कहीं करता कॉन्ट्रा आर चाहे ला उ कुमार जे एगो कॉन्ट्रा जोन बोलता लिसित रहे के मतलब फ्रॉड नहीं चाहे ला गुजाफे कानूनी बगल से कुरेक रहे के यही देख ला एगो चीज यहाँ पहुंचा है एगो आदमी के कब एगो बने के एगो मजा फैतनो शेर भी करे के अभी देखब स ओकर कौन कौन ओकर है मजा जीवा मारी बा तो हियाँ तो देख ला सर कब हो जाला इस सब कोंथा हो जाला तो एगो प्रॉब्लम नहीं होला फोद होई तो ओ कोंथा वा नहीं मजा ओकर है बने अब एगो चीज है ये जब मिशवा गल है फैतनोवा किनलक तो ओ रिस्पॉन्सिबल है सब चीज के हई मिशवा तो कुमार जी आज के धरा के पाछे बा सर ओके तो कुमार जी कोई उतर नहीं है जानी ई ना निगोशिए करे बा ई ना किनता ई ना सब चीज करता तो ओ ओब्लिगेटो ओ रिस्पॉन्सिबल
1: काहे कि

0: पिक्चर में तो उहे लौकता जैसे जा जैसे बोलबा उही उही काम करता उही ओकरे नाम चला था वन
1: हां त उ और उही त खड़ा होके सब चीज करता त दिखल हिया उही चीज में कब उ एते वे करेला एगो प्रतिनो करके कोनो चीज किने त उ रिस्पोंसिबल हौद मिया जो नहीं बा उ त पाछे बा न उ त कोई के नहीं जाने को देता त दिखल हिया पुवे करे के ओकर एदा चीते फासिल हो पसकु त लौकता मैं जो नदमिया पाछे बगल बा खाली पुतनुआ जाने ला मैं ई त नहीं जाने ना त दिखल हिया कुछ चाहे ला त पुतनुआ उ रिस्पोंसिबल बा हमनी के कानून में
0: त हाई में ऐसन रहेला कि मान ला एगो पुतनो के तू विदा करत हो उ चीज कीने के त कॉन्फिडेंशियलिटी रहेला कि नहीं बोले कि हम किनत हई इस बात तोरा विदा करत हई हई सब कॉन्फिडेंशियल रहेला
1: कॉन्फिडेंशियल रहल बा पसी काहे मदा ते वा स्वाजरी करल बा पुतनुआ के ना तू जानता
0: नहीं मान ला जा जैसे तू बोलत हव जैसे उ जे रिस्पोंसिबल रही काहे के ओकर नाम चलता ओकर नाम में किनत हवन मान ला काल कुछो प्रॉब्लम हो जाए एगो इलीगल कुछो चीज हो जाए तो बोले सकी कि हम तब फितनो हई
1: हां नहीं प्रितनो बा सकी बोले हम प्रितनो करते कि सो ना अभी देख ले वी जोन कब आ रहल त हु त बोलू त खाली प्रितनो रहल मे जोन कोंत्रा बनैले बा उ मे बोला ता कि रिप्रेजेंटे करता हौ आदमिया के आर ओके ड्रॉ नहीं रही रिलेवे करे के ओकर नाम जोन उमा दंतवा के
0: तो हाई सब कोंत्रा में लिखल जाला कि नहीं चाहिला नाम बोले के
1: नहीं सब... जे एगो माले ह तो उते गो वकील के दे ऐसे ने वो काम एक मजे ते एगो वकील फोसे उनको एगो बोली के एगो कंट्रोवर्शन बना के तो हजार गो तो रुपया लेवेला मे ओकर कंसेक्वेंस बड़का बा बजाय में उते एगो अबुकार ही आ वही रही वो जाने ना कौन सी कैसे कौन सी दा कौन सी डाले ताकि मजा कुवे करी दोनों बगल से तो हिया डाल दे ना उमे हई कंट्रोवर्शन जोन बना हुआ था ओके ड्रॉ नहीं बा फिट ने वहां के रिलेवे करे के कौन आदमी के ओकर दंचीते के जेकर करता तो नहीं से क्यों बोले हुआ कोई जाए नुतेर वो यहाँ पपी हुआ बनाए कौन तरह तो नुतोरा पूछी ना हाँ तोर नाम का है तोहरे है ना बोले एक बार नहीं बोले बोले हाँ ये हमरे है हई कमर कते दंचीते ओकर लाग देने सँ शादी कर लो सब ओकर फॉर्मालिटी दे यो के तो हिया देख ल कबू बनावता उ जाने ला कि एक न ता मटिया वो एगो दूसर पैतनो सर्वी करता मेरी मटिया दूसर के है दूसर के नाम में मजे भी नहीं मैं ले गाल मो पपीवा कोथरवा होता नाम जोन बा पैतनोवा के कहीं दिख ल तब ले आकुआ तब ले कोथरवा नहीं तेमिने हो कुमाजे कहीं तो कोथरा नहीं बा जे नोतेर के आगल पपीवा हो लंग रजिस्टर हो गल कोथरा ओकर नाम में हो गल तो ऊ फोपिए रहेला तो ऊ सब चीज जेने जैसे बोली सर उ कुमा जे आके कुमा जे रिस्पॉन्सिबल या अभी दूगो केस आ रखल लाकुर में नया नया अभी कुमा अपन सीते नहीं करब सर न मुँह तो ऊ आ रहा अनुमान इसने कुमा जे पुतनो में आल तो ही हमने सोच ली सर कहीं ना हम कुमा जे को हई करी सर
0: हाँ हमने के जनता के जनाई के चाहिला कि कहाँ पर हई सेवी होला और ओकर कौन लीगल टर्म्स में देख बता लावतास देजावतास कैसे रहेला और जे मान ला जाए वो फोद करत हवा है नाम में तो कौन कॉन्सिक्वेंस रहेला है अभी थोड़ा घड़ी में जानब स कपिल देव रघुनंदन जी से कहे के प्रितनो हे एगो ऐसन है कि लीगल बगल से यानी लाकू बगल से तोरा मिलेला परमिशन पर ओकर बहुत बहुत कॉन्सिक्वेंस रहेला जेकर ध्यान में रखे के चाहेला तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावब जा और है कार्यक्रम के हमनी के सहयोग प्राप्त हुआ था यूसुफ जी के टेक्निक पर साथ ही साथ उरुसा बानू हमनी के संगे हवन हमार प्रोडक्शन असिस्टेंट और शीतल लोबेन हमार प्रोड्यूसर जे हाई कार्यक्रम के तोहर ले पहुंचावत हवन सा तो चला कार्यक्रम में एगो ब्रेक लेब जा गीत के फिर उसे हाजिर होब जा आज की चर्चा कार्यक्रम में

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्रतनू, यानी अगर किसी मालिक ने, यानी एक व्यक्तिगत रूप से वास्तविक मालिक ने अगर किसी को वहाँ पर किसी कार्य के लिए, मतलब उन्होंने लीगली किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, चाहे वो जायदाद हो, ज़मीन हो या फिर गाड़ी हो या किसी चीज़ के लिए, जब उनका नाम यूज़ किया जाता है इसे कहते हैं प्रयत्नो। पर इसके एक बहुत अवैध कारण भी होते हैं कि किस रूप से लीगली या इलीगली इसका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कई सारे केसेस को खुद रघुनंदन जी ने सॉल्व किया है, तो चला आज जानब सर कि ओकर लावांताज देजावांताज कैसे रहे।
1: पहला हमने देख ली सर लीगल एगो मजेगो आदमी सकी लीगल में एगो प्रयत्नो करे, एगो प्रयत्नो बने, काल जाए कुछ ट्रांजेक्शन करे, ये को रेख तब तब फ्रॉड नहीं रही। अच्छा। एक एक्सेप्शन यही है। अब हम देखब सर इलेगालिते एगो प्रयत्नों के वो कोतरा जो प्रयत्नों के है वो जहाँ इलेगाल के मजे एगो ट्रांजेक्शन हुआ था। हमने के कानून बोलेला जो एगो आदमी सेवी करे को जाता एगो प्रयत्नों वो एगो ट्रांजेक्शन करेला तब लेक फ्रॉड नहीं बा, वो कोतरावा को रेख बा। मजे सब सके इचिलीजे करे उ नमुआ प्रयत्नुआ तब लिख कुमा जे जब चीज लेगाल में सेलमा उही प्रयत्नुआ सर्वी करे उ हो जाला इलेगाल, इचिलीजेशन इलेगाल होवेला जब उ एगो का करेला, एगो चीज करेला, मास्के करेला, उके कुमा जे है कुवे करे करेला एगो फोट के, जैसे एगो लेग्जाम्पल हमने दे बताई सर एगो फोट फिस्काल। अच्छा। चिस्काल एबे को कैसे एगो आदमी के बा कुमा जे है एम ए में के कुमा जे एक बान चीज कुमा जे है एगो ट्रांजेक्शन करता, नई डिक्लारे करता, ओकर कुमा जे एग्जैक्ट कितना ओके पे यू सब करे के, कब हर आदमी के तो चाहे एगो फॉर्म भरे के इनकम टैक्स सब के पे करे के, तो ओ नहीं बतावता ओके कुमा जे से बुझो है चाहना पे करे के इतना ओके कुमा जे इनकम मिलेला, मैं ऊ कुमा जे नहीं बतावेला ओकर जो चीज हो फिस्काल जो मतलब एम ए से जोड़ल बा पैसा के ऊ नहीं करेला, तो ये वो इलेगल है। हर आदमी के जोन मेला देख अभी तक लिपो खो गल बा फॉर्म भरे के चाहेला है कि एक मजे इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स के जोनों कर पैसवा मिलल बा वो नहीं भरता, तब नहीं भरता को मजे नहीं बतावता उके कितना मिलेला, नहीं करता। हाँ, बस मैं कमती है बतावेलन सन, तो का करेला हियाँ वो देखेला मास्के करेला एगो ट्रांजेक्शन फोर्ड फिस्काल। अब का करेला सिर्फ ही नहीं जब एगो आदमी ओकर कोतरा एगो प्रयत्नो इलीगल करेला, जब वो ब्लासे म करी पैसा के, जैसे कुमार जब बोले सर ना लजों साल के लजों

0: करी खोजता एक बांध को मजे दुनिया में देखो है कि जोन जोन बा है दूसर देश में का करेलन सन हिया भी पैसा भेजलन सन एगो लामक में एगो नाम में डाले गो पैतनो में कि ई पैसवा एतेल पैसा के मिलल है तो देख लो हिया एगो पैसा जोन हुआ ब्लॉसिस में लॉस हुआ के जोन एगो फोर्ड के कर ले बान के हई बगल हिया पैसवा डाल दे बस वो कैसे बताया तो जोन आदमिया ऊ ट्रांजेक्शन हुआ करता वो पैतनो हुआ तर वही आदमिया जोन बाकर मौदा वो तो लुकल बा पाछे बगल नहीं बताई खो जाता ना कोई दूसरा
1: कोई नहीं जानी
0: वो नहीं जानी तो हिया देख वो का करे कब ऐसा चीज कोटू ने करे लंसन लालुआ के तो ई देख बिया वो कोतरा हुआ वो प्रतनो हुआ जोन एक्शन करता जोन चीजवा करता वो हुएला इलेगल जब इलेगल ऐसा कौवा में हुएला तो दिखेला फोर्ड बा इलेगल बा इलिसिट बा तो वो कोतरा हुआ कुमाजिया हमने देखा था ऐसा नहीं है वालेर बा प्रतनो अभी देखा सो ओके कौन प्रॉब्लम हुई मैं का हुई हिया देख वो जोन कोतरा हुआ कर ले बा इलीगल हुई अब हमने देखेला सर एगो कोतरा एगो आदमी ओके दिलेबा करे के ओकर नाम में प्रतनो में एगो फोर्स कोज के एगो फोर्स कुमा जे चीज खातिर तो हमने के कोड बा सिविल और चिक 1130 कोड सिविल लिखल बा जब एगो ओब्लिगेशन जब एगो चीज हुए ला वो बताओ ला एगो फोर्स कोज खातिर तो वो कोतरा हुआ इलिसिट हुए ला ओकर वाले नहीं बा लीगल में तो वो देख बा ओकर लिफे ओकर कुमा जे नील हुए ला कुमा जे वो कोतरा हुआ कोड नहीं ओकर हाँ ओकर कोतरा हुआ नहीं बा और हमने के बा और चिक 1133 देख बा हुआ एगो कोड इलिसिट कब हुए ला जब लालुआ ओके मना करेला जब एगो आदमी करेला एगो से एगो लोड पब्लिक के या एगो कोतरा के जो उमें गल बा इलिसिट बा के वो कौन लाकुर एक्सेप्ट हुई कि एगो कुमा जे एनफोर्स करिए एगो कोतरा जोन कोतरा बा ई आर हो आदमिया में तो देख बा ई यहाँ प्रतनो हुआ जोन कोतरा कर बा वो कोतरा हुए इलिसिट बा तो एगो कोतरा जोन इलिसिट बा जोन कोतरा है ठीक नहीं बा कानून बगल से कोट बा उ नल एंड वॉइड हुएला ओकर लिफे जीरो हो
1: तो रघुनंदन जी हैजा पर मान लजा कोई प्रतनो एगो सेवी करत हवन तो कानून नहीं पूछेला कौन कौन रीजन से प्रतनो सेवी करत हवा मतलब जब उ कोंथा बनावा था कि हई आदमी के हम प्रतनो करत हई एगो जमीन किने खातिन तो हई में नहीं पूछल जाला कि कौन कौन चीज करे खातिन तू प्रतनो के सेवी करत हवा
0: नहीं प्रतनोवा सके जाने और मदाते हुआ जुनू के उतोइजे करता मैं सिबोजो गल नोतेर हिया तो नोतेर हुआ ओके नहीं ओके दुआ ही नहीं बा वो तो खाए बोली है ये वो जमीन हम देखना है भैया हम के मन में जमीन हुआ करे के तोहरा हम सेवी कर एक मज हई काल ही देखे नोतेरवा बनाई के कोतरवा बनाई के कहाँ से हमके पैसवा मिलल बा कौन चीज कर ले हई हमके ये तो कर दुआ ही नहीं बा समझ ला नहीं वो तो पूवी हिया बा एगो कोतरा हई करे के लीगल कि कौन सी हई हई चीज ऐसे करके वो कोतरावा में डाली और एगो कुमा जे एगो स्टैंडर्ड फॉर्म नियर है हाँ जो भरता कोतरावा में कि होकर पोपीते है ने कितना पैसा
1: हई जोन कोतरा जब बनावे लंसा तो वो एक एगो कार्य खातिर उसे भी करे जाला कि बहुत काम करे खातिर वो पापिया से भी करे सकी
0: नहीं वो कुमा जे कब जाएला वो दीपक कौन है दाते हुआ ओके है मां दवा से ताजी है दिलेबा कौन ची करे की मैं वो नहीं बोली ना
1: हाँ पापी मैं मौसम ने करे जाला
0: हाँ हाँ वो अपन कोतरवा जोन बने ही लेबा मैं जोन कोतरवा जल बा नोतेरवा के आगे वो तो नहीं मौसम ने करी ना अरे हम एक बोली के काल हम के मन भाई को जमीन खजी के हम जानते हैं उस जमीन वहाँ दूसर के हो कोई के नहीं हो अभी को फोर्ड से कर कुमार जी हम बोली हमर हो समझ लेना ये ऐसा के तो हम तो नहीं जाके बोले अब नोतेरवा के या कोनो के आदमी के ये जाने ले ओकर माटी हम पिट डेले हई मटिया सुन ले आदमी बोला ओकर माटी पिट डेले हुए तो जाके कुमार अब जाके नोतेरवा यहाँ बोले तो नहीं ना नोतेरवा के नहीं नोतेरवा के जाने के चाहे ला खाली मटिया लेवे कि नहीं तोहर तोहर तू किन ले ना तोहर है ना तो करे बा तू आले एगो बोली के लिए एगो एग्जांपल देला ये कुछ छोटी चीज बोला एक बार आदमी का करेला अभी प्रिस्क्रिप्शन करेला तो प्रिस्क्रिप्शन करेला तो का करेला बोले ला 30 बरिस से ओकीपे कर लेबा उ जमीन हुआ 30 ans तो ओकीपे कर लेबा उ जमीन हुआ तो ऊ प्रोपियते बनेला ई कानून बोलेला है हम नहीं बोलेला मैं एक बार आदमी का करेला देख ले नहीं बा एगो जमीन बा ऐतिल कोते अरे न हिया बा प्रोपियते न कोई हुआ ऐति वैसे बा न कभी देखा था कोई बनैले बा घर न कोई कुमा जे है कुमा जे ओकीपे करता मटिया तो का करेला छुपके तो आके कुमार जे नहीं पुष्किया कर देला मटिया बोलेला ओ की पे कर ले बा 30 बरी से ओ प्लांट ले बा कब साइट हम पंते रोज जाई थे वो तो कुछ नहीं लोग कहता तो समझ ला ये ओकर कुमार जे में नहीं बोली ना वो तो

0: बोली ओकीपे ही नहीं कर लेबा 30 बरिस, शायद 20 बरिस में ओकीपे कर लेबा। तो यहाँ आके बोली नहीं हम थो कीपे कर ले कॉन्शनलमेंट ओपी। तो यहाँ के कुमार अब कुमार ओकर क्वालिफी हुए ला प्रिस्क्रिप्शन करे के मैं कहीं देखबा मैं नहीं जाके बोली नोतेरुआ के जो उनका कोतरुआ बनाए जाने रे भैया हम 20 बरिस में कर ले तो बोली नहीं नहीं सकबे करे। तो इसे नहीं बोले लनसन कौन चीज ओकर निदेह ओकर खुशी आली है या जाने के पुवियो का नाम है बा। तो यहाँ देख ला आली अब देखिला सर होएला जब एगो कुमाजे गो फैतनो आदमी आ एगो पैपोस करेला ओकर एगो काम करेला एगो चीज करेला ऊ जोन फुस चीज है आली फोट। जैसे हमने बोली सर जब सेर्वी करी एगो नो फौजीले तो देख बा यहाँ ई हमने के कानून मना करेला और यहाँ तीन कार चीज जोन होएला फुस जाफे वाला ई होएला इमोबिलिये में। पहले एक बार आदमी रहा हमने के माँ बाप के बाप तो लोग ऐसने रख सुने कि ऐतेल को देखो जमीन बा ए कोई तो नहीं दिखे ला सा तो की पे करता दो चल हमने के नाम में डाल लिप सा तो जाके यहाँ पर नाम में डाके देख मा तो देख बा तीन कार एक बार ट्रांजेक्शन जो हो फौजी तो वो देख बा ये में आवेला इमोबिलिये में। अब फिनेंशियर में ब्या में हमने के रिसामो हमने के देश में बहुत सा एगो चीज अलबा फाइनेंशियल सर्विस कमीशन देखबा हियाँ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फ्यामला जैसे मैंने बोला सर कहाँ करेला बहुत सा ऑफेंस ओकर है अकुआ में बा कौन कौन चीज करेला जहाँ देखबा ब्या है के एक बगल फाइनेंशियल कमीशन एक्ट एफ सी सी तो जनबा कुमार ओकर हेडक्वार्टर्स है बा है मुकाही में वो कब देखेला जब एगो आदमी जाला हुआ वो मास्के करेला एगो वेहिता प्रोप्रिएटी के ओकर जिबिया में। अरे देखब अभी का करेलन सन जयन सन एगो आदमी वो लादरोग में बा कब लादरोग में बा तो पैसा फसिल पैसा ओके मिलता तो का करेला वो पैसुआ जो ओके बा ओकर हाथुआ में या पुसुआ में तो नहीं जाए कुआ जो अपने खरीदे ना बस कि कुआ जाए खरीदे काल हुआ तो देख एफ सी सी ओकर बा ओकर ऑफिस है बा वो लोग देखे लनसन कि आदमिया कौन कर ले बा समय में एक बड़का बड़का चीज जे किन ले कोई कोई आदमिया तो नमुआ देखे तो बोलिए ये तो एगो बड़का है एगो एगो आदमी जो है कौन सी नाम एगो धोगे है तो ये एगो पैसा इलेगालों के मिलल हो शायद तो ऊ जाके कुमा जे किन ले तो का करी वही बखतुआ ओकर नमुआ कुमा जे नहीं जनाई को जी पैसुआ बाव करी हाँ बस जाके एगो पैतनो के ले जाए पैतनोआ जाए एगो एगो चीज किने से बुझो अभी तो देख ले रहा कुमा जा कैसा में कितना नया नया गाड़ी एफ सी सी के ओकर हेडक्वार्टर्स के ओकर है में कितना लुतू रहल बिल बड़का बड़का बड़का मग कैसे सेजी कर ले वन सन तो वो आदमी अपन नाम में नहीं किन ले बा तीन कार जोन रखल एगो प्रीत नो सर्वी कर ले बा कि जो तू खरीद लिए वो है जमीन में एगो सिर्फ सो हुए ला एगो आदमी जाए ऐसा एगो काम करता से बुझो वहाँ एगो रेवेन्यू नहीं बा मैं बड़का बड़का चीज खरीदता कौन कौन बड़का वालेर की तो यहाँ बातों खरीदे
1: तो है जहाँ पर कानून देने से वो नहीं पूछे लंसा तोरा कहाँ से मिलल इतना पैसा तोहर तो इनकम नहीं बा तो कैसे तोरा मिलता इतना पैसा
0: ओकर दुआ ही नहीं है आली हमें एगो कालेगो है एगो जमीन गप है खोजे तो कौन आदमी से हमके पूछे ए है कहाँ से तुके मिलल है पैसा हाँ एगो संगति यानी यार कोई सकी बोलिए तो तब ठग दे एगो बोली नहीं हो तो बोली पैसा नहीं बोली ना कि एगो पैसा चोरी कर बोली यार लिकुश में मिलल हमके लिकुश में
1: नहीं जाने
0: हाँ एगो बड़का है के लोथरिया तो नहीं सकी बताई बस कि काहे लोथरिया के तो सकी मांगे तो फेब हुआ तो लिकुशवा में तो यहाँ फेब नहीं बा बोले घोड़ा नहीं देखले एन पूछा रहल तो कितना पैसा दिले रही यही पैसा है घोड़ा के पैसा जो जितले रही उमे खरीद लें अब एगो चीज इलीगल के लीगल बन के मजे रीजों में बताओ था मैं हियाँ जो के कुमा जब मिलल बा तब जो पैसा ओके कुमा जब देले बा ओकर संगतिया के ई एगो कुमा जे मास्के करे के एगो फ्रॉड ब्लांसीमा करे के एगो लॉस जोन भाई एगो पैसा और जोन ओके मिलल बा कि देख ई पैसा जोन बा ई एगो पैसा लीगल है मैं हियाँ कब कब एगो लंकेत होला इसे देखल अभी टेलीविजन में बतियाले लगा जे तुत में सब रह गया बड़का बड़का आदमी लोग बोले रनसन एफसीसी के आगे जालन सन नई सकेलन सन बताई कि ई पैसवा जोन से चीजवा खरीद ले हो सन ई पैसा एगो पैसा लीगल है।

0: गाल के लिए फोट के लिए जब एगो पैतनो सेरवी करब तो ऊ चीज हुआ सब फिन्यो जाला
1: फिन्यो जाला हाली।
0: अब देखा का होला जे एगो आदमी एगो पैतनो से एगो कोथा के एक्विजिशन कर लेबा खरीज लेबा एगो कुमा जे है एगो जमीन एगो लोटो या कोनो चीज के तो देखब ओके गवर्नमेंट ओके धोबा ओ है के सेजी करे के एक बार ही नहीं देखा सीजी करके आके एक मजे हाइफ सी सी के ओकर हिया ओकर द्वार के आगे का कर ले वनसन सब लुतो हुआ बा एगो लंकेत हुआ था ओके एक मजे आतान कर थे वनसन कौन आदमिया के एक मजे कैसे करी एक बगल लंकेत हुएला सीजी करेला सन जब सीजी करेला उ का करेला सकी कुमाजे ओके आदमिया के पुष्विव करे सीजी कर ले भाई का ना तब ओके पुष्विव करी ओके चैला बता के इसे देख ओके बोलावे लंसन आई के हुआ एक्सप्लिकेशन द तू कहाँ से तू ये पैसवा अनला वो पैतनवा के गलबा है ये अब बहुत आदमिया तो पाछे बायो कोई ओके नहीं जाना
1: कोई नहीं जाना था
0: हाँ तो वो देख ला वो जाके हुआ ओके एक्सप्लिके करी कि कैसे ओके पैसवा अब तो जनबे करेला जब ओके कुमा जे हाई आदमिया के पकड़ ला पैतनवा के जो किनलक ओकर में तो वो तक मजे लंकित हुआ करेलन सन सब किशों पूछियन सन तो बोलेलन सन किरियोल में वो वमी कर दे वेला सब के कर ले लन कौन था जक्ष मारल कैसे तब का करेलन सन जो हौ आदमिया जो दिले रल हई पैतनवा के वो तो हिजा से हुआ जो तू ऐसे के करजे तब दोनों के बगल लंकित हुए अब हेकरो पैतनवा के कुमा जे रही पैतनवा के वो भी सकी को दाने हुई ये भी को दाने हुए ला कहाँ से पैसा कुमा जे नहीं है कर ले कुमा जे
1: इलिसिट
0: मिलल तो हिया देखब ओकर कोथा हुआ एगो अनिले हो जाला तब चीज हुआ इसी तब देखब का करेलन सन एफ सी सी का करेला ओके कब सीजी कर देला कब केस लाकुर पासे हो जाला तब सीजी कर देला तो वही लुतुआ बेच बेच के पैसा लेके तो उपमाजा गवर्नमेंट के फोन में जाला ये देख ला एक एगो चीज अब पैतनवा अब तो ये हमने तो देख लेनी सर मैं पैतनवा के ओके का हुए ला अब तो हमने पहला चीज देख ली सर कि पैतनवा आल ओकर रही आगे बस हुआ ओके देख लन सन एगो केस पुष्पीव कर लन सन पुष्पीव कर लन सन बाप अब ओके एगो ओ फंस क्रिमिनल करी क्रिमिनल के मतलब जहां ला पुलिस पुष्पीव करेला ओके जब ओके ला पुलिस पुष्पीव करी आर जीस या मजिस्ट्रा देखा था कि ई वा एगो कुमा जे ट्रांजेक्शन फौजी ले रहल तो का करी दोनों के बस वो तो रिवील कर दिल के ओके दे ले रहल तो देख बिया कोई सजा मिले लाकुल बगल से और ओकर सजा प्रिजों है प्रिजों शुरू रही 10 बरिस से 20 बरिस तक ओके मिली हाउ जोन पैतनवा सर्वी कर लेबा हाउ ओके देख लो पैतनो सर्वी
1: यानी दोनों के पारे मिलेला सजा
0: हाँ नहीं हाउ के कुमा जोन पैतनवा क्या रही देपा कौन कौन ट्रांजेक्शन हुआ कर लेबा मैं ओकर वारिये करेला जीज एगो के कुमा जे शुरू करेला देख सके हमने के कानून में 10,000 से 20,000 तक या 50,000 तक अब उस जीज हुआ कब बैठेला मैं सवा तो वो दे सीधे करेला कि ऐसन कवा में एक एक कौन ओकर डिस्क्रिप्शन सेंटेंस ओकर मजिस्ट्रा के है वो कुछ करी हमने के कानून में बहुत सा सेंटेंस है देखल कभी नहीं नेसेसर है कि ओके आदमिया के प्रिजन में डाल सके वो लमान दे लमनो नहीं दे एगो कंडीशनल डिस्चार्ज दे नहीं कंडीशनल डिस्चार्ज नहीं दे दूसरा चीज एगो बॉन्ड कॉन्जुइट मजे है ओके बोली करे के तो वो सब ऐसन कवा में नहीं दे कि बॉन्ड कॉन्जुइट करिए कि वहाँ चोरी करके बॉन्ड कॉन्जुइट करल जाए नहीं या नहीं ऐसन का में ओके सजा देवेला है
1: कबो कबो ऐसन होल बार रघुनंदन जी मान ला जाए एगो व्यक्ति विदेश में हवन और हुआ से कोई के पैतनो कर ले हवन और बोली हैजा पर तू जमीन किन लिए तोहर नाम पे किन लिए हम तोरा पैसा विदा करब तो ऐसन भी होल बा कबो
0: हम नहीं जानी ला बाकी नहीं मैं तोरा बोलियो कर लीगल कौन सी है कई का हुएला ऐसन कवा में देख बजे आदमिया हुआ देर से होई तो हिया पैतनोवा पैतनोवा के चला बताई के कौन आदमिया है ना अरे जैसे बोलब से बुझो बोले कुमा जे एगो अमिताभ ऐसन कर लेबा अमिताभ अनंगले तेर में बा तो ओकर नमुआ दे दिलक सब चीज लंकेट में हो गल बा एके पुष्पीव कर लेवन सन हाँ ओके तो नहीं सकियन सन पुष्पीव करे काहे बस की विद इन ज्यूरिसडिक्शन नहीं बा मतलब देशवा में नहीं बा यहाँ से हुआ से नहीं सकी ना पुष्पीव करे ओके एगो बोली के तो ओ हुआ रे मैं कोनो वक्त ओ हुआ से बोझो चलाल हिया तो देख बा कुमा जे है ओके पुष्पीव करी बस वो केस पेंडिंग बा

0: नाम बा हाँ। जिसे हमने बोले सा वांटेड वांटेड बा ना वो आदमी या तो देख बा हिया ओके पुश वेव करी अंसन
1: तब मान ला जाए प्रेत नो जोन हा वो लीगल नहीं हा करे करे सकी अंसन की नहीं करे सकी अंसन
0: मान ला करे सकी अंसन ही ने बोली सा पहला शुरू प्रेत नो लीगल हा एगो कंसेलमा ओकर पर्पस ओकर बी जोन चीज हुआ के
1: लीगल रहे के
0: चाहेला लीगल।

0: कैसे कैसे को फोड़ हा। हाँ। बस वो ब्लांसिय करता हो पैसा जो इलेगालो के मिल रहल ओके हाँ। करे के बता के मजे ये गोला सा पोप हा। तो यहाँ ऐसा काम में कुछ खरीदले हो इलेगल हो जाला जब एगो को के कानून देखेला कि कुमा जे हाँ एगो था साक्षों इलेगल है उपहित नुआ के तो जो चीज चीज खरीदले बा वो देख बा कुमा जे सीजी हो जाला।
1: तो जैसे जैसे पैतनो कहाँ पर सेवी होला जैसे एगो जमीन किनत हुआ एगो गाड़ी किनत हुआ और कौन जगह पर पैतनो के सेवी होला।
0: एगो पैतनो सब बहुत है कुमा जे है चीज में सेवी करे में जो हमने देख ली सा एगो कुमा जे जहाँ एगो मजे इलेगल में जैसे बोली ना पहले के जमाना रहल कब एगो देख माँ बाप कैसे है पहला केसुआ देख ली सा हमने के जहाँ एगो मिसेवा खुशी रह उकर है कि एगो मामजिल के मजे उकर कुंकी बिन जिसे हमने बोलिया सा उकर बुढ़िया के नहीं जनावे कि देखे ये पैसवा जो उनको मजे जमीनवा के नहीं सकेला कभी खरीदित हो उकर नाम में पैसवा तो ओकर बुढ़िया के तो नहीं मिली ना जमीनवा तो के नहीं मिली ओकर नाम एगो एगो चीज ऐसने कहा तो बोली तू हे देख ऐसन कामे जमीनवा हमने से कब जाके काल बोले हम तो के कादू देवत हई बुढ़िया नहीं जाने अरे कोई जीवो सो जाई तो हूँ तो नहीं छाता ओकर बुढ़िया से एक से पारी हुई के तो बोले देख जो हम तो के कुमार जाए ई जमीनवा में ई अवश्य नहीं हुएला ई यहाँ नोमे करेला पैतनों के ताकि ऊ जमीनवा ई जाके खरीजी मदमुआ ओकर नाम में आविक लेता हूँ कि ऊ जमीन हुआ एक दिन ना एक दिन कैसे वो किसवा दिखली सा ओके गे तू ने करी मिशीवा के ओकर से फिन से बेच दे तो दिखला हिया जगो था साक्षियों जो कर रहा था वंशन मजा कुरे के नहीं बा बुढ़िया के नहीं मिला आई के खातिन ये वो इलेगल करे की चीज तो मतलब ओके आई के
1: तब पैतनों के मतलब द्वार हिला मतलब मान ला एगो एगो व्यक्ति कोई के पैतनों कर ले हुआ नहीं जमीन कीने खातिन उस जिस कीने खातिन ओकरा कर ले हुआ वो बेचे सकी पैतनों बेचे सकी
0: पैतनों तब लिख ओकर नाम में हो जाला तो को के हा पोप येतेर हुआ
1: उही
0: जब उज पोप येतेर हो गल बा पैतनवा में मिसलमाई को खोतरा पैसा शुरू बोली से ना एगो अंडरस्टैंडिंग होएला हो आदमिया में मादवा में आर ई पैतनवा में कि देख वो कब सब चीजवा हो जाए तो नाम में डाल देले कोतवा तू ही किनत हुए मैं प्लीज एक दिन हम के तू ने करिए है ऊ जमीनवा खाली सर्वे कर ओकर नाम में पैतनो तू सर्वे करत हो हमर नाम तोर में कैसे हो बोली सा है नोम दे पाई कैसे
1: मान ला ऊ को बेची या कुछ भी करी इलीगल करी बाद में हाँ, मौदा नहीं जाना था तो ऊ सकी ओकरा पूछवीव करे
0: हाँ ओके पूछवीव करे कैसे हो केसवा में हाँ। बोली से ना मडमुआ जब ओके जमीनवा हो गल ओकर नाम में मिशवा पूछवीव कर लको के सके पूछवीव करी मिसिलमा अब
1: तोरा चाही लाएगो पापी है मतलब जे बताई लीगल तरीके से कि तोरा तोहर बा जैसे तू ओकरा पैतनो कर ले हवा
0: और नई एक्सप्लिके करी कि नई बोले कर एकदम छीते ओके कुमा जे रिवील करे के आ एगो बोली के ऐसा एगो केस हो गल जकमा ओ आदमीवा अपन नाम में होई आदमीवा बोली नहीं हम कि नहीं हम अपन पैसा से सिपा ले ले हैला बैंक सिपा पैसा से बगर परिवार ई ओकर में हिया कौन कलते ट्रांजैक्शन कर ले बा हो आदमीया एगो ट्रांजैक्शन इलीगल हां सकी कभी देख ब आके हो जो दे लेबा पैसुआ किने के ऊ बिला जाए बस की काहे एकर नाम में बा ई बोली हमर हम किन ले बे एक बार केस में ही बोले लनसन जब करब एगो चीज एगो काम कुछ खरीद ले होई बा प्लीज रेसी रख जे रेसी सके हो बुगवा पैतनवा बताई कि ओकर नाम में बा सबे चीज मेम के ई पैसुआ दे लेबा नमुआ के कर नाम में बा जो नदमिया के रेसी है बा जो उनके नाम के रेसी
1: बा एगो फेव रही एगो एविडेंस रही
0: हाँ तो हिया देख ला ऊ जन सोच तो हिया एगो चीज ही बोल लिया था ऐसे हमने के पोगामा के आई मीडियम से कभी एक आदमी के नहीं दिया पैतनो करे के पास की ऊ नाम सब ऊ पोपिए तेर देख ला कानून तो जानी वो पोप गए तेरह हई जो आदमियों के फिनांसे कर ले बा दे ले बा पैसवा वो जमीनवा के नहीं तो कौन था हुआ ओकर नाम हम एगो वकील रहती तो लड़ा के करती ऐसे एगो किस में तो हम तो बोली नहीं पैतनवा की हई में सब बा है मिसेज इज ओकर नाम में सब बा ई बोला था सच बोला था मैं हियाँ हई का कर पे बा ओकर नाम में बा कोतरा में बा जे हई में ई इलीगल कर लग मैं ऊ नहीं हाँ मैं हियाँ सकी पपियवा ओके कोत करे मैं जे पपियवा नहीं रहत तो कौन कोई रहते कि मजे को ट्रांजेक्शन ऐसा है तो देख ला तो एगो चीज इम्पोर्टेंट है ऐसा का हमने स्पीकर करेला सर एगो आदमी के बोले कि देख भैया जैसे हमने के सब भाई बहन लोग हमने के स्वयं करेला तो बोले तो प्रोग्राम जोली जोली बा जोली जोली कौनसे ही देवे ला आर क्यों कुमार जब बहुत चीज सीखी ला
1: समाज में कबो कबो ऐसा हो जाला ढेर कोई नहीं समझेलन सा कि ऐसा का भी होल बा कि कोई तरह प्रयत्न कर ले हवन तो कर कौन लीगल

0: ओजोन लेवल जाला कैसे कैसे मजा लीगली और इलीगली कैसे ओकर सेवी करे करत हवन ढेर कोई नहीं समझेलन सा कि कबो कबो तू नहीं जानत हवा सलम जिन तोहर से हई काम करावत हवन हो सके उ तोहर से इलीगल काम करावत हवा और तू नहीं जानत हवा ऐसा भी होल बा
1: होल बा एक बार केस बा और एगो चीज है हम तो बोलती कोई के कॉन्फियंस नहीं कर कोई रही पैतनो रही अरे एगो चीज है वक्त थोड़ा बा एगो हाँ। बोली जा एगो आदमी एगो मौदा करे हम देखते हैं इसी बुजुर्ग अनंगले तेर में हई अब तोहरा हम जानी ला एगो चीज यहाँ घर जमीन सब बेचाता
0: हाँ।
1: तो हम का कर ली तोहरा नोमे कर ली हम एगो मौदा ते देख मौदा ते हुआ ओके कब नोमे होल बा कोई तो नहीं जाना था कि हम नोमे कर ली ना अरे ई है जे पपिए हुआ हुआ रही नो तेर यहाँ गल हुई तो पापिए बोले ला तोहर नामे डाले के कार के कर नाम में तीन कार यहाँ बोले ला हमरे नामे डाल मोहदाते हुए के नमुआ में है डाल देवे ला
0: हाँ, हाँ।
1: एगो बोली के वो अदमिया मर गल को भी तेरवा के है मोहदाते ना तब पसी मोहदाते हुआ यहाँ गलवा कर खरीजे हाँ जे ओके दिले हो एगो पापिए एगो आप वो के देख लो हुआ सोलिसिटर है अनंगले तेर में हुआ दिले हो कि कमकुआ ई अदमिया के मोहदाते करेला तो हिया जाके जाने कहा करेलन सन मोहदाते हुआ किन लेवेलन सन अपने नाम में हुआ मिलल बा नहीं जाके बोली वो अदमिया के हमर के ऐतिल माम के नोमे कर ले बाई वो माँ दाते हाँ। ओकर नमुआ में हम खरी जाते हैं जाके ऐसा करी कि वही वही खरी जाता तो यहाँ तक सब कोई लीगल माँ दिख बा तो लौकी तो वही तो पोपी तेर हुआ है
0: जरूर
1: तो ई कब मजे का ऊ पोपी तेर हो गल तो कुछ करी एक बार आदमी के कब एगो मादा दे बा एगो धुआ दे बा बाप तोरा चाहे बहुत कॉन्फियंस रहे के उदमिया में कहा कि ओ काल नहीं कि मैं तुहरा चोरी कर दी मैं आज के जमाना में जहाँ जीता ही सर जहाँ देख दुनिया कैसे हुआ था सब चीज
0: कब, कब एगो एगो व्यक्ति के नियत बदल जाला नहीं जन्म और हाँ? कब तोरा प्रॉब्लम में एक डाल दे नहीं नहीं जन्म आज हाँ आज के कार्यक्रम के समाप्त करे के समय हो गल बात वाइंड अप करब सर हमनी के हमारे श्रोता लोगन के कौन एडवाइस तू देवत हवा फेतनो करे के नहीं करे के और जे करे के तो कौन चीज ध्यान
1: हम तो बोलती पहला चीज जैसे है हमनी के कानून बनेला लिखल कानून है सब एगो आदमी के एगो फेतनो नोमे करे मैं जो ट्रांजेक्शन वहां तू करब ओके खड़ा होके कराई के चाहेला लीगल ताकि लीगल रही तो काल को तो के कोई नहीं सके छुए न उबी सके छुए न सेजी हो न कुछ हो देख तब तक सगब अपने ही से अपन काम कर नई नो में कर एगो आदमी के पैतनो में होलिए पैतनो में एगो चीज करब कुमा जब माकिए करे के एगो एक साफे लीगल इलीगल बनाई के बाप दू हला सोचिए बस कि जैसे कानून बा जैसे कानून बा
0: हाई में फंस जाइब
1: ई में फंस जाइब सब चीज जुन रही सब
0: बिला जाइब तो बिल्कुल है सब चीज बहुत समझे के बहुत जाने के और निमन से एगो एडवाइस लेवे के बहुत जरूरी हो डाला तो आज के कार्यक्रम बिल्कुल हैजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा हमने के संगे हमारे टीम में रहल यूसुफ साथ रहल उरुसा और शीतल लोबिन हमने के प्रोड्यूसर है कार्यक्रम के तोहर ले पहुँचाई में उनकर सहयोग हमनी के प्राप्त होल और बिल्कुल हई कार्यक्रम के फेरों से तू सुने सकब दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर और 4:30 से 5:30 बजे के बीच एक प्रसारण रही MBC के तीसरा चैनल पर तकर संगे आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करब जा बैरिस्टर कपिल देव जी के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा और जितना श्रोता जितना दर्शक हमनी के सुनलन देखलन उन सब कोई के धन्यवाद शुभ दिन एगो फेरों से नवा कार्यक्रम के साथ उपस्थित रहब जा तबले हमनी के अनुमति दीजिए नमस्ते शुभ दिन सभी को।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: घड़ी मिला लीजिए समय शाम के ठीक 4 बजे आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

0: 84,000 से ज्यादा करदाताओं ने टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म सुपुर्द कर दिया था। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी याद दिलाती है कि मोहलत के ढल जाने पर जो लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे उन्हें पेनल्टी लगेगी। करदाताओं की मदद के लिए इस सप्ताहांत खास तौर पर पोर्टवी का दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और 15 अक्टूबर को रात 8 बजे तक खुला रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स नहीं भरा है उनके पास ऐसा करने के लिए देर से देर 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक की मोहलत होगी। देश के दक्षिण पश्चिमी रिवियनवा में एक निर्माण स्थल पर पेड़ काटे जा रहे हैं। बानियन स्क्वेयर बिजनेस हब परियोजना के प्रमोटर को कार्य रोकने का आदेश दिया गया है। रिवियनवा जिला परिषद ने उनके खिलाफ स्टॉप ऑर्डर जारी किया क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन परमिट जून महीने में ही एक्सपायर हो चुका है। वहां लगभग 100 साल के पुराने बरगद के पेड़ को आंशिक रूप से बचाया जा सका। परियोजना के प्रमोटर ने पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान से कहा कि पेड़ों की कटाई रोक दी गई है। कल सुबह पेड़ों को काटने से रोकने के प्रयास के दौरान गिरफ्तार पर्यावरण प्रेमी पर्सी यिपटोंग को रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने पेड़ों की सुरक्षा के लिए ठोस नियमों की आवश्यकता है। आज विश्व डाक दिवस है। इस अवसर पर मॉरिशस पोस्ट द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 20 नवंबर तक आप पोर्टवी के पोस्टल म्यूजियम में इसका दौरा कर पाएंगे जहां आप दशकों से देश की डाक सेवाओं में हुए बदलावों और विकास से रूबरू होंगे। विदेशी समाचारों में मलेशिया में घने धुएं के कारण सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सभी गतिविधियां भी ठप पड़ गई हैं। इंडोनेशिया की जंगलों में पिछले हफ्ते से लगी भीषण आग के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ये धुआं सिंगापुर और फिलीपींस तक भी जा पहुंचा जहां वायु प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड पार कर गया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। रारो लामिचे में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री कपानेन स्वामी तंजापेन जो विष्णु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर शाम 5 बजे उनकी पत्नी विनोदा मंगापति के मकान रारो लामिचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: RM3 Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली की चिट्ठी मिली इस वक्त 4:11 हो चुके हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आपका साथ देने के लिए शाम के 5 तक। जहां कहीं से भी जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और बस आशा यही करते हैं कि आज के इस सफर में आप भी हमारा साथ देंगे। तो चलिए आज के इस सफर के साथ जुड़ते हैं प्यारे गीतों के साथ, आपकी लिखी गई बातों को आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करेंगे। पहले तो आप सभी का हम तहे दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे जो लोग अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करते हैं। सच में कुछ बातें दिल छू जाने वाली बातें होती है, दिल दहला देने वाली बातें होती है, कुछ बातें सच में दिल में एक दर्द सा पैदा करती है सोचने पर। हमें कई बार उस दिशा में सोचने के लिए भी हमें मन करता है। जिन गलियों से, जिन जज्बातों से आप गुजरे हैं, कितना मुश्किल हुआ होगा वो सफर। और चलिए आज की ये जो एक छोटी सी बात आपने हमारे साथ शेयर की है, थैंक यू दोस्त, आपने बहुत ही हिम्मत करके ये बात शेयर की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है जिसके बारे में हम कई बार बात तक नहीं करना पसंद करते, किसी के साथ वो बातें शेयर तक करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे उस मोमेंट को फिर से ट्रिगर करता है, हमारे जज्बात को हिला के रख देता है। कई बार कुछ ऐसी बातें जिसे हम हमेशा के लिए अपनी यादों के इस एल्बम से मिटा देना चाहते हैं, पर कहते हैं ना, कई बार कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो हम भुलाए नहीं सकते। चलिए आज की ये बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और ये एक दर्दनाक एक्सीडेंट के बारे में जो आपने हमारे साथ शेयर की है। आप लिखते हैं कि ये एक सच्ची कहानी है जो मुझ पर बीती है एक्सीडेंट की, और इस बात को 1.5 हो चुका है। रात का समय था और मैं अपने दोस्त के साथ काम पर से लौट रहा था। सर्दियों का समय था और ऐसे में मेरे दोस्त के साथ जब मैं बाइक लेकर घर की ओर वापस आ रहा था, तब सड़क बिल्कुल सुनसान थी क्योंकि रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। हमारी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके हम घर की ओर लौट रहे थे। घरा कोहरा छाया हुआ था, ठंड काफ़ी थी और ऐसे समय में हम बस धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर अचानक से कुछ थकावट ज़्यादा थी, नींद आ रही थी, घर जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसीलिए अचानक से मैंने रफ्तार बढ़ाई और मैं चाहता था कि जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं। कोहरा होने के कारण कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा था, ठंड भी काफ़ी थी और ऐसे में जब मैं अपनी बाइक को चलाकर आ रहा था, थकावट के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तब सामने से एक गाड़ी आई और हमारे साथ एक जोरदार उसने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मैं हवा में उछलकर दूर नाले

पहले में जा गिरा और मेरा दोस्त सड़क के दूसरी ओर जा गिरा। कुछ पलों के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मेरे सिर से खून बह रहा था, पैर बुरी तरह से मुड़ चुका था, बहुत जोर की चोट आई थी, मोच लग गई थी घुटने में। मेरा दोस्त दर्द से बेहाल होकर चिल्ला रहा था। वो पल मेरे जिंदगी का सबसे डरावना पल था। सुनसान सड़क, घना अंधेरा, मदद के लिए कोई भी आसपास नहीं। हमें लगा आज की रात हमारी आखिरी रात होगी। करीब आधे घंटे तक हम वहां से गुजर रहे थे, तब वहां अच्छा आप लिखते हैं कि करीब आधे घंटे तक आप वहीं पर थे जब तक कि आपको किसी की कोई नजर नहीं आ रहा था। तब कहीं एक गाड़ी रुकी और तुरंत उसने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने हमारी जान बचाई, लेकिन उस हादसे के निशान और खौफ आज भी हमारे जहन में ताजा है। उस दिन के बाद एक बात तो मैं सीख चुका हूं कि आज अगर हम सड़क के नियमों का, स्पीड लिमिट का ध्यान रखकर गाड़ी चलाएं, ये जो सुरक्षा के जो नियम बनाए गए हैं ये हमारे भले के लिए हैं। और यदि कभी रास्ते में ऐसी कोई हादसा दिखाई भी दे तो प्लीज घायलों की मदद करें, क्योंकि उस समय एक ऐसा समय होता है जहां पर हमने मौत को हमारे आंखों के सामने देखा। और अगर आज के इस प्रोग्राम में इस लेटर या इस मैसेज को सुनकर सच में किसी का अच्छा हो सकता है, कोई सच में इस लेसन को अपने जीवन में उतार सकता है, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा आप तक इस कहानी को पहुंचाने का माध्यम सार्थक रहा। वैसे आपने ये जो कहानी हमें बताई है ये आपने हमें मैसेंजर के द्वारा भेजी है, थैंक यू सो मच। आपने लिखा है कि जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ था आप 26 साल के थे, और सच में आजकल रास्तों पर जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, दिल दहल उठता है। और बिल्कुल आपकी जो कहानी आपने हिम्मत करके हमारे साथ शेयर करी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इट रियली नीड्स अ लॉट ऑफ करेज एंड डेफिनेटली अभी 4 बज चुके हैं, कई सारे लोग इस वक्त घर पर जाने की बहुत ही जल्द में होंगे। जल्दबाजी में कई बार एक्सेलरेटर पर बस हम पैर दबा देते हैं एंड कुछ कई बार हम कहते हैं ना कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं बस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हो जाते हैं, और कई बार हमारे मुंह से यही निकलता है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया। इसीलिए जस्ट बी सो वेरी केयरफुल रास्तों पर, क्योंकि जहां पर भी आपको रास्ता खुला मिले प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है एंड म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन गाने यहाँ पर लेकर आए हैं टू मेक योर वे सो मेलोडियस। सो एंजॉय द म्यूजिक, अपने तनाव को दूर करें एंड डेफिनेटली घर पर आप सुरक्षित पहुँचें।

0: जी हाँ, यहाँ मॉरिशस भर से हमारे साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं. एंड डेफिनेटली यहाँ पर हमारे साथ एक श्रोता बात करना चाहेंगे. आइए उनको हम ऑन एयर लेते हैं. हेलो.
1: हेलो,
0: नमस्ते. नमस्ते सोहन जी, कैसे हैं?
1: प्रणाम जी, नमस्ते. मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए. ठीक हो?
0: बिल्कुल बढ़िया. बताए, सुनाइए, क्या कहना चाहते हैं?
1: अच्छा, तो जैसे कि हर फ्राइडे की तरह हम आपके सुनते हैं, एंजॉय करते हैं आपके प्रोग्राम
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगते हैं
0: जी.
1: ये इतने अच्छे से ये प्रोग्राम आप संभालते हैं, तो सुनने में अगर कोई नहीं सुनेगा तो उसके लिए बाद
0: नहीं, चलिए. हाँ, सभी के सभी के अपनी अपनी चॉइस होती है, पर कोशिश हमारी जारी रहती है कि हम सभी के दिलों को खुश करें. जी हाँ,
1: बिल्कुल सही कहा आपने
0: जी.
1: तो वैसे तो आज मुझे थोड़ा आत्मा के बारे में जानकारी देना है.
0: ओके, लेकिन कम शब्दों में हाँ, क्योंकि हमारे पास काफी चिट्ठियां हैं अभी.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी जी.
1: देखिए, ये जो हमारा आत्मा है
0: जी,
1: तो ये सब मनुष्य के साथ आत्मा है
0: जी.
1: तो आत्मा हम लोगों के सारे जगह में ले जाते हैं. तो लेकिन मनुष्य के भूलना नहीं चाहिए कि ये जो आत्मा हमारा साथ है, तो जितने बुरा और अच्छे करोगे तो ये रिकॉर्डिंग होता है. ठीक है, तो जितने हो सके तो मनुष्य से अच्छे से बात करो और अच्छे से दुनिया अपने बिताओ और अच्छे काम करो, अच्छे सो

0: करो। और जैसे कि महात्मा गांधी को उसका बर्थडे है 2 अक्टूबर में, तो ये बोल कर गए थे कि देखो अच्छे, देखो अच्छे, सुनो और अच्छे बोलो, ठीक है। तो हमारा जितने बैलेंस है अक्टूबर महीने का, तो ये सब इस सब के लिए है कि भूलना मत, ये जो बैलेंस है तो बड़े बड़े लोग के जन्मदिन हुए हैं, जैसे गौतम जीवाल है, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, जैसे कि राखी है, ना राखी है, रेखा है, जैसे कि महात्मा गांधी है, जैसे कि रचना जी है, तो ये सब लोग बालवत है,
1: जैसे सोहन जी हैं, जैसे सोहन जी की पत्नी है, जैसे सोहन जी की बहू है, ये सभी भी बालौंस ही है। और बिल्कुल आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बालौंस है, तो उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां। थैंक यू सो मच इतने प्यार से अपने शब्दों को रखने के लिए। थैंक यू सोहन जी।
0: तो बहुत धन्यवाद। हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं आपसे बात करने के लिए।
1: बिल्कुल
0: हम बोलेंगे बहुत कुआ सब लोगों के परम परम महाशांति।
1: बस बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन आप सभी को। हाँ जी, हाँ जी, इतना प्यार से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, ये बिल्कुल हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हमारे साथ एक और ऐसी श्रोता जुड़ी हैं जिन्होंने अपने दिल की बात कही, और बिल्कुल मिलता जुलता हुआ एक ऐसा किस्सा उन्होंने हमें सुनाया जिन्हें सच में सुनकर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन की जो मुसीबतें हैं कभी ख़त्म ही नहीं होती। कितना बड़ा संघर्ष, कितना बड़ा, कई बार हम कहते हैं ना कि जब अगर हमारे जीवन में खुशियां होती है तो हम दूसरों को हमेशा जज करते रहते हैं, पर जब हमारी जिंदगी का सामना उन दुखों से पड़ता है तब जाकर लगता है कि जिंदगी में सच में पैसे अगर हों पर प्यार ना हो, शांति ना हो, तो ये जिंदगी कितनी व्यर्थ लगती है। यहाँ पर एक बहन ने अपनी प्यारी बहन और जीजा की कहानी बताई है जिन्होंने अपने दो बेटों को पढ़ा कर लिखा कर बड़ा करके उनके जिंदगी को संवारने के लिए उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, और उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना इसके लिए सच में कहीं ना कहीं हमारे मॉरिशस में ही कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए कितना बड़ा लोन लेते हैं, कितनी बड़ी सैक्रिफाइस करते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने अपने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए यूके भेजा और 26 वर्ष की आयु में वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका बेटा वहाँ गुजर गया। लोन खत्म नहीं हुआ पर बेटा नहीं रहा, साथ ही साथ लोन भरते भरते जिंदगी कितनी ज़्यादा भारी हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे बेटे को भी पढ़ लिख कर अब उनकी शादी करवाने के लिए एक बार फिर उन्होंने लोन ली, पर देखिए तकदीर को क्या मंजूर था। तकदीर को यहां पर भी उनकी खुशी रास नहीं आई, शादी के लिए लिया हुआ लोन और बस महज 3 महीनों में उनका तलाक हो गया। कभी कभी ऊपर वाला पैसे दे देता है पर मन की शांति, मन की खुशी छीन लेता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जब हमारे जीवन में ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, ये जो छोटी छोटी छोटे छोटे पल हैं अपनों के साथ, इन पलों को बिल्कुल आप ग्रेटफुल रहें, क्योंकि हमारे जिंदगी के साथ साथ दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में आज भी दुखों का पहाड़ है और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं।

0: RM3 Radio.
1: चार बजकर 35 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल इस वक्त आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रत्ना के साथ। और बिल्कुल यहाँ पर चलिए हमारी एक बहुत ही प्यारी सी श्रोता जो हमेशा हर प्रोग्राम में भाग लेती हैं, भाग लेना पसंद करती हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो।
2: हाँ मरिग्ने यानी नमस्ते।
1: नमस्ते शमा जी, कैसे हैं?
2: अच्छी हूँ, कभी अच्छी रहती हूँ कभी नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कभी कई बार मौसम का अभाव। जी जी जी, बताइए बताइए।
2: और शरीर तो कमजोर पड़ते जा रहे हैं।
1: जी जी जी, हाँ जी हाँ जी।
2: तो मैं ये कहूँगी कि सभी के दिलों पर राज करने वाली, सभी के मन को जीतने वाली, सभी के मन में सभी के होठों पर हंसी लाने वाली, मैं आपसे पूछती हूँ क्या बचपन की यादों को हम भूल आसानी से भूल सकते हैं?
1: नहीं, मैं समझती हूँ नहीं, बिल्कुल
2: कभी नहीं। यही यादें तो हमें जिंदा रखती है ना।
1: सही सही कहा।
2: इन्हीं यादों को हमें जीने के लिए प्रेरित करती है ना। यादों के सहारे हम उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उड़ान भरते हैं।
1: सही बात, सही बात। हाँ,
2: तो हवा की रुख को कोई बदल नहीं सकता है, नहीं पंछी की उड़ान को कोई मोड़ सकता है या रोक सकता है, पर हमारी सोच की उड़ान को हम बदल सकते हैं। धैर्य से काम लेने से किसी गड़बड़ी नहीं होगी, और गड़बड़ी में हड़बड़ी होती है ना।
1: सही बात,
2: हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है ना। तो आपके विचारों के लिए बहुत धन्यवाद, हमें संभालने के लिए और संभलने के लिए प्रेरित करना, हमें अच्छी सीख देने के लिए, आप तो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। मेरा यही कहना है जी।
1: आपने बहुत बड़ी बात कह दी श्यामा जी, आप हमारे हमसे काफ़ी बड़ी हैं, और हम सच में हम अभी तो चलना सीख रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि हम अभी अभी चलना सीख रहे हैं, और आप लोगों के अनुभव से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। और कई बार देखा जाए तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जीवन

0: जीवन के इस मार्ग पर चलकर बहुत सारे ऐसे अनुभव ग्रहण किए हैं जिनको सुनकर समझकर देखकर जानकर अगर हम अपने जीवन में इसका थोड़ा सा भी हिस्सा उतार पाएँ तो मैं समझती हूँ हर एक का जीवन सुधर जाए। और वैसे आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी बातें जब हमें लोग पत्र भेजते हैं या मैसेज भेजते हैं या फ़ोन के माध्यम से अपनी कहानी सुनाते हैं, सच में कई बार हमारे दिल पर पत्थर रख कर हमें ये कहानी आप तक पहुंचानी है। और मैं समझ सकती हूं कि जो लोग इससे गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं उनके दिल पर क्या बीता होगा। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर चलिए
1: यहाँ तक आने के लिए
0: जी
1: सचमुच दिल पर कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है।
0: सच में आसान नहीं होता,
1: यूं ही कैसे समय नहीं कटता है, कटते नहीं कटता है समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत कुछ सहना पड़ता है, कठिनाइयों से गुजर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
0: जी जी बिल्कुल,
1: तूफानों का सामना करना पड़ता है, उठना पड़ता है, गिरना पड़ता है, संभलना पड़ता है, संभालने को अपने बच्चों को संभालना पड़ता है, हाथ पकड़ कर उसे सिखाना पड़ता है,
0: बिल्कुल
1: बहुत कुछ करना पड़ता है,
0: बहुत कुछ करना पड़ता है। और कई बार
1: एक माँ के लिए अगर उसका बच्चा खो जाता है तो बहुत मुश्किल है,
0: बहुत ज्यादा मुश्किल है।
1: हम पर गुजरी है,
0: हाँ।
1: ये 13 वर्ष का मेरा एक छोटा भाई था, बहुत दुलारा था, वो भी ऐसे ही गुजर गया था एक्सीडेंट में। क्या करेंगे, ये जिंदगी है
0: जी,
1: कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ हमारे वश में नहीं,
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, सभी से लड़ा सकते हैं लेकिन भगवान से
0: नहीं लड़ा जा सकता, समय से नहीं लड़ा जा सकता। कहते हैं ना कि हमारे इतने अजीज हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, जब हमारे आंखों के सामने जाते हैं उनके पीछे हम जा नहीं सकते, उनके साथ नहीं जा सकते, यही बस हमारी एक सबसे बड़ी दुविधा है। और ईश्वर ने हम इंसानों को बनाया ही ऐसा है। पर चलिए, जिनके भी घर में, जिनके भी जीवन में एक ऐसा कोई समय आ जाता है तो हम बस प्रार्थना यही कर सकते हैं कि उनको बहुत साहस दे, हिम्मत दे, ताकि आने वाली जो जिंदगी है उनकी बस शांति से गुजरे, और जो हमें छोड़कर चले गए हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और बिल्कुल, हम इस वक्त पितृपक्ष में चल रहे हैं और जितने भी बुजुर्ग हमारे गए हैं, हमारे प्रियजन हमसे दूर हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करने का समय है, उनके लिए शांति ऊपर वाला प्रदान करे, बस हम यही प्रार्थना करते हैं।
1: उनकी बदौलत तो हम है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा श्यामा जी,
1: वे नहीं होते तो हम कहाँ होते।
0: बिल्कुल सही कहा श्यामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। और बिल्कुल, हमारे जितने भी श्रोता जुड़ते हैं, इतना प्यार से बातें लेकर आते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, ये हमारे प्रोग्राम को और उठाता है, हमारे प्रोग्राम को और मायना देता है। बहुत
1: प्रोग्राम में 4 चांद लग जाता है।
0: बिल्कुल सही, और ये आप हैं तब हम हैं, मैं तो यही मानती हूँ। और चलिए, इसी के साथ आपको करजोड़ नमन करेंगे, थैंक यू कहेंगे, और बिल्कुल प्यार से साथ दीजिएगा हमारा शाम के 5 बजे तक, हम हैं आपका साथ देने के लिए।
1: अच्छा जी,
0: नमस्ते, शुभ दिन, शुभ आपको शुभ संध्या। बिल्कुल, ये थी श्यामा जी, और श्यामा जी हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेती हैं, साथ देती हैं, थैंक यू सो मच। वैसे शोभा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वाकवा से प्रोग्राम को बेहद पसंद करते हैं। और बिल्कुल, कहते हैं ना कि जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पर कई बार हम अपनी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि क्यों दी भगवान ने ऐसी जिंदगी। पर कहते हैं ना कि पत्थर पर सर पीटने से पत्थर नहीं टूटता, हमारा सर फूट सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ईश्वर ने जो भी हमें दिया है, बस हम नहीं जानते कि हमारे जिंदगी में ऐसे दिन हमें क्यों देखने पड़ते हैं। बस हमारे हाथ में जो है, हमारे बस में जो है, बस यही कि ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमारे मन में, हमारे हृदय में वो धैर्य प्रदान करें, धीरज पेशेंस प्रदान करें, क्योंकि भगवान से लड़ा नहीं जा सकता, समय से लड़ा नहीं जा सकता। और अगर हम कोसते रहेंगे तो ये जिंदगी पहाड़ बनकर रह जानी है।
2: याद है पंचम, जब भी कोई नई धुन बनाकर भेजते थे तो साथ कह दिया करते थे,
3: The ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court.
2: ये कौन सा बॉल मेरे कोर्ट में छोड़ गए हो पंचम, या बुला लो।

चलिए इस गीत को बस यहीं पर अचानक से ये गीत रुक गया, कोशिश करेंगे कि ये गाना हम दोबारा से चला पाएं आपके लिए। और अगर आप अपने सफ़र में हैं तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। यहाँ सुदेवी जी भी बहुत एंजॉय कर रही हैं मौका से, नुवेल फ्रांस से मानती जी भी बहुत ही प्यार से जुड़ चुकी हैं।

0: RM3 Radio.
1: कुछ पल हैं, कुछ दिन हैं जो वापस नहीं आते। कुछ लोग हैं अगर जिंदगी से चले जाएं तो वापस नहीं आते। इसके लिए कहते हैं ना कि भाई जिंदगी बहुत बेशकीमती है। हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं और खासकर वो लोग जो आपकी कद्र करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ऐसे लोगों का दिल ना दुखाओ। जितना जल्दी हो सके झगड़ों को सुलझा लो, जितना जल्दी हो सके बस मेकअप कर लो। जैसे कुछ भी अगर बिगड़ा है तो उसे बनाने के लिए जी जान लगा दो। यस, बट कहते हैं ना कुछ रिश्ते बस टूटने के लिए बने होते हैं, पर वो बिखराव में भी कहीं ना कहीं जो इमोशनल पार्ट है वो हमेशा याद रह जाता है। यहाँ पर खुशनुमा से हमारे साथ जुड़े हैं दायन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लवीशा, अपारू फैमिलीज। कहते हैं नाइस शो, कीप अप, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, और जो गाना अभी बीच में छूट गया था उसका दूसरा वर्जन यानी लता जी की आवाज में रखा हुआ मासूम फिल्म का ये गाना। और वैसे आपको बताते चले, 5 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम जारी है और 5 बजे के बाद बिल्कुल आपका साथ देंगे रोशन हर नाम, जो हमेशा आते हैं हमारे स्थानीय कलाकारों को लेकर और उनकी चुलबुली बातें, उनके प्यारे से अंदाज को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो ज़रूर आप अभी थोड़ी ही देर में उनका साथ ज़रूर दीजिएगा, 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच कलाकार की बात कार्यक्रम में। और जी हाँ, हमारा जाने का समय हो चला है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही जज्बाती बातों को।

लेकर और आपके दिल की कहे हुए कुछ ऐसे अल्फाज जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ अपनी बिल्कुल कह सकते हैं कि फैमिली की बातें, दिल की बातें शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच, बिकॉज इट नीड्स अ हार्ट टू डू दैट। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, एंड शुक्रवार की शाम है, फैमिली के साथ एक बहुत ही प्यारा सा टाइम बिताइएगा। सैटरडे संडे प्लान कीजिए कुछ अपने परिवार के साथ, यू नो आजकल बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत लंबे दिनों की प्लानिंग भी काम नहीं आती, बस जहाँ समय मिला फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यही है जो आपकी ज़िंदगी को मायना देता है, खूबसूरत बनाता है। So guys, leaving you with this beautiful track and रत्ना को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे जल्दी से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: 94.96, 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।
1: संध्या के मन भावन बेला बाटे बज गल पांच हमनी के करतु काच और

0: फ्री रेडियो मनोरंजन पर अभी अभी अपन सखी रत्ना जी के खूब चाव से सुन ले जा आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम में। अभी के लिए तो हर खतीर ई प्रोग्राम बन के तैयार हो गए बा।
1: कलाकार की बात

0: समस्त श्रोतागण के भाई बहन लोगन संगतियागण तो हर एकदम मस्त स्वागत बाते रेडियो मनोरंजन और एम्फ्री के लहर पर प्रोग्राम कलाकार के बाद जोन चलेला हर शुक्रवार 5 से लेकर 5:50 तक। आज तो अफसोस की बात बा कि कोनो कलाकार नहीं उपस्थित हो सकलन। ऐसे में तोहर हम तो जानीला तोहर बहुत भली भांति परिचित हुआ जा कि जब कलाकार लोगन नहीं आवेलन जा स्टूडियो में तो तोहर सहायता हमारे लिए एकदम अनमोल है। कहे कि हम तोहर मदद चाहत हैं या एगो छोटा सुन परंतु मजेदार खेल खेलब जा जहां पर तोहर से प्रश्न पूछल जाए और तो लोग बहुत दिलचस्पी से जवाब दे बजा। और आज का जो कॉन्सेप्ट बा विषय बा बड़ा ही आसान सा है। एक दो तीन भोजपुरी बा रंगीन, एक दो तीन भोजपुरी बा रंगीन ई के मतलब है कि गो प्रश्न हम तो लोग से पूछा। बेशक भोजपुरी गाना तो चलबे करी, कोई कोनो कोनो बॉलीवुड गाना भी चली। एक प्रश्न के तीन तीन जवाब तोहरा दे के चाहेला और ऑन एयर तोहरा मौका मिलल जाए जवाब दे के। तो चला एक प्रश्न के तीन तीन जवाब देबा और तो लोग एकदम तैयार हो जा। पहला जो गाना अभी चलाब जा ओके ध्यान से सुनिया और हमनी के बतावा कि है जो पहल का गीतवा बाना ई मैं खाग्य सामान के नाम बाटे। हाँ यानी खाए ओला चीज के सामान हमनी के ऐसन बतावा तीन गो चीज जेकर से जेकर सेवन करल जाला जेकर खाल जाला। ई गाना सुना और हमनी के बतावा कि तीन ऐसन चीज जो जोन खाल जाला। बहुत आसान सा प्रश्न बा। ई गाना सुना ध्यान से और हमनी के नंबर वा मिला हुआ 4028070472 पर बेशक अपन उत्तर हमनी के द।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: RM3 Radio. Radio.
1: कलाकार के बाद कार के बाद
2: जी तीन दोनों कान काटेला बहुत ऊर्जा चाहेला एनर्जी चाहेला कान काटे के निर्मला फरदौस जी की आवाज में मधुर आवाज में सुन लो बहुत ही धमाकेदार गाना तोहर से सवाल रहल कि ई गाना में

तीन चार गो ऐसा खा गया सामान बा खाने वाला चीज जेकर बारे में तोहर हमने के जवाब दे के रहल और सही जवाब देलन सेंट्रल फ्राक से रामदत्त भाई और पार्वती जी शुमेगैया से फोन करके जवाब देलन और तीन के बदले चार चार जवाब देलन जा दाल भाजी कच्चू पूरी बहुत ही बढ़िया ही तक दाल भाजी कच्चू पूरी से खैबत ही बस और जो वेजिटेरियन लोग हुआ जा एक तब बहुत ही आनंद उठावेल जा तो चल हमनी आगे बढ़ब जा और दूसरा सवाल तो हर से करे के समय आगल बा अभी हमनी सभी लोग पितृ पक्ष में है जा और रविवार से जो न दुर्गा पूजा दुर्गा पूजन उ आरंभ हो जाए यानी देव पक्ष में हमनी प्रवेश कर लेब सा तो बहुत ही आसान सा प्रश्न बा जेकर प्रश्न के तीन तीन जवाब तोहलोग के चहना दे के वैसे ता तोहलोग जाने ला जा हमर से जस्ती जाने ला जा कि दुर्गा माँ के नौ रूप है अंबे माता के नौ रूप है जो नोकर सबसे अंतिम रूप है यानी नौवा रूप वह सिद्धिदात्री माता तो हमने के बताओ 4028 7060 पर कत सौ दो कत सौ जिस पर जल्दी जल्दी दिमाग के घोड़ा के तनी लड़ाओ जा और हमने के बताओ कि दुर्गा माँ के जो सबसे तीन पहला रूप है वो कौन कौन नाम होकर इतना आसान सवाल पूछ ले लक रोशन तोहर से हमने के बतावा दुर्गा माता के जो तीन सबसे पहला रूप है ओकर नाम हमने के बतावा 4028 7060 7120 7120 पर अवश्य जवाब दे हमने के और तब तक तोहर खातिर ई गाना

0: RM3 Radio.
1: कलाकार के बाद
2: कलाकार के बाद रोशन के साथ तोहर से बहुत आसान सा प्रश्न पूछ ले रही कि दुर्गा माता के जो तीन सबसे पहला रूप है ओकर नाम हमने के बताए के रहल। बहुत से लोग सही जवाब देलन जा, जैसे कि मालिनी जी ओशनवा से जवाब देलन, देवी जी हाईलैंड से, अमृता जी कानोत से और शोभा जी वाकवा से और वीना दीदी तेहूर से जवाब देलन। और हम तोहरा बतैले रही शुरुआत में कि ए गोष्ट होता के हमनी ऑन ए मौका देव जा जवाब दे के, और उष्ट होता हुआ हमनी के प्यारी दीदी वीना जी त्यागूर से। नमस्ते वीना दीदी जी।
3: नमस्ते प्रशन भैया, कैसे हो?
2: ठीक है वीना दीदी जी, आप ठीक हो जा?
3: हाँ बहुत ठीक है। अब घर आदि की सफाई शुरू हो गए बा,
2: हो गए बा। हाँ अभी दुर्गा पूजन शुरू हो भी करी। हाँ।
3: माँ के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए बहुत जोर जोर से तैयारियां शुरू हो गल बा।
2: बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो हमने के हमेशा सही जवाब देवे ला, ये तो हम जानी ला। हमने के बताओ,
3: हम लगे हाथ सबको के आने वाले नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देवत है।
2: हाँ।
3: इतना कोई व्रत धारण करी अंजा, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी।
2: अच्छा।
3: और सब पर अपन कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाई रखियन।
2: बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको।
3: पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे गांव, पूरे विश्व के लिए बल्कि।
2: बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया।
3: उत्तर हम देवत है।
2: बोला।
3: प्रथमं शैल पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रिश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। बोलिए अम्बे माते की
2: जय। बहुत ही बढ़िया वीना जी। तो आपने, आपसे मैंने पूछा था एक बार तीन रूप, तू तो पूरा नौ रूप बता दे रहा हमने के संस्कृत में।
3: हाँ। एकर में एगो पुस्तक है जिकर के नाम है दुर्गा सप्तशती, इमे हमने पाठ करी ला जा हमेशा, उमे एगो अध्याय आवेला कवच।

0: अर्गला कवच
1: इश्लोक उमेबा हो अध्याय उमेबा
0: पूरा इमें वर्णन है कि हमारे शरीर में जितना भी अंग बा कौन देवी हमारी कौन अंग की रक्षा करेलन बहुत पावरफुल ई कवच है।
1: बहुत धन्यवाद वीना जी, बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण करे खातिर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, शुभ संध्या,
1: शुभ संध्या। और प्रश्न पूछ अब
0: सर, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पुनः पुनः
1: आपको और आपके परिवार को भी।
0: धन्यवाद आपको
1: भी, आपके परिवार सहित। दीदी रलन वीना जी बहुत ही अच्छा जवाब दिलन और एक बहुत ही सुंदर श्लोक का उच्चारण करके जवाब दिलन। तो चल हमने आगे बढ़ब जा और तीसरा प्रश्न बॉलीवुड पर रही। सभी लोग काल शोक मनैलन जा काहे कि नाना पाटेकर जी का निधन हो गया काल। ऐसन बड़ा कलाकार बिरले जन्म लेवेला, बार बार जन्म नहीं लेवेला। ओकर हंसने के अंदाज जो नहर बात करे के जो टाइमिंग रहल तब बहुत ही बढ़िया धमाकेदार धुएंदार रहल। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछे के बाहम के तोहर से 4028070 पर हमने के जवाब द। एगो प्रश्न के तीन तीन जवाब तोहर खातिर अब ये गो गाना चलाब सर जेकर में नाना पाटेकर जी होवन साथ ही साथ मल्लिका शेरावत अनिल कपूर अक्षय कुमार और कटरीना कैफ भी होवन। आर फिल्म का नाम तो वेलकम है और तो लोगो वेलकम हो जा ई प्रोग्राम में कलाकार के बाद में हमने के बतावा ऐसा तीन गो फिल्म के नाम जेकर में नाना पाटेकर जी काम कर ले होवन। इतना आसान प्रश्न, तीन ऐसा फिल्म के नाम हमने के बता द जेकर में अनाना पाटेकर जी काम कर ले होवन। वेलकम फिल्म के छोड़ के काहे कि एकर गाना तो हम चलावत हैं, तो एकर अतिरिक्त और तीन फिल्म के नाम हमने के बता द 4028070 पर। और ई जबरदस्त गाना सुने के थोड़ा मन कर रहा था हमने चलावत हैं सर थोड़ा खातिर ना।

0: कलाकार के बाद
1: क्या किया तुमने तो लोग तो सही जवाब दे दिला जा वेलकम फिल्म के गाना सुनला और तोहर तो मोस्ट वेलकम हुआ जाए प्रोग्राम में सवाल रहर की तीन गो ऐसन फिल्म के नाम बतावा जेकर में श्री नाना पाटेकर जी काम कर ले रलन और सही जवाब दिलन वाकवा से शोभा जी मालिनी जी अगेन फ्रॉम वोश्नो हाइलैंड्स से देवी जी जो नभी ऑन एयर बात करियन और संध्या जी पोएतुपी मौ से और अनीता जी मौदाबिया से तचल हमनी देवी जी से पुनः बात करब जा हेलो देवी जी
2: नमस्ते रोशन जी
1: नमस्ते देवी जी समस्त मॉरिशस द्वारा नमस्ते करत हुआ
2: सबको भी मेरा भी नमस्कार है
1: बहुत बढ़िया देवी जी
2: जय दुर्गा माँ की
1: जय दुर्गा माँ की और देवी जी तुहरा नाम हुए तो देवी जी हुआ कहाँ बोली तुहरा अब हम
2: जोड़ देना
1: मेरा हाँ मैं तो तुहर आगे हम हाथ जोड़ दे काहे नहीं तो हाईलैंड से हमनी से बात करत हुआ जय देवी जी तो बताओ हमनी के तीन ऐसन फिल्म के नाम जिकर में नाना पाटेकर जी काम कर ले हुआ तो पहले सबसे पहले हमनी के बताओ कि नाना पाटेकर के ढेर पसंद करेला जा हाँ अनुशासित बहुत डिसिप्लिन बाकर में शांत स्वभाव के बहुत बढ़िया
2: क्रोध करना मुझे बहुत अच्छा लगता
1: है हाँ ओकर जो क्रोधित रोल है ना भूमिका जो निभाले निभावेलन वो तो बहुत ही दमदार है
2: और खामोशी
1: खामोशी द म्यूजिकल ये अच्छा बहुत
2: गाना है कविता हाँ मधुर आवाज में
1: कौन सा गाना बोल रहा हो
2: गाकर सुनाऊं
1: थोड़ा बहुत सुनावा
2: ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान ए मेरे हमनशी मैं वहां तू जहां
1: बहुत सुंदर सा गाना गेला हाँ इसमें सलमान खान बा और मनीषा कोइराला और साथ ही साथ फूलन देवी और रोल जून कले रलन याद बा ना हो फिल्मों में तो बोला कौन तीन फिल्म के नाम बताए बा
2: परिंदा
1: हाँ जेकर नाम रहल अन्ना खामोशी बोल ला हम दोनों और परिंदा
2: और देखा
1: क्रांतिवीर बहुत ही बढ़िया क्रांतिवीर खतीर फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से नाना पाटेकर जी के अवार्ड दियल गए रहल हाँ बेस्ट एक्टर के अवार्ड 1994 के फिल्म रहल और बोलला अग्निसाक्षी उ में भी तो बहुत बढ़िया रोल निभैलन एगो बहुत बुरा पति के रोल दिखले रहल ना
2: शादीशुदा नहीं है ना
1: हाँ शादीशुदा अब तो ओकर प्राइवेट लाइफ के बारे में हम नहीं बात करब
2: गलत सुना शायद
1: कोई बात नहीं परंतु अगर बेटा सब तब आ ना
2: बाद में देखेंगे
1: बहुत ही बढ़िया तो बहुत ही अच्छा धन्यवाद तब देवी जी के बहुत सही जवाब रहल खामोशी द म्यूजिकल हम दोनों प्रहार बा परिंदा बा एगो ऐसन फिल्म निकल रहल 1986 में जेकर नाम रहल अंकुश उ में भी एक बहुत ही बढ़िया रोल निभले रलन और एगो बेरोजगार नौजवान के रूप में नजर आ रलन और वेलकम तबा और फिल्म बा वेलकम बाक भी बा और बहुत ऐसन फिल्म

बा जैसन यशवंत बा सुंदर सुंदर फिल्म में काम कर ले हुआ वजूद बा जिकर मैं उकर नाम रहल रंजन एगो सरफिरा आशिक के रूप में नजर आ रहल माधुरी दीक्षित के पाए खोजत रलन लेकिन उमे जैकी श्रॉफ भी तो रलन कबाब में हड्डी बने के तो चल अब नी आगे बढ़ब स और आगे बढ़ते बढ़ते चल हमने रामायण की ओर झुकाव करब स अब रामायण में एगो बहुत ही आसान सा प्रश्न बा तोहर खातिर तो चला जोन वानर सेना रहल और वानर के जोन राजा रलन सुग्रीव राजा सुग्रीव जी जोन बाली के अनुज रलन हनुमान जी सुग्रीव जी वानर सेना सहिते नल नील सब एगो पर्वत में रहत रलन जा हमने के खाली बता द 4028070 पर बहुत ही आसान सा नंबर तह डायल कर और हमने के बहुत इत्मीनान से बताओ कि हर जोन पर्वत रहल जेकर में राजा सुग्रीव रहत रलन और के त राज्य से राजा बाली जी निकाल दे रहे रलन तह पर्वत में जाके बसल रहल किश किंधा कान में तोहरा मिली हमने के बताओ पर्वत के नाम का रहल जल्दी जल्दी बताओ पर्वत के नाम का रहल जहाँ पर राजा सुग्रीव जी वास करत रलन 4028070402807070

0: RM3 Radio.
1: कलाकार की बात
2: आज तक कलाकार लोग नयाल होवन जा परंतु हमने के जो श्रोतागण होवन जा कलाकार से कहां कम होवन जा इतना सही सही जवाब के ता हम के हमर मन के गदगद कर देलन जा हर एगो प्रश्न के बहुत आसानी से जवाब देवत होवन जा वाह रे हमने के श्रोतागण वाह हम तो पूछले रही कि कौन सन ऐसन पर्वत रहल जहाँ पर सुग्रीव जी जाके तनी लुकल रहलन बाली जो के निकाल दे रहल जन अपन राज्य से त ओकर नाम का रहल पर्वत के सही जवाब देलन वीना जी त्यागूर से एक बार फिर शोभा जी वाकवा से और अनीता जी गोशनवा से सही जवाब देलन और अभी के लिए अनीता जी हमनी के साथ बा ऑन एयर सभी लोगों कर आवाज़ सुनियन जा तो चल अनीता जी के एकदम हमनी के स्वागत बा तोहर अनीता जी नमस्ते अनीता जी
3: नमस्ते रोशन भाई सभी को मेरा प्रणाम
2: हाँ जी तोहर प्रणाम तो सभी लोग स्वीकार कर लेलन जा इतना प्यार से प्रणाम करत हुआ कैसे लगा था तुम्हारा प्रोग्राम हुआ
3: अच्छा लगेला हम सुनी ला हर समय इनसे कबो लोकाजन नहीं मिलेला कबो सोची हो जाएला कबो लाइन
2: कोई बात नहीं जब जब मौका मिली तो अवश्य हमनी के सुनते रहिए अगर कलाकार के बात नहीं सुनबा तो कोई बात नहीं लेकिन एकर उपरांत जब घर आई बत कोनो प्रोग्राम जो MBC में चली वो सुनते रहिए समझ ला हाँ बोला हमने के जवाब का देब तू अनीता जी
3: हमर जवाब है ऋषिमुख पर्वत किष्किंधा में
2: हाँ हो जे
3: रामायण में जाइला
2: हाँ रामायण सत्संग में जा ला जा
3: हाँ जाइला रामायण करे तो थोड़ा पता बा हमरा
2: हाँ बाबा थोड़ा नहीं तो बहुत खबर बा तोहर तो और तोहर खातिर तालियों की गूंज हो जाए बहुत धन्यवाद अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद
3: सभी को दुर्गा पूजा अभिनंदन जो अभी शुरू हो लाबा
2: शुरू हो लाबा
3: हमने के शुरू करब शिवाला में करब
2: बचा बहुत अच्छा तो अनीता जी तोहर खातिर MBC की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करत हैं जा दुर्गा पूजा अच्छी तरह से करिया मन पवित्र रख के करिया जा
3: आपको भी रोशन भाई बहुत बहुत धन्यवाद
2: धन्यवाद
3: आपको शुभ रात्रि
2: शुभ संध्या शुभ रात्रि आपको बाय बाय
3: बाय
2: हमनी के बहन अनीता जी रलन रोशनवा से बात करत रलन हमेशा सही जवाब देवेलन और चल हमने आगे बढ़ब सपन प्रश्न के जो सिलसिला है ना एक हमने तनी आगे बढ़ाए ला जा रामायण पर प्रश्न हमने कर ले ली जा तो चल तनी एगो सामान्य ज्ञान पर प्रश्न हो जाए चल तनी तोहर से हमने एगो छोटा सुन मजाक करब सब बहुत ही आसान बा तीन गो ऐसन हमने तोहरा स्पाइस के बारे में बात करब सा जो न जिपिस जैसे बुरी रजा तीन गो ऐसन पदार्थ के बारे में हम तो हमसे बात करब इंग्लिश में होकर हम नाम बता इंग्लिश के जो नाम सुन बजा ओके तू अनुवादित कर अनुवाद कर और हमनी के भोजपुरी में बताओ कि ओके कैसे बोलल जाला जैसे हम तोहरा बोलब राइस तो तू बोलब झट से छटपट बोलब भात तो ऐसे ही हमने के बताओ 402-8070 पर 4028070 पर जल्दी जल्दी के हमने के बताओ कि जो ओनियन गार्लिक एंड जिंजर जो इंग्लिश में हमने बोली ला सर जिंजर गार्लिक और ओनियन ओके हमने भोजपुरी में कैसे बोलब जा बहुत ही आसान बा तब तक हाई गाना तोहर करी चलावा था सोच के हमने के जवाब द 402-8070 और खाले पीले जिले भैया जिंदगी में का बा बहुत कुछ बा

0: continuous music. RM3.
1: कलाकार की बात, कार की बात।
2: चला खाले पीले जिले भैया, श्री सोना नोयन जी की मधुर आवाज में ई गाना सुन ला जाओ कर अंदाज त एकदम हट के रलल। सवाल रहल कि गार्लिक ओनियन और जिंजर के हमनी भोजपुरी में का बोलब जा। सही जवाब देलन राधा जी मोचिदा से, संध्या जी पुतोदो से, माला जी बाकुआ से, मौसम सैतौंत्र से, जया जी शोभा जी बाकुआ से और रुमाला जी मापू से। तो चल माला जी की हमने सुनब जा, थोड़ा अभी तुरंत सुनब जा उकर जवाब का। माला जी

0: नमस्ते एक बार फिर।
1: हाँ नमस्ते,
0: मापू से बात कर।
1: प्याज लहसुन और अदरक,
0: प्याज लहसुन और अदरक का हम तोहरा बोलब कंप्यूटर महाशय के लॉक करे के और उ तब बोलक हमके कि सही जवाब माना जी ले रहे। बहुत बढ़िया माना जी, ऐसे ही भाग लेते रहिए। नमस्ते। हाँ, हाँ।
1: प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है।
0: बहुत धन्यवाद। ऐसे ही
1: प्रोत्साहित
0: हाँ, नहीं तू अच्छा। हम अच्छा से भाग लेवत हुआ तो हमने के बहुत अच्छा लगा था।
1: हाँ, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या। धन्यवाद
1: धन्यवाद।

आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हमने के ऐसा बतावा जो कारोम खेले जात कारोम बहुत ही बढ़िया खेल है बहुत ही दिलचस्प खेल है तो कारों में तीन प्रकार के मोहरा बा तीन प्रकार के पॉन्स बा जैसे बोले जा तीन प्रकार के तीन रंग के मोहरा बाऊ में तीन रंग के प्यादा बा कौन कौन रंग के प्यादा बा हमने के बतावा 402-8070 पर कत सौ देखा तो मैं सुशान जी हमने के बतावा कि जो इन प्यों खेला जाला कारोम के बोर्ड में तीन रंग के बाऊ तीन रंग के बा कौन कौन रंग है हमने के बतावा 402-8070 कत सौ देखा तो मैं सुशान जी बहुत ही कम समय रह गल बा

0: संभवती दुमन जी की मधुर आवाज में बेदर्दी बालमा तचल देखब स हैजा के जवाब दे दिल आर होन ने चला हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो हाँ जी नमस्ते
1: हाँ मैं संध्या फिर से पुदोइडो से
0: पुदोइडो आमलेट से संध्या जी
1: पुदोइडो विलास से
0: ओ पुदोइडो विलास से संध्या जी हाँ संध्या जी शुभ संध्या आपको
1: बोला पिछला कई गुप्तियों को कई कुलियाबा ना
0: हाँ तीन गो कुलियाबा कौन कौन
1: कुलियाबा
0: तीन गो
1: एगो बेज एगो नोर एगो रूज कर पाले रूज से पाफिशिया
0: ना जो ना पाले तो ब्लॉन रहेला ने तो कोनो प्रकार के रहे कोनो रंग के जो तीन के आधा है एगो रानी बाऊ में एगो रानी जो लाल रंग के है ना नौ गो जो बोला था बेज ओके व्हाइट बोली ला सा ब्लॉन जैसे बोली ला सा और नौ गो ब्लैक का काला रंग के बा ना काला रंग के और तो हर जवाब तो एकदम एकदम सही
1: ऐसे ही सब तोहर प्रोग्राम
0: धन्यवाद संध्या जी तोहरा बोलीला शुभ संध्या
1: अच्छा
0: अच्छा नमस्ते नमस्ते तो चलो संध्या जी के साथ ही आज के कलाकार के बाद प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हो जाता बहुत कम समय रह गल और ठीक 5:50 पर सुनबा जा किरण जानकी के बहुत ही दिलचस्प सा कार्यक्रम हमारी धरोहर ई कार्यक्रम रोज के चलेला और तोहर ज्ञान बढ़ाए खातिर किरण जी हमेशा तत्पर रहेलन और अभी चलाल हुआन बोलत हुआ रोशन का करत हुआ कि चला ही स्टूडियो में अभी प्रवेश कर ले के तो दे हजा से जयबत तब हम आप हजा तो किरण जी बेशक का तोहर स्टूडियो अभी बा हमारी धरोहर प्रोग्राम सुनिया जा और हम के तू अनुमति द नमस्कार और शुभ रात्रि ठीक 6 बजे सुन बजा समाचार और अभी के लिए हमारी धरोहर
2: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 यू आर लिसनिंग योर RM3 रेडियो रेडियो
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर
4: नमस्ते हमारी धरोहर में आप सबको के स्वागत बा हर 9 अक्टूबर के दिन विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे मनावल जाला और ई मौका है हमने के पुराना दिन याद करे के जब कम्युनिकेशन यानी संपर्क के साधन खाली चिट्ठी पत्र रहल उ चाहे देश के अंदर यही या विदेश में खत और पोस्ट कार्ड ही संपर्क रखे के एकमात्र माध्यम रहल और बहुत सुंदर माध्यम रहल आज भले ही एगो बटन दबाते ही दुनिया के एगो कोना से दूसर कोना तक संपर्क मुमकिन हो गल बा पर आगे के समय में डाक सेवा के बहुत बड़ा भूमिका रहल अपन सगे संबंधी या मित्र से अपन प्यार और अपनापन जतावे खातिर पोस्ट कार्ड या खत भेजल जात रहल और

0: सब पोस्टकार्ड और खत कितने समय ले वतराल उलोग तक पहुँचेगी और एकर से जोन आपस में प्यार बा, जोन आपस में अपनापन बा, वो और भी गहरा हो जात रहल। डाक सेवा के इतिहास बहुत पुराना है। पुराना इजिप्ट में 2500 बीसी में डाक सेवा रहल। ओकर रूप बेशक दूसर रहल। ईरान में 550 बीसी में सबसे पुराना डाक सेवा रहल। अलग अलग सभ्यता सिविलाइजेशंस अपन अपन तरीका से खत संदेश समाचार या पार्सल एगो साम्राज्य से दूसर में भेजत रहलन सा। अमेरिका के जोन पोस्टल सर्विस बा डाक सेवा बेंजामिन फ्रैंकलिन के जमाना से रहल जे 1775 में पहला पोस्टमास्टर जनरल रहलन। 9 अक्टूबर 1874 के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के स्थापना करा गल और ई सदस्य देश के बीच में सहयोग और साझेदारी के एगो माध्यम रहल। मॉरिशस के पहला पोस्टल सर्विस 1772 से कायम है जब ई टापू फ्रेंच प्रशासन के तले रहल। उ जमाना में गुलाम लोग खत के हिया से हुआ ले जात रहलन सा। अंग्रेजी प्रशासन के दौरान 1835 में फिर से डाक सेवा शुरू करा गल। एक सप्ताह में 3 हला ये डाक सेवा देवल जात रहल। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस तब लाशोसे में रहल और देश के पहला पोस्टेज स्टैंप 1847 में जारी करा गल। शहर के राजधानी पोर्टलुई में नवा सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कॉलोनियल जमाना से बा। पोर्टलुई के बंदरगाह और कोदों के बीरी ये इमारत 1810 में गवर्नर फोकवा द्वारा शुरू करा गल रहल। 1868 में गवर्नर सर हेनरी बार्कले द्वारा एकर उद्घाटन करा गल। 1875 में देश में 33 गो पोस्ट ऑफिस रहल। ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में सब गतिविधि केंद्रित रहल। हिये से टेलीग्राफ लाइन टेलीफोन और अंडरवाटर केबल मॉरिशस में शुरू होल। 1958 1958 में ई जनरल पोस्ट ऑफिस के नेशनल मॉन्यूमेंट राष्ट्रीय विरासत के लिस्ट में शामिल करा गल। 19वीं सदी के ई कॉलोनियल इमारत के आर्किटेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण रहल। ई इमारत के छत एकर घड़ियाल और फसाद साथ में एकर 5 गो आँख मध्य विक्टोरिया युग के दौरान मॉरिशस में बरतानी हुकूमत के विकास के कुशल कारीगर के चिन्ह। पोर्टलुई और ओल्ड सुयाक पोस्ट ऑफिस के इतिहास कुछ ऐसा ही बा। 2008 में पोर्टलुई के जनरल पोस्ट ऑफिस के हेरिटेज वैल्यू विरासत मूल्य और ऐतिहासिक मूल्य और बढ़ गल और यहाँ पर पोस्टल म्यूजियम कायम कर गल। और आज भी ये जो लापो सेंट्रल बा वो एगो नेशनल मॉन्यूमेंट के तरह देखल जाला। एकर जोन आर्किटेक्चर जोन ढांचा बा वो बहुत ही महत्वपूर्ण बा। पत्थर के बनल इमारत पोर्टलुई के शोभा बढ़ावे में भी एगो अहम भूमिका निभावेला। आप सब कोई के विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे की बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: RM3 Radio.

शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सैंपल समेत देश के कई इलाकों में पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ी। CWA के पास शिकायतों का सिलसिला जारी और पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की मदद ली जा रही है। मॉरिशस में लगने वाले US अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियां अब आखिरी दौर में। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने आज आयोजकों से मुलाकात की। नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन से पहले उसके अधिकारों और भूमिका को लेकर कई सवाल उठे। नागरिकों की निगरानी, नई एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति और पुराने उन उलझे मामलों की दोबारा जांच पर कानूनी विशेषज्ञों ने की चर्चा। विदेश में मानवाधिकारों के लिए दशकों तक चली लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। दक्षिण अफ्रीका की 50 वर्षीय वकील नावी पिले को इस साल का नोबेल पीस प्राइज देने की घोषणा। बुलेटिन में एक बार फिर आप सब

0: आपका स्वागत पेश है समाचार विस्तार से। नलों में पानी नहीं, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। सैंपल समेत देश के कई इलाकों में पानी की कमी से नाराज लोग CWA से शिकायत कर रहे हैं। CWA के शिकायत केंद्र पर लगातार फोन आ रहे हैं, जबकि पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की मदद ली जा रही है, लेकिन बढ़ती मांग के बीच लोगों तक पानी कैसे पहुँचाया जा सके, CWA इस स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज US अफ्रीका बिजनेस समिट के आयोजकों से मुलाकात की। पोर्टवी में हुई इस बैठक में कॉरपोरेट काउंसिल और अफ्रीका की फ्लोरिजेल लीजिए मौजूद थी। बातचीत में सम्मेलन की तैयारियों और मॉरिशस के लिए व्यापार के नए अवसरों पर चर्चा हुई। सम्मेलन 6 से 9 दिसंबर तक पाइक के स्वामी विवेकानंद सेंटर में लगेगा, जिसमें करीब 2,500 लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉरिशस में 2 महीने बाद होने वाले US अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। सम्मेलन का आयोजन करने वाले कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की एक टीम इन दिनों मॉरिशस में है। इवेंट में आयोजकों ने तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान विदेश मंत्री रितेश रामफल ने बताया कि मॉरिशस विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर खासकर कोंगो में इबोला बीमारी के फैलाव पर नजर रख रहा है। नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन से जांच व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा और नई एजेंसी के अधिकार कितने व्यापक होंगे, इन्हीं सवालों पर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की ओर से एक चर्चा आयोजित की गई। नई एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति और अधिकार, नागरिकों की निगरानी को लेकर चिंताएं और पुराने अनसुलझे मामलों की दोबारा जाँच जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। अंजुराम गुलाम की रिपोर्ट। विवरण गीता सुनारन।
1: कानून जगत की 3 प्रमुख हस्तियां और 2 अहम विधेयक चर्चा के केंद्र में रहे। पहला है पुलिस एंड क्रिमिनल जस्टिस बिल, जिसके तहत अंतरिम आरोप लगाने की व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। दूसरा है नेशनल क्राइम एजेंसी इंटरिम बिल। इसमें सबसे अधिक चर्चा दूसरे विधेयक पर की गई। एक नई व्यवस्था के तहत नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जगह लेगी। इसका दायरा पहले से व्यापक होगा। ये वित्तीय अपराधों, साइबर अपराधों और गंभीर जटिल या संगठित अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करेगी। चर्चा के दौरान अनसुलझे अपराधों का भी जिक्र किया गया, जिनमें नाजिन दौचे और वानिसा लाशेस की मौत के मामले शामिल हैं। DPP के निदेशक राशिद अमीन कहते हैं, NCA के पास जो जानकारियां होंगी, कानूनों में प्रावधानों की पहचान की गई है, जिनसे ज्यादा गहराई के साथ जांच की जाएगी। NCA को अपने अधिकार क्षेत्र के कुछ मामलों में पुलिस द्वारा की जा रही जांच अपने हाथ में लेने, किसी जांच को पुलिस को सौंपने या पुलिस के साथ मिलकर जांच करने का अधिकार होगा, लेकिन अंतिम फैसला कौन करेगा? क्या NCA के महानिदेशक को पुलिस आयुक्त के ऊपर अधिकार प्राप्त होगा? नई व्यवस्था को लेकर ये भी एक अहम सवाल उठाया गया। अंतोन डोमेंग कहते हैं, सहयोग को कम नहीं किया जाएगा। मेरे विचार से एक साधारण कानून या एक प्रोटोकॉल पुलिस कमिश्नर की संवैधानिक जिम्मेदारी पर हावी नहीं होना चाहिए। इसलिए कानून में स्पष्ट सुरक्षा प्रावधानों और वास्तव में स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था की मांग की जा रही है। अंतोन डोमेंग कहते हैं, आजकल एक फोन में न सिर्फ संदिग्ध से संबंधित जानकारियां हैं, बल्कि पूरे परिवार से संबंधित जानकारियां हैं। धारा 60 और 63 में सफाई देने का प्रावधान है और ऑडिट्स हैं जो जानकारियों पर आधारित हैं। गुप्त और व्यापक निगरानी के मामलों में विधेयक के तहत NCA के महानिदेशक के साथ साथ एक न्यायाधीश की भी भूमिका होगी। न्यायाधीश ये सुनिश्चित करेंगे कि निगरानी का कदम मामले की जरूरत के अनुपात हो और आवश्यकता से अधिक व्यापक न हो। गाविन ग्लोवर कहते हैं, सबसे पहले संदेह के लिए कारण होने चाहिए, महानिदेशक की स्वीकृति होनी चाहिए, एक जज चैम्बर का आदेश चाहिए, जज को संतुष्ट होना चाहिए कि प्रस्तावित टेक्निक्स अनुपात में हो। एनसीए की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी और इसके लिए लगभग 2 साल का समय लग सकता है। इसके गठन और कामकाज को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए जाना प्रस्तावित हैं। सरकार की योजना इस नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कुल 9 विधेयक पेश करने की है।
0: इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख अब करीब है। 15 अक्टूबर तक अपनी आय का ब्यौरा नहीं देने वालों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। एमओआरए के अनुसार आज सुबह 9 बजे तक 1,84,000 से ज़्यादा करदाताओं ने अपना रिटर्न जमा कर दिया था। लोगों की सुविधा के लिए पोटवी में एमओआरए का कार्यालय इस शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा, जबकि आखिरी दिन यानी 15 अक्टूबर को रात 8 बजे तक सेवाएं उपलब्ध होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की पत्नी कविता जगनाथ आज फिर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंची। मामला फरवरी 2025 में दिलावन के घर से मिले 114 मिलियन रुपए से जुड़ा है। सितंबर 2025 में हुई पूछताछ के दौरान कविता जगनाथ ने जांच अधिकारियों को कुछ और जानकारी देने की बात कही थी। आज वे अपने वकीलों के साथ FCC पहुंची। अब 14 अक्टूबर को उनसे दोबारा पूछताछ होगी। देश में गहराते जल संकट से निपटने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर आपात योजना की जरूरत है। असेंबली मोरिशियन के नेता नंद बुधा ने सरकार से तुरंत और मिलकर कदम उठाने की मांग की। उनका प्रस्ताव है कि एक राष्ट्रीय नियंत्रण केंद्र बनाया जाए जो पानी के बंटवारे की निगरानी करे और लोगों तक समय पर सही जानकारी पहुंचाए। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: महोफाक्वा जलाशय में आई कमी ने चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार यहां से पानी प्रतिदिन लगभग 1,10,000 क्यूबिक मीटर से घटकर कल केवल 56,000 क्यूबिक मीटर रह गया। एक प्रेस सम्मेलन में नंदू बुडा ने इसे राष्ट्रीय आपात स्थिति बताया। हम एक आपात स्थिति में हैं। संबद्ध अधिकारी, नगर पालिका, सभी को एक साथ काम करना चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए असेंबली मोरिशियन के नेता नंदू बुडा ने एक राष्ट्रीय नियंत्रण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रयासों के बीच तालमेल बिठाना, लोगों तक सही जानकारियां पहुंचाना और निजी क्षेत्र के संसाधनों को जुटाना है। इसमें पानी वितरण के लिए ट्रकों की व्यवस्था भी शामिल है। तूफान जैसी स्थिति है, जब तूफान आता है तब चेतावनियां होती हैं। जनता को सूचित करना चाहिए वरना वो सड़क पर उतर आएगी। उन्होंने जल विज्ञान और जियोटेक्निकल अध्ययन कराने की भी मांग की। इन अध्ययनों से ये समझने में मदद मिलेगी कि इस स्थिति के पीछे सूखा है या जलवायु परिवर्तन का भी कोई असर है। नंदू बुडा का कहना है कि आपातकालीन उपायों के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि देश के सबसे बड़े जलाशय में पानी के उत्पादन में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सके।
0: अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन भर किए गए संघर्षों को अब दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मान मिला है। दक्षिण अफ्रीका की जानी मानी वकील नवी पिले को 2026 का नोबेल पीस प्राइज देने की घोषणा की गई है। 85 वर्षीय नवी पिले ने रंगभेद के दौर में नेल्सन मंडेला सहित कई लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। उन पर पेश है ये रिपोर्ट।
1: नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए नवी पिले को 2026 का नोबेल पीस प्राइज देने का फैसला किया है। भारतीय मूल के तमिल परिवार में जन्मी नवी पिले एक अग्रगणी वकील और कानून विशेषज्ञ बनी। उनका जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबान शहर में उस दौर में हुआ जब लोगों के रंगों के आधार पर भेदभाव होता था। 85 वर्षीय नवी पिले को मुश्किल से मुश्किल मामलों को शांति से हल करने के लिए जाना जाता है। उनके इसी काम को ध्यान में रखकर नोबेल समिति ने उन्हें शांति के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। समिति ने कहा कि उनका काम शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने, ताकतवर देशों और व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने और पीड़ितों की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व को रेखांकित करता है। नवी पिले दक्षिण अफ्रीका के हाई कोर्ट, रुआंडा के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के तौर पर रह चुकी हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता नवी पिल्ले ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर राष्ट्रसंघ जांच आयोग की अध्यक्षता भी की है। वे म्यांमार पर नरसंहार के आरोपों से जुड़े मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज हैं।
0: जैसे कि हम

0: को बता रहे थे, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा करदाताओं से मांग की जा रही है वे कि वे अपना रिपोर्ट सुपुर्द डिक्लेरेशन फॉर्म भर के सुपुर्द कर दें। उनके पास देर से देर 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक की मोहलत है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: इनकम टैक्स रिटर्न और भुगतान करने के इस समय में पोर्ट लुइस स्थित मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के मुख्यालय में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, बावजूद इसके कि अधिकांश करदाता अपना रिटर्न पहले ही ऑनलाइन जमा कर चुके हैं। हालांकि एमओआरए ने आश्वासन दिया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई
2: है।
3: Il donne temps normal le travail à 10 à 20 comptoirs, mais le fait qu'il y ait un grand nombre de taxpayers qui viennent avec un petit doute et un petit question qu'ils ont envie de poser, alors nous mobilise à peu près 40 à 45 staff juste pour la période de e-filing. Depuis cette semaine-ci, nous commençons ouvert vers les 8h30 juste pour un taxpayer qui vient au bureau.
1: इनकम टैक्स फिलिंग अनिवार्य है जो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अर्जित आय से संबंधित है।
4: Si on reçoit un revenu pendant l'année qui dépasse 500 000, alors automatiquement on a une obligation de faire un return de la taxe. Si on a un business et ou gross income, ce qui nous dit, c'est-à-dire au revenu total de l'année, toujours mon répète-li, total de l'année, c'est de juillet 25 à juin 2026. Si au revenu total pour sa business, ça dépasse 2 millions, ou une obligation pour se mettre au return tax. Si toutefois, un salarié et qu'on trouve qui ou quand ou l'employeur, une de nous, ou statement, ou emolument, et a un tax qui est coupé là-dedans, qui nous appelle le pay as you earn, ou une obligation de faire au return tax. Si ou dans le business, ou bien ou un rental, c'est un sujet à ce qu'on appelle le tax deducted at source, TDS, là où vous pouvez faire au return de la taxe, ou simplement si on a un chargeable income qui peut dépasser 500 000 qui logiquement peut faire payer une taxe, alors là où vous avez obligation faire au tax return.
1: शुक्रवार 9 अक्टूबर की सुबह तक एमओआरए को 1,84,000 से ज्यादा टैक्स रिटर्न प्राप्त हुए। लगभग 58,900 करदाताओं को कुल 646 मिलियन रुपए से अधिक की राशि चुकाए गए हैं। वहीं एमओआरए ने लगभग 1.4 बिलियन रुपए जमा किए हैं।
4: Faites attention quand vous avez mis votre numéro de compte à la banque, pas fait erreur, vérifiez-le bien, prenez-le temps, vérifiez-le bien, parce que si vous pouvez faire une erreur au numéro de compte à la banque, si toutefois on a un refund, n'est capable d'attendre, et si toutefois on a un paiement et au numéro de compte pas bon, peut-être nous avons risqué de ne pas réussir à prendre ce paiement-là à temps. Pour nous capables mieux servir la population, le bureau il décide pour ouvrir ce week-end, hein, donc les pour commencer à partir de 9h jusqu'à 4h après-midi. Et aussi, dernier jour qui est le 15 octobre 2026, donc jeudi, nous pour ouvrir jusqu'à le soir 8h.
1: इसके अलावा एमओआरए टैक्सपेयरों को कैश प्राइज वाले दो प्रतियोगिता लकी ड्रॉ और टैक्स सेटिस्फैक्शन सर्वे में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता है।
0: माँ दुर्गा की आराधना, शक्ति, भक्ति और आस्था के 9 दिन। 11 अक्टूबर से देश भर में नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक मंदिरों में विशेष पूजा, प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने आज एक प्रेस सम्मेलन में तैयारियों की जानकारी दी। इस पर ज्यादा विस्तार मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के महासचिव गौतम मांतादीन दे रहे हैं, उनको सुनते हैं।
5: हमारे सभी जो रजिस्टर्ड मंदिर हैं वो नवरात्रि आरंभ कर रहे हैं संडे यानी कि रविवार, संडे 11 अक्टूबर 2026 जहां पर कलश स्थापना से शुरुआत होगी और दुर्गा जो कथा है वो हर रात्रि को चलेगी सभी मंदिरों में। और सोमवार 19 तारीख अक्टूबर जो है वहाँ पर सभी मंदिरों में यज्ञ और पूर्णाहुति होगी और मंगलवार जो है 20 तारीख जो है वहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। कुछ मंदिर जो हैं मूर्तियों जो वो स्थापना की हैं वो लोग विसर्जन करेंगे और कुछ लोग जो हैं दशहरा या जो हम कहते हैं विजयादशमी वो हम मनाते हैं उस दिन।
0: ब्लैक रिवर में 100 साल से भी पुराने बरगद के पेड़ों को काटने का मामला अब एक नए मोड़ पर है। बैनियन स्क्वायर बिजनेस हब के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। जिला पर

0: परिषद ने यह आदेश दिया क्योंकि निर्माण की अनुमति साल जून में समाप्त हो चुकी थी। पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान के हस्तक्षेप के बाद कुछ पेड़ों को बचाया जा सका है।
1: पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय कुछ कार्यकर्ताओं ने एक बरगद के पेड़ की रक्षा करने के लिए उसके तने के चारों ओर जंजीर से बांध लिया। ये खिबियानुआ में मुख्य सड़क के किनारे स्थित एक निर्माण स्थल पर हुई।
2: Un protège ce pied-là, en même temps, pas empêche du boulot face au développement, parce qu'il y a un droit face au développement. Et c'est à cause nous prendre ici, il n'y a aucun contact qu'à un moment donné, nous prenons sa mesure là, mais nous connaissons, nous partions un droit. Rendre une propriété privée, mais nous partions à aucune possibilité. Nous partions à aucun des autres choix.
1: दरअसल रियल एस्टेट परियोजना बनियन स्क्वायर बिजनेस हब के प्रोमोटरों ने बरगद के पेड़ों को काट कर निर्माण कार्य जारी रखने का फैसला किया। कॉन्ट्रैक्टर और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। विरोध प्रदर्शन में शामिल प्यासी यिप तोंग को गिरफ्तार कर लिया गया। खिबियानुआ पुलिस स्टेशन में 6 घंटों से अधिक समय तक पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार ये मामला रोग एंड वैगाबन से संबंधित है।
3: Quand on construit une la case, on a un panneau qui donne 15 jours pour l'opinion publique, la population qui a droit de porter plainte. Donc, qu'il faut qu'il y ait besoin de la loi au Parlement, qu'il n'y ait pas un droit coupier ancestral et nous pas qu'il donne priorité à la propriété immobilière aveuglément. Nous pas qu'on zote, mais faire en harmonie avec la nature et aussi avec l'aval et le contentement des habitants. Parce que nous qui habitons là.
1: इस बीच पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। मंत्री राजेश भगवान ने कहा कि उन्होंने ठेकेदार से उन 5 अन्य पेड़ों को बचाने का आश्वासन प्राप्त कर लिया है जिन्हें काटा जाना चाहिए था। खिबियानुआ जिला परिषद भी परियोजना के प्रोमोटर लक्स लिविंग के खिलाफ निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी करेगी। पता चला है कि प्रोमोटर का निर्माण परमिट जून 2026 में ही समाप्त हो गया था। खेमराज ओटू कहते हैं,
4: Puis en 2021, il y a une contestation, un habitant qui a contesté, il y a une judicial review, il y a une case à cour. En 2023, il y a un jugement en faveur de la promoteur. Et en 2023, quand il y a un jugement, ce bialoupi est valide. Et alors, il est supposé, d'après la loi, et quand il y a un bialoupi, auparavant, avant 2025, il y a 2 ans pour commencer au projet, maintenant il y a 3 ans. Et l'État m'a fait l'enquête, valait 10 jours, et les Akimopé Kozabekou, ce BLDP n'est plus valide. Et moi, je fais une décision au jour du même, c'est venu une notice qui est bizarre et tout ce développement.
1: पेड़ों की कटाई फॉरेस्ट्री कंसर्वेटर के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस संबंध में पूछे जाने पर पूजन राज खुरन ने कहा कि उनका विभाग निजी संपत्तियों में जाकर पेड़ों की कटाई रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता। प्रोमोटर से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने के लिए उन्हें नए परमिट हेतु आवेदन करना होगा।
0: विदेश की खबरों में प्रशांत महासागर का बढ़ता तापमान दुनिया के मौसम में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। एलनीनियो के और ताकतवर होने की संभावना है जिससे कई देशों में गर्मी, सूखे और असामान्य बारिश का खतरा बढ़ सकता है। भारत में तापमान और बारिश को लेकर नए अनुमान सामने आए हैं। उधर चिली में अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका के दक्षिणी तट पर एक शक्तिशाली तूफान का खतरा बना हुआ है।

अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय मौसम का हाल अगले 24 घंटों के लिए कैसा रहेगा। हमारे देश में हल्की हवाओं का असर है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल कल सुबह से

या मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात मौसम अच्छा रहेगा, कल दिन के दौरान ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे, दोपहर बाद पश्चिमी और दक्षिण उत्तर पश्चिमी इलाकों पर सेंट्रल प्लेटों पर भी हल्के बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश हो सकती है। हवा आज रात को पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगा, प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 5:44 पर, शाम को सूर्यास्त 6:10 पर होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। प्रिंस दे गाल स्ट्रीट सिनेमा का सेट्रियोले में नब्बे साल की 90 ईयर्स ओल्डर की श्रीमती कालावती ओकलू पैदाशी नाम हुकुम सिंह और जो दादी इंदिरा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान प्रिंस दे गाल स्ट्रीट सिनेमा का से थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची पेचराफे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। Cremation tomorrow at 11 a.m. Avenue Pamplemousse, Camp de Pêcheurs, Grande Rivière Sud-Est, Mai. Panchandi Salki, 95 years old, Ki. Shrimati Sindarmani Tengri, Jo Chinta ke naam se zyada jani jati thi, unki mrityu ho gayi hai. Arthi, kal din ke 11:30 baje unki beti, Binta ke du ke makan, Avenue Pamplemousse, Camp de Pêcheurs, Grande Rivière Sud-Est से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM। रुईला प्लास मेबर्ग में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी फातमा लालू पैदाशी नाम खेतू और जो कालाफाते के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज रात 7:30 बजे उनके मकान हुईला प्लस मेबर्ग से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए मस्जिद मेबर्ग की जुमा मस्जिद और फिर दफनाने के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस रिविया दे क्रेओल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 7:30 AM। बेल रोज नंबर तीन आवेन्यू कुरारा में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रतिमा देवी सिवरतन पैदाशी नाम बुधू और जो लता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10:30 बजे एलियन सन्स बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। पिछित का बान कौन दे मास्क पावे में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ऋषि कुमारी दसोई पैदाशी नाम गोपल और जो ऋषि के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विराज दसोई के मकान पिछित का बान कौन दे मास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौन दे मास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। आवेन्यू विरासामी आयर मोसेलमान राफ्रे ले ओ शेते आरोज में 43 साल के 43 ईयर्स ओल्ड के श्री दिनेश रामनियाल जो बंटी और बैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बीड्स एंड ज्वेल औकात की नू पोट्री में बीड्स एंड ज्वेल के मालिक थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी

रविवार को दिन के 12 बजे उनके मकान एवेन्यू विगासामिया यर मुसलमान राफेल शेतेरोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दिपट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन संडे एट नून। आले जाक ग्रांबोआ में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्डर के श्री सन्मत गंगा बिसुन पैदाशी नाम बुधन और जो मामा रामेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान आले जाक ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 नून। रॉयल रोड मिडलैंड्स में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्डर की श्रीमती सावित्री सुकी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान रॉयल रोड मिडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की उपयुक्त की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM। एवेन्यू बोर्जो बॉशेरी मुकामी 74 साल की 74 ईयर्स ओल्डर की श्रीमती हरिवंती गुलाम पैदाशी नाम फुली और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे अविकाश सिंह गुलाम के मकान एवेन्यू बोर्जो बॉशेरी मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: छह बजकर 34 मिनट हो चुके हैं। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप जुड़े हैं नई सोच के साथ, मैं हूं आपके साथ पूनम। आज एक छोटा सा सवाल करेंगे, क्या खुश होने के लिए कोई बड़ा मौका होना ज़रूरी है? हमारी ज़िंदगी में रोज़ छोटी छोटी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। तो आज बात करेंगे इन्हीं छोटी छोटी खुशियों की।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच
1: 6:40 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपनी ही प्रोग्राम नई सोच के साथ और इस समय मैं साथ दे रही हूँ आपका पूनम। बताइए दोस्तों, कई दिनों से कोई काम अटका हुआ होता है और हमारा जब काम पूरा हो जाता है लेकिन खुश होने की बजाय है उसको थोड़ा सा इंजॉय करने की जगह हम दूसरे काम में लग जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ करे, हमने ये किया वो किया, पर हम तो यही चाहेंगे कि आपको दूसरों की अप्रिसिएशन वेट के लिए क्यों वेट करना है, इंतज़ार क्यों करना है, आप खुद ही इंजॉय कीजिए। आपने कुछ भी पाया है या कुछ बनाया है तो उसके लिए किसी और की जगह खुद के फैसलों के साथ में खुद के साथ में आगे बढ़े, थोड़ा सा खुद के साथ एंजॉय कीजिए।
2: RM3 रेडियो

0: छह बजकर 45 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। और इस समय मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि ये जो शाम होती है ये इतनी सुहानी होती है और ये टाइम जब मिलता है अपने परिवार के लिए मिलता है। और हम बात कर रहे हैं बहुत छोटी सी कि क्यों अपनी छोटी छोटी खुशियों को बहुत टाइम के बाद सेलिब्रेट करें या बिल्कुल ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के साथ में परिवार के साथ में बैठ के हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर बस हम यही सोचते हैं कि अरे नहीं, अगर हम बाहर जाएंगे तो ही खुशी का माहौल बनेगा या बाहर घूमेंगे फिरेंगे या कहीं किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करेंगे यही खुशियां होती हैं। मुझे तो जो एहसास होता है वही ऐसा ही लगता है कि जो इंसान अपने परिवार के बीच में बैठ के हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, ये भी तो एक प्यारी सी खुशी है। इसको भी सेलिब्रेट करना ही एक सेलिब्रेशन है।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं नई सोच और इस समय साथ दे रही है आपके पूनम। कहते हैं ना कि किसी दोस्त को अगर प्रमोशन मिले या बच्चे के अच्छे मार्क्स आए या किसी नए काम को शुरू कोई करता है तो हमें उनको दिल से बधाई देनी चाहिए। किसी दूसरे की खुशी में शामिल होने से ना हमारी खुशी कम नहीं होती और बढ़ जाती है और एहसास भी होता है कि हमें भी लगता है कि हमारे आसपास कुछ अच्छा नया हो रहा है और यही तो आगे ज़िंदगी हमारी जो न्यू जनरेशन आएगी उनके लिए भी वो नई चीज़ होगी। और फिर कहते हैं ना जब नई चीज़ आती है उसके अंदर कुछ ना कुछ एडवांस होता है और जब एडवांस होता है तभी तो रियलाइज होता है कि हम कहीं ग्रो कर रहे हैं।
2: You're listening to RM3 Radio, Man.

तो दोस्तों खुशी मनाने के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार मत कीजिए, अपनी मेहनत को खुद एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। मैं तो यहाँ से सिर्फ नई सोच के साथ इजाज़त लेती हूँ, पर थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ।

0: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक, शाम के 7 बज रहे हैं।
4: दिलों की आवाज़ की आवाज़।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के भाई 7:09 हो चुके हैं और मुझे बताएं कैसे चल रहा है आपका फ्राइडे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना फ्राइडे का, इसका इंतज़ार तो चाहे मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, सभी को होता है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं तो घुमाना होता है, क्योंकि पूरा दिन बिजी शेड्यूल, चाहे पेरेंट्स का हो, बच्चों का स्कूल या कॉलेज में हो, उस समय एहसास होता है कि भाई फ्राइडे आ जाए तो थोड़ी सी पार्टी शार्टी हो जाए, मस्ती हो जाए, मजाक हो जाए। घर में अगर घर पर होंगे तो मैं तो यही कहूँगी, घर में हमारे साथ जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच, आप सबका आ गए और सभी को उम्मीद होगी आपके गाने चलेंगे, तो बिल्कुल चलेंगे। 80s के, 90s के और 2000 के गाने हम चलाएंगे, और जहां पर अगर आपको पता ही है आपका नंबर 5250-6200 जो आपका मैसेजेस का साइड है, यहां पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है और किसके लिए, और बहुत ही प्यारे से अगर कॉल करना चाहते हैं तो 4028070 आपके साथ है हमेशा 24 आवर्स। तो हम तो यही कहेंगे वेलकम है आप सबका, एंजॉय कीजिए गानों को और साथ में हमारी कंपनी को। इस समय हम टिकटॉक पे हैं, 1 घंटा टिकटॉक पे रहेंगे और 1 घंटा आपके मैसेजेस और आपके कॉल्स भी अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए ये गाना आप सबके लिए।
0: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज़, दिलों की आवाज़, दिलों की आवाज़।
1: 7:20 हो चुके हैं और आज है शुक्रवार यानी फ्राइडे, और कल सैटरडे की जो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है ना कि आए ऑफिस नहीं जाना, कहीं पर नहीं जाना, आराम से उठेंगे, ये वाला तो जो मूड होता है ना, ये बहुत बढ़िया होता है। तो हम तो आपको यही कहेंगे भाई, अब फ्राइडे आ गया, एटलीस्ट फ्राइडे रात तक तो इन्जॉय कर लो। साथ में हमारे जो जितने लोग जुड़े हुए हैं इस समय टिकटॉक के साथ में, हमारे साथ दे रहे हैं इस समय रतन, विनीता और विनय जी के लिए अपने हस्बैंड के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। कौन दो हॉस्पिटल के किचन स्टाफ के लिए एक प्यारा सा गाना सब सुनना चाहते हैं, बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। वीना गंगाधर साथ में हैं, करुणा जी, यश जी इंग्लैंड से हैं, सरिता, सबीला एंड सत्यन और भविष्य के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके परिवार के सभी लोग उनको एक प्यारा सा बस एक गाना सुनाना चाहते हैं। अंजू साथ दे रही हैं, तेज अपने मम्मी पापा के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं, एंड लेडी जगवार, यस डेफिनेटली वो हमेशा आते हैं और कहते हैं फास्ट स्पीड से एक प्यारा सा गाने की फरमाइश हो जाती है। विशाल, कवि, रीना, SSU एंड टिम के लिए गाना चलेगा। दुर्गा, शीला, मोका से और अंजू एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, अभी चलाएंगे। दीपशिखा यशवीर के लिए गाना सुनाना चाहती हैं, सचिन जी जिनका आज बर्थडे है, क्या बात है, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। हम तो ये कहेंगे कि हमेशा खुश रहो, एंजॉय करो अपनी शाम को आज। और कृष्णा जी फीजी से साथ दे रहे हैं, प्रमिला जी साथ दे रही हैं बेल्जियम से और बहुत सारे लोग, तो हम तो यही कहेंगे हमारे साथ रहो, एंजॉय करो गानों को।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं दिलों की आवाज़ के साथ में, और अभी साथ दे रही है आपके पूनम। और कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई गाने हमारे पसंद के होते हैं, कोई हमारे पेरेंट्स के पसंद के होते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, बड़ा कोइंसिडेंस हो जाता है कि सेम गाना आपके पेरेंट्स का बहुत पसंदीदा होता है और एक दिन आके वो आपका भी एक फेवरेट सॉन्ग बन जाता है। और जहाँ पर बात आ जाए किशोर दा की तो फिर बात ही क्या। चलिए जी, जो नेक्स्ट गाना होगा वो जाएगा ललित जी के लिए, USA से जो साथ दे हैं और हमेशा एक प्यारे से गाने की फरमाइश करते हैं ललित जी आपके लिए। और हम तो ये कहेंगे जो भी इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे रेडियो पर मॉरिशस से या टिकटॉक के थ्रू, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम सबको बोलेंगे थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को, आने वाला पल।
2: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: 7:46 हो चुके हैं और कहते हैं ना कि जब वीकेंड आता है तो सबको उम्मीद होती है भाई हमारे ग्रुप के अंदर कोई मैसेज कर दो और बता दो कि कल की क्या प्लानिंग है, कहाँ जाना है, कोई भी ले जाओ भाई। ऐसे ही होता है ना, तो फिर एहसास होता है अरे नहीं कुछ और काम करने हैं, कहीं बिजी हैं, और फिर भी दोस्तों की थोड़ी सी कहते हैं ना बेरुखी का अंदाज़ हो जाता है और वो कहते हैं नहीं नहीं तुम नहीं साथ जाओगे तो फिर हमारे ये पार्टी का क्या फ़ायदा, इस घूमने का क्या फ़ायदा। तो हम भी आपको बोल रहे हैं सुबह से किसी ने कि आपको कोई मैसेज किया हुआ है या बोला हुआ है कि चलो भाई वीकेंड कहीं से स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं तो जाओ ना, किसने मना किया है, कहीं मत अगर नहीं जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा, ऐसे घर में रहोगे। हाँ बट अगर जो घर में हैं तो उनको भी हम यही बोलेंगे फिर हमारे साथ जुड़े रहो, चाहे अभी समय टिकटॉक के साथ जुड़े हुए हैं या अभी हमारे साथ आप थोड़ी देर के बाद मैसेजेस के साथ जुड़ेंगे। तो गाने तो आपकी पसंद के चल रहे हैं यहाँ पर हम आपको इतना ही कहेंगे कि आपका आना हमारे लिए बहुत खुश कहते हैं कि खुशी देता है, और साथ में हम आपको बोलेंगे कि की जो गली है ना उसके अंदर कोई कोई पैर रखता है, और जिनको प्यार हो जाता है और जिनको मोहब्बत हो जाती है ना किसी से, उनके लिए गाना सबसे स्पेशल है। तो एंजॉय कीजिए गानों को, साथ में हमारे साथ दे रहे हैं इस समय जया जवीश, किशन किशनी, विकास एंड वी जया लक्ष्मी, फजीला चिन एंड मोविन के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। रजनी जी साथ दे रही हैं, आत्माराम सर साथ दे रहे हैं, कोमल नीलम, फ्लावर नाम भी बड़ा प्यारा सा है, फ्लावर टीना, मनोज जी, रेशमा, उमेश।

देव राजन रुकपत जी जो कि लंदन से साथ दे रहे हैं, नाजिम साथ दे रहे हैं और मॉम माला एंड लीना के लिए एक स्वीटी ने गाना की फरमाइश की है और हमारी प्यारी सी क्यूटी ने भी बोला है और शवि ने भी कि हमारे लिए एक प्यारा सा गाना चलाइए। बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। निवेदिता साथ दे रही हैं, सुदेवी जी साथ दे रही हैं और आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक रात के 8 बज रहे हैं।
4: दिलों की आवाज़ की आवाज़।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: 8:06 हो चुके हैं और कहते हैं ना कई लोगों को अपने सिंगर्स इतना पसंद होते हैं कोई इतनी जैसे उनका कोई गाना बजता है वो फटाफट से बस उसके साथ झूमना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे लोग साथ में टिकटॉक पे जुड़े हुए थे, कहते गाने इतने अच्छे चल रहे हैं कि हमें कुछ स्पेशल फरमाइश करने की ज़रूरत है क्योंकि सभी कोई ना कोई किसी ना किसी की पसंद के गाने और सभी को पसंद आ रहे थे। तो हम तो यही कहते हैं कि आपकी पसंद में चाहे वो रफ़ी साहब हो, किशोरदा हो, लता जी हो, अरिजीत सिंह हो या हरियाणो, सभी की आवाज़ सभी की बातें बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो हम तो आपको यही कहेंगे हमारे साथ जुड़ जाइए। जो इस समय जुड़ रहे हैं व्हाट्सअप से 5250620 पे जो आपको नंबर पता ही है और चाहे कॉल्स हैं 4028070 पे हम आपके साथ हैं। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
0: RM3 रेडियो

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: 8:18 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ में। और यहाँ पे साथ इस समय मैं आपका साथ दे रही हूँ पूनम। और यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं और स्पेशली रफीक मोहित सर की तरफ से, और वो एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, बिल्कुल हम चलाएंगे। साथ में डारिन, रविश, प्रिशा, श्वेता, मालिनी जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। साथ में सुदेवी जी भी जुड़ी हुई हैं और अपने पूरे परिवार के साथ में और अपने परिवार के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। हम बिल्कुल आप सबके पसंद का गाने एक एक करके चलाएंगे, पर हम आपको इतना ही बोलेंगे अब लाइंस ओपन हैं, आप कॉल कर सकते हैं 4028070 पर। और अगर आपको व्हाट्सअप करना और आपकी कोई फेवरेट गाना है जो इस टाइम को मैच करता होगा तो ज़रूर भेजिएगा 5250620 पर। इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल गाने को किशोर कुमार की आवाज़ में।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: की आवाज 8:31 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और हमें पता है कि संडे से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और घरों में सुबह से लेडीज़ और चाहे जेंट्स सभी मिलके कहते हैं ना घर की साफ़ सफाइयों में शुरू हो जाएंगे। कईयों ने आज से ही शुरू कर दी होगी और कह रहे होंगे बस संडे तक फटाफट से सारे काम होने पर जाए, बहुत सारी शॉपिंग की होगी। तो हम तो बस आपको यही कहेंगे, नवरात्रों की बधाई देंगे, प्रार्थना करेंगे सबकी इच्छाएँ पूरी हों और हमेशा सब खुश रहें। तो चलिए जी, थोड़ा सा टाइम आपने जो निकाला है हमारे साथ, इंजॉय कीजिए इन गानों को। और ये जो नेक्स्ट गाना है सलमा आगा की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा, निकाह मूवी से इब्राहिम सर ने इसकी फरमाइश की है। तो सर आपके लिए ये गाना और हमेशा खुश रहें।
0: RM3 रेडियो।

0: की आवाज,
1: आठ बजकर 50 मिनट हो चुके हैं। आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में मोहब्बत की नहीं जाती, और ये सच बात है, मोहब्बत हो जाती है अपने आप, कैसे पता नहीं, पर हम तो आपको यही बोलेंगे, हमको आपसे मोहब्बत है और आपको हमसे मोहब्बत है, यही सबसे बड़ी बात है। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे पूरी उम्मीद है आपका शुक्रवार फ्राइडे बहुत अच्छा गया होगा हमारे साथ। अब आपकी जो भी प्लानिंग है पूरे वीकेंड की, इंजॉय कीजिएगा, उसको अच्छे से सक्सेस कीजिएगा, घर में जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे कल रात को 7 से सेम टाइम पे। वैसे तो हम 5 बजे शुरू करेंगे, पर जो दिलों का की आवाज़ प्रोग्राम है 7 से 9 होता है, तो आपको जैसे ठीक लगेगा वैसे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। RM3 हमेशा आपके साथ है। गुड नाइट, शब्बा खैर, ख्याल रखिएगा। RM3 रेडियो।

0: Upcenter 95.5. North, South 95.6. 95.6. East, West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: हौस पर तो कदम नबी का है, उनके जेर कदम वली सारे, हर वली ने सही पुकारा है। वाह क्या बात हौस आजम की। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीजा का साथ है, उर्दू नशरियात महफिल शब में रात के 9 बजे तक। मजी सामीन, हौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा इबादत और रियाजत और कुरान करीम की तिलावत फरमाया करते थे। आप रहमतुल्लाही अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक ख़त्म करते रहे और रोज़ाना 1000 रकात नवाफिल अदा फरमाते रहे। शामिल मोहतरम, नेक बंदों के दिल मोहब्बत इलाही और परहेजगारी से आबाद होते हैं। ये अपने दिलों से दुआ की मोहब्बत निकाल देते हैं। इनकी रूहें जिक्र इलाही के बग़ैर बेचैन व बेकरार रहती हैं, इसीलिए वो हर लम्हा याद इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। ये मकाम वज़ीज़ामीन इबादत और रियाजत में सख्त मेहनत करने से हासिल होता है। अल्लाह पाक हम सब को राह सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। नमस्कार, भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो और स्वागत करते हैं जहाँ जहाँ हो बजा हो जा पर हमने के साथ दिया जाए रेडियो मॉरिशस और रेडियो मॉरिशस पर हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जहाँ हमने के यानी कि तोहर और हमर हमने के टीम के हमने के सब जनता लोग के कार्यक्रम और ये कार्यक्रम में तो हर स्वागत करते करते हमने के कार्यक्रम के शुरुआत कर जा तो हर के दिन बहुत अच्छा से गुजरल हो। आज सुख के सांझ बा, सुख के रात बा, शायद थोड़ा सा आराम करे के और मौका मिल रही तो रुक के पूरा सप्ताह तो लोग काम उम करके आज थोड़ा आराम करे के सकेला निश्चय कर ले हो जाए। शायद ना भी शायद कोई के काम अभी जारी हो तो जहाँ हो जाए जैसन सिचुएशन में हो जाए तो हर मनोरंजन करे खातिर हम सुरेखा चला रहे हमी के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में स्वागत करते करते हमने इतना याद दिला दे इतना बता दिला जाता हूँ लोग के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव बा, कार्यक्रम में नहीं बल्कि कार्यक्रम में कांटेक्ट करके थोड़ा सा बदलाव बा। आज तो लोग टेलीफोने भी करिए जा 5025017005 पर और मिसाज भी है ये पर भेजा जा मिसाज भेजे खोजब या फिर टेलीफोने करे खोजब तो दोनों एक गो नंबर पर करिए जा। आज सैंक 205-7005 पर टेलीफोने भी कर जा और मिसाज भी भेजा जा कहे कि आज हमने के थोड़ा सा बदलाव आने के पड़ल और ये उम्मीद करते हैं जा कि जल्दी जल्दी ये बदलाव खत्म हो जाए और हमने के सब कुछ सामान्य पर लौट आए। अरे चलो हमने ये प्रस्तुत करी जा हमने के पहला गाना और हमने के पहला गाना है सुमन रामतोहल जी के गावल सुमन के जलसा। चलो सुनी जा सुमन के जलसवा कैसे होएला, सुमन के गमटवा कैसे होएला और ये गीत सुनते सुनते तहलक के मिसाज भी पढ़ जा और तहलक के कॉल भी लेवा जा।

चले दोस्ती बढ़ाए ला जा, दोस्ती गाना सुनी ला जा। विजेश गणपत जी गाना मंगले गाना गईले होवन, मंगले तो होवन गीता जी कौफुको से गीता जी गाना मंगले होवन अपन पिताजी खातिर, अपन माता जी खातिर और अपन भाई रोहन खातिर।

चले सुनी जाई तो संगीत सुन के ही समझ गए ला जा रंभा राम तो हर जी के गावल गाना हर रंभा राम तो हर जी हमने के भोजपुरी दुनिया में खूब रोशनी दिले हो रंभा राम तो हर जी और ये रंभा राम तो हर जी के गावल गाना हमने गायत्री जी खातिर मंगा बजवाओ थे जान वेलफोन से गायत्री जी गाना मंगले होवन अपन बेटा अजय खातिर अपन मामी कल्याणी मोहन जी खातिर और अपन बेटा अजय के साथ साथ मोतायलों के भाभी शकुंतला खातिर नोवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का ये तड़का तो बड़ा स्वाद होला लगता, इमें हम के श्रोता लोग के फरमाइश के तड़का लगता, बड़ी अच्छा छोंक बा, बड़ी अच्छा खुशबू बा, बड़ी अच्छा स्वाद भी महसूस हुआ था। भोजपुरी तड़का में चला बढ़ी जा हमने के अगला गाना बगल, और ये बहुत उमदा गाना है, ये ज्ञान महीपत लाल जी के गावल गाना है, महान कलाकार के गावल गाना है, आत्माराम जी मंगले हवन ये गाना। और ये गीत बेलिया से आत्माराम जी अपन बहन लोग के नाम करत हवन, ललिता जी के नाम, सुदेवी जी के नाम, छोटी जी, प्रभावती जी, और ये गाना पूरा इसनु परिवार के नाम करत हवन, बेलिया के इसनु परिवार के नाम करत हवन आत्माराम जी। तो चला सुनी जाए गाना हमने।

तो चला भोजपुरी तड़का में अभी कुछ सुनी जा हमने संभावती दुमन जी के गावल गाना। ये गीत संभावती दुमन जी होला मंगले हवन त्रियोले से ललिता कुशल जी। ललिता चाची गाना पन बहिन लोखातीन मंगले हवन बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी और आत्माराम जी खातिर और शुक्लाल मौसी जी खातिर।

और चला अभिकुत हमने तो अलग के सुनवाओ अब जा शांति जी के पसंद के गाना शांति जी तो हमने के कार्यक्रम में हर मेसा भाग ले रहे हैं कब बने चुके लाइन शांति जी तो हर स्वागत करते हैं जामने के कार्यक्रम में राजा बंधु जी के गावली गाना मंगले हवन शांति जी और राजा बंधु जी के गावली गीत शांति जी दागोचिया के अपन मराठी परिवार खातिर मंगले हवन

अपतागोचके अपन भगिना ओम खातिर मंगले होवन और कब्बो नहीं सके भुलाए अपन भाई बलराम के तो भैया बलराम के नाम भी करत हवन ये गाना चला सुनी चाह कर लापुलिस भैया के नाम

9:39 होलबा और हमने बढ़ते बढ़ते चलत है जा हमने के पूर्वज लोग की कहानी बगल हमने के पूर्वज लोग के आगमन के बात चर्चा करब जा विक्रम कुलाचंद जी गए हमने गीत हरी गाना मंगले हवन हर वैसा कलिते हमने के श्रोता अबू जी वाकवा से गाना मंगले हवन आफेज खातिर असलम आया जायान जाहिरा खातिर काला चौथी खातिर और अपन सखतिया अपी खातिर और उनकर पत्नी खातिर

तो चला अभी कुछ देर देखे जा हमनी दुख भरी दास्तान रहेला जब तो भोजपुरी गीत कैसे ई दुख भरी दास्तान हम देखे सुनावेला कविता मंदिर जी के गावल गाना चला सुनी जा हमनी और ई गाना हमने बजवाओ थे जा गौगुप के सुनीता जी के पसंद पर गौगुप के सुनीता जी गाना अपन बहन विमाला खातिर मंगले हवन कुंगुमा के और ये अपन बहन अमृता और वीना खातिर मंगले हवन

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

जैनीसन जी के गावल गाना संगे और गाना मंगले हवन हमने से सुदेवी जी मंगले हवनी गीत त्रियोले के दीदी ललिता और कुशल परिवार खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मानेगा बालेगा के पूरा राम रतन परिवार खातिर और री गाना हमने के सब सुने वाला खातिर मंगले हवन सब श्रोता लोग खातिर मंगले हवन सुदेवी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुदेवी जी।

साजन के सड़िया चला सुरिजा सुनीता ननकू जी से। सुनीता ननकू जी के गावली गीत हमने बजाओ था जा साधना जी के फरमाइश पर का थो बोन से साधना जी गाना मंगले हुआ ने अपन बेटा अरविंद खातिर और अपन बेटी।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में चला सरिता बुद्धू जी के एल्बम के एक गाना प्रस्तुत कर अब जा। वो गाना जो बहुत साल पहले से हमने सुनते आ रहे हैं।

जा और ये गाना साजिद जी मंगले हवन अपन बचपन याद करे खोजा थवन बचपन में ये गाना खूब गईले रलन सुनले रलन और कैसे खूब मस्ती करले रलन तो चला सुनी जा हमने ये गाना।

वैसे भी अभी पानी के जितना दुख पड़ल बा हमनी के चाहिए पानी पर बहुत ध्यान दे के पानी के जियान ना करे के चला ई बात पर हमनी जरूर अमल करी जा अभी संभावती दुमन जी के गावल और एक गाना हमनी सुनब जा और ये गाना हमनी बजवाई ला जा शिखा के पसीन पर शिखा जी कथा कौन से गाना मंगले हवन

अभी हम ये प्रस्तुत कर तो हर खातिर एगो ललना और ये ललना पूर्णिमा फकीराज के गावल है पूर्णिमा जी गाना अपन बेटा के जन्मदिन के अवसर पर बजवाए खोजत हवन इंग्लैंड में हवन उनकर बेटा प्रवेश उनकर जन्मदिन बाज और जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन पूर्णिमा जी उनकरा और प्रवेश जी के जन्मदिन के शुभ कामना उनकर पत्नी कुष्मा उदिन भी देवत हवन उनकरा और उस उनकर माता जी के संगे संगे उनकर पिताजी लाला बहिन हवन पूनम पिंकी प्रवीणी पूजा और फकीरा परिवार कल्याचेती परिवार दसोई परिवार देव दयाल परिवार फ्लाक के और यही गाना पूर्णिमा जी मंगले हवन SSON के अपन सब संगतियालो के नाम सब जितना कोई रात के काम करते हवन जा उन सब कोई के नाम

और अब चला हमने जलसा के रात पर तनी ध्यान दे ला जा आज सुख के रात है काफ़ी जगह पर जलसा के रात है आज के सुख के रात तो चला यही जलसा के रात में हमने भी शामिल हो जाए ला जा ये गाना हमने राजन लक्ष्मण जी के पसंद पर बजावत है जा और ये राजन लक्ष्मण जी गाना मंगले हवन सृष्टि तुलसी खातिर फिर अपन पत्नी जी खातिर बेटी प्रार्थना और प्रगति खातिर और ये अपन बहन खातिर यूनियन पॉक के और अपन भगिनी खातिर था चला ये गाना हमने कुणाल हीरीलाल के गावल प्रस्तुत करते जा राजन लक्ष्मण जी के पसंद पर

गाना हमने सुनी था ननकू जी के गावल सुना था जा विश्वानी दुमन जी के पसंद पर विश्वानी दुमन जी गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर अपन बहिन शारदा और इंदिरा खातिर अपन सखी नीला और प्रतिभा खातिर शोभा जी खातिर और गीता गजाधर जी खातिर

नवरात्र के स्वागत में हम तैयारी करत हैं जाओ री तैयारी माता दुर्गा के स्वागत के कल्याणी जी भी करत हवन वाशेगी से कल्याणी जी मंगले हवन दुर्गा माता के गो गाना और ये गाना बिस्वानी दीपा जी के गावल चला सुनी जा ये गाना कल्याणी जी मंगले हवन गीता राधे किशन खातिर बड़की मुनोवा खातिर संगीता संगीता बिका फूलो विकास राम के रावण खातिर

माँ के कृपा बनले रही हमनी के सब कोई के सिर पर, हमनी के सब श्रोता लोग के सिर पर। कोनो भी गलती, कोनो भी त्रुटि, कोनो भी बाधा आए, दुर्गा माँ हमनी के बाधा अवश्य दूर कर दी हन।

हम देखिए गीत में शायद कोनो खराबी नजर आवत आई गाना हमने नहीं चलाए सकते जा हर घड़ी रुक जाता चला उम्मीद करे थे जा अभी कुछ फिर से एगो कोशिश करी जा फिर से चलाए ला जा चल जाए तो दुर्गा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का भोजपुरी तड़का में भक्ति गीत के फरमाइश तभी थोड़ा घड़ी आगे कल्याणी जी कर लेना अमृत अनीता जी भी एगो भक्ति गीत के फरमाइश कर ले हवन अफ्रीकॉन फ्लाग के अनीता जी मंगले हवन गाना बहल गौर जी के गावल उनकर भाई के संगे संगे उनकर आवाज़ मिलल मिलली गाना है और ये गाना हमने बजवाएला जा अनीता बगल अनीता जी बगल से उनकर संगति आलो खातिर और उनकर पूरा परिवार खातिर।

अब प्रेमिला जी के संदेश के बगल बढ़ब जा प्रेमिला जी गाना मंगले हवन गीता गजाधर जी के गावल माँ बाप के मोल और प्रेमिला जी का तो बोन से गाना मंगले हवन एक संदेश देवे भी दिले हवन संगी पितृपक्ष के माहौल बा और पितृपक्ष में हमने अपन पूर्वज लोग के अपन दादा दादी लोग के अर्पण उन लोग के पानी अर्पण करी ला जा और कई तरह के विधि विधान भी करी ला जा बस प्रेमिला जी के यही संदेश बा कि पूर्वज लोग के तर ना ही भुलाब जा अपन दादा दादी के तर ना ही भुलाब जा हमने के माता पिता जो अभी हमने के संगे हवन जा अभी हमने के इर्द गिर्द हवन सा हमने के बीच में हवन जा उनकर आप बहुत अपनापन देवे के उनकर ख्याल रखे के और उनकर महत्व उनकर महसूस कराए के ताकि उनकर मन खुश रही और हमने के मन में उनकर आशीर्वाद के जरिए बहुत सुख शांति बनल रही सब परिवार में माता पिता के बड़ा जन लोग के बहुत आदर हो ये उम्मीद के साथ प्रेमिला जी गाना मंगले हवन ये गाना अपन बेटी विद्या खातिर अपन दामाद प्रवेश खातिर मंगले हवन और ये निर्वाण और विहान उनकर दुगो नाती खातिर मंगले हवन बहुत प्यार से बहुत दुलार के साथ और यही गाना देवनारायण परिवार और बिसेसर परिवार के नाम कर ले हवन प्रेमिला जी

चला सुनी जा पिती पिती छोकरी और शहर के छोकरी दोनों गाना के मिलन ना ये गाना हम सुनब जा सुदेश भोज जी के गावल और जहां हो बजा ये गाना सुन के कर एक इंजॉय तक कर बही जा ये गाना में जितना तरह के कॉमेडी बात पर जरूर ध्यान दिया जा चले ये गाना हमने बजवावत है जा उर्मिला जी के पसंद पर उर्मिला जी रहे लन गांव गोब ये गाना मंगले हवन पूरा परिवार खातिर

अब सुना थे जा हमने सुखदेव राम खिलावन जी के गाँव वाल गाना यही गाना रही हमने के अंतिम गीत हमने के आज के कार्यक्रम के और चटनी चटनी रानी गाना हमने सुनते सुनते समाप्त कर अब जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के तो लोग भाग लेला जाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी प्यार से हमने के कार्यक्रम में भाग लेला जा बहुत बहुत धन्यवाद आओ थला फिर मिला जाएगा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम लेके तब तक खातिर शुभ रात्रि नमस्ते।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। शुक्रवार की रात है, हफ्ते भर की भागदौड़ी के बाद अब जरा ठहरने का वक्त है। मैं हूं निलमणि और आज की रात हम चलेंगे यादों की उन गलियों में जहां 60s, 70s और 80s के नगमे आज भी उतने ही जवां हैं।

आपकी और करीब आ जाती है। आपके पास भी जरूर कोई ऐसा गीत होगा जिसे सुनते ही दिल कहता है ये तो मेरे जमाने का है।

फ्राइडे की रात और मोहब्बत की गीत, इससे बेहतर संगम और क्या हो सकता है। चाहे मोहब्बत मिली हो, अधूरी रही हो या सिर्फ ख्वाबों में बसी हो, एक अच्छा गीत हर एहसास को अल्फाज दे देता है।

बेटी, ये भारत है या रोम? मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा।

होता है उस घर को बस राम बचाए घर का।

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे, चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे, माफ करो इंसाफ करो
1: नहीं जी,
0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी, अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी, यू
2: आई डोंट नो,
0: यू
1: मैं क्या बोलू जी,
0: यू टेल मी
2: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी
1: मैं क्या बोलू जी,
0: ओ बाप
2: अल्लाह,
1: ओ दादाजी जी मेरी बात तो सुनो
0: बेटे,
1: ओ बाप दादाजी मेरी बात तो सुनो,
0: मेरी बात तो सुनो
1: बेटे, मेरी बात तो सुनो,
2: इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।
3: पल के लिए आज की दुनिया को भूल जाइए, ना नोटिफिकेशंस, ना मैसेजेस, ना भागा दौड़ी, बस आंखें बंद कीजिए और सोचिए अगर आपको 70s या 80s की एक शाम जीने का मौका मिले तो किसके साथ होगी और कौन सा गीत चल रहा होगा।

मेरा बहता लोतन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

वैसे 60s के गीतों की बात ही निराली थी, सादगी सुर और अल्फाजों का ऐसा मेल कि आज भी दिल को छू जाए। चलिए उसी खूबसूरत दौर का एक और नगमा सुनते हैं आपके ही सुनहरे।

दिन में हम अक्सर दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन रात हमें अपने लिए थोड़ा वक्त देती है। तो आज रात किसी पुराने गीत के साथ बैठिए, हो सकता है आपको अपने ही दिल की कोई पुरानी बात याद आ जाए। तो इसी के साथ मैं नर्मनी आपसे इजाजत लेती हूँ। शुभ रात्रि।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।